दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी आवाज, आपकी आवाज।

0: म्यूजिक की, सोच की और आपकी आपकी आवाज, आपकी आवाज।
1: गजल पेशे खिदमत है हसरत मुहानी की।

म्यूजिक की। और आपकी आवाज़, आपकी आवाज़।

म्यूजिक की सोच की और आपकी आवाज़ आपकी आवाज़।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: वो आपकी खिदमत में शायर लखनवी की गजल जो फरमाइश के तौर पर दी गई है, जो थके थके से तो हौसले

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर यह रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: it's love for money.
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: साज दिल जब सदा नहीं देता, कोई नगमा मजा नहीं देता।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है। हमारे स्टूडियो का डायरेक्ट फोन नंबर है 39 29 71 04। एक दफा से फिर सुन लें, 3927104। नियत खाव नियत चू इन हल्फियास नल्फिया। हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज अल्लाह ताला के पाक कलाम से करते हैं।
2: शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है।

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کر تم آئے ہو شہر مدینہ کیسا ہے یہ خوبصورت سی نعت ہم آپ کے لیے پیش کر رہے تھے اس سے پہلے آپ نے خطاب سنا ہم نے پروگراموں کی تفصیل بھی آپ کو بتائی تھی تو اس وقت تو ہمارے تھنک ٹینک سید توقیر حسن بخاری شاہ صاحب جو کسی تعارف کے محتاج نہیں وہ آپ کے لیے موسم بیماریاں کرونا وائرس سیاسی بیماریوں کا علاج لے کر آتے ہیں تو ان کے پاس چلتے ہیں شاہ صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ساتھیوں کے ساتھ
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم راجہ غفور صاحب آپ کو آپ کی ٹیم کو آپ کے لسنر ناظرین سب کو میری طرف سے السلام علیکم جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہم موسم کا بھی حال بتاتے ہیں اور سیاسی بیماریاں اور سیاسی تبدیلیوں کا بھی حال ہم بتاتے ہیں کہ کوپن ہیگن میں کیا کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا آج 17 سے 18 یعنی 19 سے آپ کا ستیا 17 اور 19 کے درمیان موسم جو ہے وہ گرم ہے اتنی سردی نہیں لیکن بہت بہت خوبصورت موسم ہے سورج نکلا ہوا ہے لوگ گھوم پھر رہے ہیں لیکن ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کہ یہ پت جڑ کا زمانہ ہے جس کو پنجابی میں کہتے ہیں پت جڑ یعنی کہ اب تبدیلی آ رہی ہے درختوں پہ نباتات پہ ہر چیز پہ تبدیلی آ رہی ہے اسی طریقے سے انسان کے اندر بھی تبدیلی آتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں فلو یا انفلوئنزا کا ہم اس کو نام دیتے ہیں کہ ہمارے اندر جو جسم کے مختلف ہمارے جو جوڑ ہوتے ہیں اس کے اندر جو جھلی ہوتی ہے وہ اس کو ریشہ بھی کہا جاتا ہے وہ تبدیل ہوتا ہے یہ قدرت کا ایک نظام ہے جیسے پتجڑ ہوتا ہے اسی طریقے سے اور وہ انسان کے اندر تبدیلی لاتا ہے اور یہ ہمیشہ جب پتجڑ کا زمانہ ہو یا خزاں کا بہار کا موسم آتا ہے تو اس وقت بھی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں انسان کے اندر تبدیلی لاتی ہیں تو لہٰذا ہمیں احتیاط کرنی چاہیے تھوڑے سے ایسا گرم کپڑے پہننے چاہیے تاکہ ہمیں جو ہے وہ موسم کی جو تبدیلی ہے وہ ہمارے جسم پہ اثر نہ کرے دوسری چیز یہ ہے کہ 1 اکتوبر سے جو انفلوئنزا کا ٹیکہ ہے اور اپنا کرونا کا ٹیکہ ہے یہ مختلف ہاسپٹلز میں مختلف جگہ پہ انہوں نے لگانا شروع کر دیا ہے آپ اپنے ڈاکٹر سے نہیں لگوا سکتے لیکن آپ اگر گوگل کریں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کون سے ہاسپٹل میں یا کون سے اسکول میں یا کون سی اپوتھیک کے اندر یہ ٹیکے لگائے جا رہے ہیں سب سے بڑی انفارمیشن جو ہم ہر دفعہ دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی کرونک سکنس ہے کوئی ایسی پچیدہ بیماری ہے ڈائبٹیز ہے خدا نہ کرے کسی کو کینسر کوئی ایسی چیز ہے گھر میں تو وہ خود اگر عمر سیدھا ہے اباب اس کو اجازت آئی ہے کہ وہ اپنا لگوا سکتا ہے کیا نام ہے ویکسین تو وہ جب اپنا ٹائم بسٹیل کراتا ہے اپنا ٹائم لیتا ہے تو اس کے ساتھ وہ اپنی بیوی یا اپنے گھر رہنے والے بچوں کو ساتھ لے کے جا سکتا ہے اور ان کو فری آف کاسٹ لگے گا کیونکہ ان کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہم ایک گھر میں رہتے ہیں اور اگر ان میں سے کسی کو فلو ہو گیا یا کرونا ہو گیا تو کیا مجھے بھی نقصان ہوگا تو وہ لگا دیتے ہیں آپ کو صرف پیار سے بات کرنی ہے کوئی ریفیوزل نہیں ہوتا بعض اوقات کسی کا موڈ اچھا نہیں ہوتا لیکن پھر بھی وہ احتیاط کرتے ہیں اور ہوتا ہے اس طریقے سے اور میں خود لگوا کے آیا ہوں پہلی کو لگوایا ہے کرونا کا بھی لگوایا ہے اور فلو کا بھی کوئی ریئیکشن کوئی کچھ نہیں ہوا لیکن یہ ہے کہ کبھی اگر باہر نکلتے ہیں پبلک میں جاتے ہیں کسی کو یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ بھائی تم یہ تمہیں فلو ہوا تم سڑک پہ کیوں گھوم رہے ہو سکتا ہے وہ فلو کے ساتھ کرونے کی دیکھیں آگے کرونے کی ایک قسم تھی اب کرونے کی 8-9 قسمیں ہیں اور آپ کو نہیں پتہ لگتا یہ کون سا ہے کسی کرونا کے ساتھ آپ کو پیٹ خراب ہو جاتا ہے جس کو ہم پیشنٹ کہتے ہیں تھن میں وہ کہتے ہیں وہ آپ کو ہو جاتا ہے کسی کے ساتھ بخار ہو جاتا ہے کسی کے ساتھ آپ کا پورا جسم ٹوٹنے لگتا ہے یہ ڈفرنٹ قائم کے جو ہے ان کے وائرس ہیں لہٰذا یہ احتیاط کرنی جو ہے یہ بہت ضروری ہے کوشش کریں اور ہمیشہ آگے چل کے رہیں اور اگر ابھی ये पतझड़ की जो है अफ्रोस की ये फेरी भी शुरू हो रही है, तो इसके अंदर बहुत सारे लोग जो है वो ट्रेवल करते हैं, वहां वो एक हफ्ते के लिए करें या दो हफ्ते के लिए करें। तो बराए मेहरबानी सबसे बड़ी बात यह है कि आप बच्चों को अगर साथ दे के जा रहे हैं तो उनके स्कूल को लाजमन अवेयरनेस दें, और अगर आप खुद जा रहे हैं फिर भी आप अपनी बॉस सर्विस को, अगर आप काम कर रहे हैं तो आप अपनी बॉस सर्विस को इतला करें कि भाई हम इस स्टेट से इस स्टेट तक राइजर कर रहे हैं और हमारा, और अगर आपको फेरिया पीरियड है फिर भी आप दिखाएं कि हम इस टाइम से हमारा फेरिया पीरियड स्टार्ट हो रहा है और इस पीरियड पे हमारा फेरिया पीरियड एंड होगा और हम फलाने मुल्क के अंदर जा रहे हैं। और ये बताने से वहां पे लिख जाता है, कल को खुदा ना खासा वहां पे कोई बीमार हो जाते हैं, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, अल्लाह ना करे कोई ऐसा हादसा पेश आ जाता है कि इंसान को जरूरत पड़ जाती है मदद की, तो वो डेनमार्क की जो वहां की एम्बेसी है या डेनमार्क के कोई भी वहां पे अदारे जो फंक्शनल हैं वो आपकी मदद को फौरन आ जाते हैं और इस तरीके से वो आपको डेनमार्क वापस ले आते हैं। ये जितने भी लोग येलो कार्ड रखने वाले हैं या अपना नेशनलिटी रखने वाले हैं सबके लिए बराबर के हकूक हैं, लेकिन हकूक उस वक्त आपके चलेंगे जब आप इनको ऑफिशियली बता कर जाएंगे। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि नहीं हम क्यों बता के जाएं, हम तो ये कर रहे हैं, जब वो ये जालसाजी करते हैं तो उसका नुकसान बहुत सारा हो रहा है। आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग पकड़े जा रहे हैं, आपने ये देखा है कि अभी जो इमाम आरूस पे पकड़ा गया है उसकी कितनी वीडियोस अपलोड हुई है, कितनी मीडिया ने उसकी बेइज्जती की है, उसने कहा कि तुम आप खिलाफत ला रहे थे इस मुल्क
0: के अंदर। तो कानून काम कर रहा है तो कानून अपना रास्ता लेता है और कानून जो हरकत में आता है। तो शाह साहब छुट्टियों का आपने जिक्र किया, आप भी छुट्टियां मनाने जा रहे हैं, तो शाह साहब जरा अपना एजेंडा तो बताएं।
1: जी हमारा एजेंडा जो है वो यहाँ की सियासत पे भी है, यहाँ की सियासत पे हमने बिल्कुल काम करना है और यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे जो कैटेगरी 5 है उसके ऊपर हम पे क्या हमें परेशानियां लाहक हैं और उसके ऊपर इंशाल्लाह पूरा मंसूबा है और पूरा उस पर अमल दरामद हो रहा है। मीटिंगों के लिए टाइम ले लिया गया है और जाने से पहले ही, ताकि कोई बहाना ना तलाश करें कि भाई वहां जाके वो जी फलाना नहीं मिला, वो लंदन चला गया, वो अमेरिका चला गया, वो छुट्टियों पे चला गया। तो सारे प्रोग्राम सेटल हैं इंशाल्लाह वहां जाके, तो ये कैटेगरी 5 के ऊपर भी जो है ये बात खुल के होगी और अपने फॉरेन मिनिस्ट्री और दूसरे अदारों से भी मुलाकातें जो है वो मुकर्रर हो चुकी हैं, तो इस पे हम बात करेंगे। ये वो कल करें, परसों करें, चौथ करें, दो साल के बाद करें, लेकिन इसके ऊपर आवाज जो है वो बुनियादी तौर पे वहां से शुरू होगी। और ये हम सिर्फ किस्से कहानियां नहीं कर रहे, हम लोग वहां पे वहां से लाइव जो है वो बकायदा वीडियो नशर करेंगे और बकायदा लाइव वहां से इंटरव्यूज करेंगे कि जो यहाँ आप लोग किसी भी दिन हो सकता है, सोमवार को, मंगल को हो, बुध को हो, किसी दिन भी हो सकता है, तो वो लाइव आप यहाँ पे आप जो रेडियो आपकी आवाज है इसके ऊपर आप सुन सकेंगे, आप देख सकेंगे कि ये चीजें जो है जो हमने बात की है जिसके ऊपर हम चाह रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये काम जो ऑलरेडी वहां पे शुरू हो चुका है उसको हम हमारे जरिए से वो हम उसको पाया तकमील तक, जब मुलाकातें होंगी उनको जो रिटर्न देने हैं, जो उनको सारी तकलीफात हैं यहाँ की फैमिलीज की, इंश्योरेंसों की, दूसरी वो सारा कुछ कैटेगरी 5 की वजह से जितनी भी तकलीफात हैं उसके ऊपर खुलकर वहां पे बात होगी इंशाल्लाह।
0: जी शाह साहब, ये तो आपने माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात की, बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। शाह साहब, सिटी काउंसिल ने 2027 के बजट पर दूसरी बार गौर किया है, कोपनहेगन कम्यून में बजट पर आम पेशरफ्त, रिहाइश, स्कूल, समाजी शोभा जहाज, शहरी सहूलियात तवज्जो का मरकज बने, पार्किंग की भी बात हुई। तो शाह साहब, ये जो बजट पर दूसरी बार बातचीत हुई है, बजट ने पास भी होना है, उस पर अमल दरामद भी होना है, आपके पास क्या खबर है?
1: देखिए जी, सबसे पहले तो हम ये इतला करते हैं कि जो सबसे बड़ी खबर है यहाँ की ब्रेकिंग न्यूज वो है वो कि हमारे जो स्पीकर है हमारे पार्लियामेंट के, सॉन्ग गिल, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और ये बड़ी, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, क्योंकि वो वेंसा पार्टी के बड़े मशहूर सियासी खिलाड़ी हैं और बड़ा अच्छे तरीके से जानते हैं। आपको पता है कि वेंसा के अंदर پچھلے 1.5-2 ماہ سے تبدیلیاں آ چکی ہیں اور دوسری پارٹیز کے اندر بھی, کیونکہ گرین لینڈ کو لے کے اور اس کے ساتھ اندرونی حالات دے کے ملک کے اس وقت پارٹیز کے اندر بہت زیادہ تبدیلیاں, بہت زیادہ چینجز آ رہی ہیں, اور پارلیمنٹ کے اندر بھی اسی طریقے سے. جو آپ کا سوال ہے یہ بہت ریلیونٹ ہے. یہاں پہ جو چیزیں رکھی گئی تھی ان کو دوبارہ غور کیا جا رہا ہے کہ ہم لوگوں لوگ جو ہیں وہ پہلے جو بجٹ پیش کیا گیا اس سے ناراض لگتے ہیں, بعض پارٹیاں اس سے خوش نہیں. اس سے یہ مسئلہ سامنے آ رہا ہے کہ کہیں یہ پارٹیز جو ہیں یہ دوبارہ جو سامنے آبائٹ کر رہی ہیں, کہیں کہ یہ ساتھ نہ چھوڑ دے اور حکومت جو ہے وہ کریش نہ ہو جائے. تو اس لیے یہاں کی جو سوچ ہے وہ کافی تبدیل ہو رہی ہے, کیونکہ جو بڑے لیڈر ہیں اس وقت وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم یورپ کے اندر جو یورپ کی پارلیمنٹ ہے اس کے اندر اپنے قدم جو ہیں وہ مضبوطی سے رکھ لیں اور ہم وہاں کوئی نہ کوئی پوسٹ جو ہے وہ لے لیں, تاکہ یہاں سے گڈ بائے ہونے کے بعد ہم وہاں پہ کام کر سکیں اور اپنے انفلوئنس جو ہے اس کو قائم دائم رکھ سکے. لیکن اب یہاں پہ پریشر ہو رہا ہے کہ یہاں پہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہاں پہ یورو کی آواز اٹھ رہی ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی کہ یورو رکھو, لکھا بھی جا رہا ہے, لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ڈینش کا گرون ہی ہماری پہچان ہے. لیکن ہر ملک کی اپنی اپنی پہچان تھی. انہوں نے جب فلس ایک پورا یورپ بنایا تو انہوں نے اپنی پہچان کو ختم کر کے تو یورو کو اپنایا, تو ڈنمارک کو بھی آخر یورو میں جانا پڑے گا اور یورو کو لانا پڑے گا, کیونکہ اس سے اکنامیکلی جو چیزیں ہیں وہ کافی بہتر ہوں گی. ایکچولی ڈنمارک نے جو انکار کیا تھا یورو میں آنے کا, اس کا مقصد یہ تھا کہ انگلینڈ اور یورپ سے جو بڑی بڑی فرمیں ہیں وہ بھاگ کر ڈنمارک آ جائیں گی اور یہاں پہ ان کو کافی سہولیات ملے گی اور یہاں پہ بڑے بڑے بینک آ جائیں گے. لیکن وہ کیونکہ سیاسی نا تجربہ کاری کی وجہ سے یہاں کے جو سیاستدان ہیں وہ ان کو یہ چیزیں سامنے پیش نہیں کر سکے, تو وہ لہٰذا کچھ وہیں رہے, کچھ دوسرے ممالک میں جو بہت ہی سستے ہیں بلغاریہ اور دوسرے آگے پیچھے وہاں پہ وہ چلے گئے اور انہوں نے اپنے قدم وہاں پہ جمانے شروع کر دیے کیونکہ وہ ان کو کافی سستے لگتے ہیں. اور اسی طریقے سے اب یہاں کے جو معاشیاتی ادارے ہیں وہ لکھتے کچھ ہیں اور بتاتے لوگوں کو بتاتے کچھ ہیں, لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو غربت کی لکیر جو ہے اس سے بھی نیچے اب لوگ جو ہیں وہ اس مہنگائی کے زمانے میں رہنا شروع ہو چکے ہیں اور ان کے حالات بہت ہی گمبھیر ہیں. لیکن کیونکہ ان کے پاس اب بیچنے کے لیے صرف ان ماندہ پرابلم رہ گئی تھی اس کے اوپر یہ بات کرتے ہیں, لیکن وہ بھی اب ان کے لوگ اب ان کو سننے کو تیار نہیں, بالکل تیار نہیں. تو راجہ صاحب یہ جو بجٹ ہے اس کے اندر کافی فالٹس ہیں اور کافی چیزیں ایسی بجٹ میں رکھی گئی ہیں کہ جو
0: 70 ملین کا بجٹ جو ہے وہ رکھا گیا ہے پارکنگ کے لیے اور اس کے بعد سرسبز بنانے کے لیے, سہولیات سے علاقے کو خوبصورت بنانے کے لیے, گرینری کے لیے رکھا گیا ہے. تو یہ تو خبریں آ رہی ہیں, جب بجٹ پاس ہوگا تو آفیشیل بات تو اسی وقت جو ہے وہ سامنے آئے گی.
1: دیکھیں جی جو 70 ملین رکھا گیا ہے تو یہ پارکنگ کا یہ کیوں رکھا گیا ہے؟ وہ جو پارکنگ سیلس کے باہر ہیں, جو باہر کی سیلس کے ہیں وہ ڈنمارک میں آ کے پیسہ کما رہی ہیں, یہ ان کا کام بنتا ہے کہ وہ اپنے پاس سے پیسہ لگائیں اور پھر وہاں سے وہ بنی بنائی پارکنگ لے کے ہمارے ٹیکس پیئر کے پیسوں سے وہ
0: پارکنگ کی جگہ ہوگی تو پارکنگ پلیس وہ بنائیں گے نا.
1: دیکھیں جی پارکنگ کی جگہ انتہا سے زیادہ پارکنگ پلیسیں ہیں ڈنمارک میں, لیکن کیونکہ سیاسی وجوہات کی وجہ سے لوگ جو سیاست میں حصہ لیتے ہیں وہ کبھی خود جا کر وہاں پہ فٹ پرنٹ نہیں رکھتے, وہاں پہ جا کے قدم نہیں رکھتے, دیکھتے نہیں, وہ بیٹھے ہوئے نا تجربہ کاری کی وجہ سے وہ ہاں یا نہ کر دیتے ہیں. تو اس سے جو ہے جو امیر لوگ ہیں, جو بگ فرمیں ہیں, بڑی بڑی عمارتی بلڈنگ بنانے والی فرمیں ہیں وہ, اور اس طرح کی دوسری جو پارکنگ فرمیں ہیں وہ پیسہ کما رہی ہیں. لگتا پیسہ گورنمنٹ کا ہے تو وہ اس کو کہتے ہیں یا آپ جگہ ہمیں پارکنگ آپ نے بنا لیجیے, ٹھیک پہ ہمیں دے دیں, اب ہم اس کو ہم آپ کو فائدہ دیں گے. وہ خود زیادہ پیسہ لے جاتے ہیں, ٹیکس بھی نہیں پے کرتے اور گورنمنٹ کو تھوڑا سا پیسے چند ملینز دے کے, 100 ملین دے کے, تو وہ लोगों की जो नर्व सिस्टम है उसके ऊपर उन्होंने लोगों की इकोनॉमिक जो है उसको खत्म किया है। आप इस वक्त देखें कि कोपनहेगन में आप कोई भी घर देख लें, कोई भी घर देख लें कि उसके पास उतनी, अगर उनके पास एक या दो गाड़ियां हैं तो कम से कम वो 8-9 हज़ार करोड़ जो है वो सालाना दे रहे हैं, और अगर वो इसी तरीके से हौसलाए भी दे रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, तो वो टैक्स कम दे रहे हैं तो डेनमार्क के अंदर, कोपनहेगन के अंदर, लेकिन जो रिहायश है और जो उसके साथ
0: सवाल पैदा होता है, पार्किंग की बहुत बात की जाती है, ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगे बनी हुई है इनके नीचे पार्किंग मौजूद है तो लोग पार्किंग के नीचे गाड़ी खड़ी नहीं करते, वो गाड़ियां बाहर खड़ी करते हैं। इसी तरह अगर वेस्टर्बो गेट में देखे जाएं तो ये एक कॉलेज बना हुआ है और उसके नीचे जो है अच्छी खासी पार्किंग है, बेशमार पार्किंग है, या वो नीचे की पार्क करेंगे तो गाड़ियां बाहर पार्क करेंगे तो शहर में दिक्कत होगी, तो वो पार्किंग जो बिल्डिंग के नीचे है शाह साहब वो सस्ती करनी चाहिए ताकि बिल्डिंग वाले खुद नीचे पार्क करें।
1: हाँ, ये सवाल आपका ठीक है, वो करें, वो ये है कि आप ये देखें कि गोदावा और दूसरी जगह और कोपनहेगन में जितनी बिल्डिंग्स नहीं बनी है उसके अंदर आपको नीचे पार्किंग प्लेस खरीदनी पड़ती है, आप उसको खरीदें या उसको लाए करें। अगर आप उसको खरीदते हैं और उसको जैसे आपने ऊपर फ्लैट खरीदा है इसी तरीके से आप उसके पैसे देंगे बकायदा, और वो फिर आप अपनी गाड़ी वहां पर खड़ी कर सकते हैं। और दूसरी चीज है, अगर आप उसको लाए करते हैं तो वो लाए बहुत महंगा है, तो फिर लोग जो है वो मजबूरन बाहर खड़ा कर देते हैं और दूसरी जगह पे ऐसी स्ट्रीट को फाइंड आउट करते हैं जहां से वो पैदल चल के अपने फ्लैट तक आ जाए ताकि उनको ना जुर्माना लगे ना। इसलिए पार्किंग प्लेसों की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है, और ये जो बिल्डिंग्स बनती है और बिल्डिंग्स के साथ जो इन्होंने बहुत पार्किंग प्लस जो है वो दूसरा, आप ये देखें कि मेजॉरिटी इस वक्त बेलारूप टास्क अगर मेजॉरिटी आप बड़े बड़े फ्लैट्स के ऊपर जाते हैं जहां पहले फ्री पार्किंग होती थी, अब वहां पे क्या, अगर आप एज ए गेस्ट भी जाते हैं तो पहले जिसके घर आपने जाना है विजिट करने के लिए वो कार्ड लेके खड़ा होगा कि भाई आप हमारे घर में गेस्ट आए हैं और इतने बजे आए हैं और इतने बजे आपने जाना, वो आपकी गाड़ी के अंदर कार्ड रखेगा, फिर आप वहां पर खड़ा कर सकते हैं, नहीं तो तकरीबन 1,000 के करीब आपको जुर्माना लग जाएगा। और ये चीजें जो है ये कौन तो कर रही है,
0: शाह साहब इसका परमानेंट हल होना चाहिए ना, क्या ये जिम्मेदार लोग नहीं है जो कम्यून में बैठे हुए हैं, या इनको इतने जो इतनी जो दुश्वारियों का पता ही नहीं है,
1: ना तजर्बाकारी, स्कूलों में से, कॉलेज में से, यूनिवर्सिटी में से पढ़ के बाहर आ गए हैं, तजर्बा है नहीं है, पब्लिक का तजर्बा है नहीं है, लोगों के रहन सहन का तजर्बा है नहीं है, कोई सोशल वर्क किए हुए नहीं है। जी मैं चंद ऑर्गेनाइजेशन का मैं मेंबर बन चुका हूँ और मैंने ये किया मैंने वो किया, वहीं से वो डिबेट करके बाहर आ जाते हैं, उनको इन चीजों का तजर्बा नहीं, उनको आवाम की मुश्किल का बिल्कुल पता नहीं, इसलिए वो ये चीजें जो है वो उनकी समझ से बाहर होती है। और फिर अगर उनको थोड़ी बहुत समझ भी है तो वो कौन सा बजट में ये पढ़ते हैं कि कौन सी पार्किंग में कौन कौन से इलाके में ये पाबंदियां लगनी चाह रही है, वो तो बस खामोश हो जाते हैं। और जो फोरमैन होते हैं या जहां वहां पे उनके जो बंदे बैठे होते हैं उनकी छोटी पार्लियामेंट के अंदर, कम्यून के अंदर, तो वो तो यस सर करते हैं, वो इसलिए कि उन्होंने बैलिंग की होती है, वो उन्होंने पार्टियों के साथ कॉम्प्रोमाइज किया होता है, मुआहदा किया होता है कि हम आपस में मिलकर ये सारा काम जो है इसको लाएंगे, तो वो तो उनको तो हर दफा पता होता है कि भाई अगली दफा भी हम नंबर वन ही होंगे, टॉप पे होंगे, खसमन खाई ये नीचे वाला कैंडिडेट जो दूसरे बैठे हुए हैं इनको हो सकता है ये आए या ना आए, मैं तो 100% जो है वो अगली दफा भी मेरी सीट जो है जो काउंसिल पक्की है, तो वो जो है वो इस तरह की बातें ना डिक्लेयर करते हैं ना ही उसके ऊपर डिस्कस करते हैं, तो ये चीजें जो है ये प्रॉब्लम है।
0: लगता है कि आपकी बातों से लगता है आप भी वेंस्टा को ज्वाइन करेंगे, अगर ज्वाइन करते हैं तो किसके कंधे पर हाथ रखेंगे, आजकल तस्वीर बाहर आ रही है लोगों ने लीडरान के कंधों पर हाथ रखा हुआ है।
1: जी बिल्कुल आपकी बात सही है, मैं इंशाल्लाह वेंस्टा को ज्वाइन करने जा रहा हूँ और मैं सिर्फ एक लकीर के ऊपर एक पॉइंट के ऊपर मैंने अभी तक मेंबरशिप पर नहीं दी, लेकिन अगर वो मुझे मेल आ जाती है ये अगले हफ्ते आ जाती है या चंद दिनों के अंदर आ जाती है तो मैं इंशाल्लाह
0: ताला। ये इस हफ्ते की ब्रेकिंग न्यूज है।
1: जी बिल्कुल, वेंसा जो है वो आपने देखा है कि वेंसा के अंदर जो इनकलाब आया है, और वेंसा के साथ आपको पता है कि यहाँ पे दूसरी भी जो यहाँ के पाकिस्तानी सियासी जात में जमात में भी इनकलाब आया, तो इंशा अल्लाह इनकलाब आएगा। अक्टूबर का महीना शुरू हो गया और अक्टूबर में मैंने आपको पहले ही आपके रेडियो पे कहा था कि एंड ऑफ अक्टूबर और नवंबर में बहुत ज्यादा सियासी इंकलाब आएगा, क्योंकि मेरा जो टूर होगा पाकिस्तान का और यहाँ का,
0: तो शासन ये भी इंकलाब का हिस्सा है।
1: जी बिल्कुल, ये इंकलाब का हिस्सा है। आप देख लेंगे सॉन्ग गेल ने बहुत अच्छी बात की है कि उसे फोरमैनशिप से अपना इस्तीफा दे दिया फरगत सिंह के, अब वो खुलकर पार्टी के अंदर काम करेगा। पार्टी को पुराने लीडरान की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे मसला जो है वो सिर्फ लैंडमैन का नहीं है, काश्तकार का मसला नहीं है, यहाँ के जितने भी बिजनेसमैन है वो भाग रहे हैं, यहाँ के पढ़ा लिखा लोग जो है वो भाग रहा है मुल्क को छोड़कर। ये यहाँ पे बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। जैसे आप अभी ये देखें कि वो जो हमारी एक बच्ची जो है वो अदालत में ये सर पे दुपट्टा डाल के छोर कलर पहन के वो नहीं जा सकती, तो उनको राइट होना चाहिए कि हर बंदे को साइयों में।
0: ये कानूनी फाइट है, कानूनी फाइट होनी चाहिए।
1: नहीं, कानूनी नहीं है, आईन आईन इसकी इजाजत नहीं देता, आईन इसकी इजाजत नहीं देता, आईन इसका औरत के जो लिबास है उसके हकूक की तहफ़ देता है। तो हम कानून को, मैं कानून की बात नहीं करता, मैं आईन की बात करता हूँ कि जिस चीज में आईन तहफ्फुज दे रहा है और उसके ऊपर बात की जा सके तो उसके ऊपर यह कानून जो है
0: डिबेट है, चलती रहेगी। शाह साहब आखिर में क्या कहेंगे कि हमारे लोगों को क्या करना चाहिए इन हालात में?
1: हमारे लोगों को ये चाहिए कि जितना ज्यादा से ज्यादा वो इकट्ठे हो सकते हैं, कोशिश ये करें कि ऐसा कोई काम ना करे जो गैर शरी हो, गैर कानूनी हो। कोशिश ये करें कि जो इस वक्त सबसे बड़ी तीन चीजें जो है जिसके ऊपर नजर रखनी चाहिए, एक तो ये कि जिन्होंने डैनिश डिवोर्स ली हुई है और इस्लामिक तरीके से इकट्ठे रह रहे हैं, वो इससे पर्दा करें और इससे जो है वो पीछे हट जाए, क्योंकि डिवोर्स डिवोर्स होती है, ख्वाह वो डैनिश हो, ख्वाह वो किसी तरीके से हो, तलाक का वो करे, क्योंकि इसके पीछे सिर्फ कोपेनहेगन में उन्होंने जो नंबर इशू किए हैं वो तकरीबन 10,000 के करीब है, और इसमें सारे जो है वो ज्यादातर मुसलमान आ रहे हैं, तो ये उनकी तादाद है, तो इससे दूर है। नंबर दो पे जिन्होंने फौज पेंशन ली हुई है, बीमारी की पेंशन ली हुई है, वो अपने डॉक्टरों के पास रेगुलरली जाएं, उनको अपनी बीमारियों के बारे में बताएं जो सही है, और जो वो दवाइयात लिख के देते हैं वो मेडिसिन वो जरूर लें, क्योंकि अगर वो मेडिसिन नहीं लेते और सिर्फ इस पेस पे कि वो मैगी मिलती है और वो नहीं ले रहे, तो फिर उनका जो है वो पता साफ है, उनके ऊपर केस बनेंगे, उनको सब पैसे, क्योंकि ये चीजें जो है कम्यून का और तो डॉक्टर का।
0: दवाइयां जो है वो मुफ्त नहीं होनी चाहिए, अगर सही पेशेंट है तो पेशेंट के लिए, या अगर अस्पताल में इलाज फ्री है तो बाहर क्यों नहीं है?
1: क्योंकि वो आपका रेडियो नहीं ना सुनते, वो समझते हैं कि यहाँ पे जो बैठे हुए हैं ये बकवास कर रहे हैं, ब्लफिंग कर रहे हैं। अगर जिसको फॉर्ज्ड पेंशन मिली हुई है या जो जिसकी होम इकोनॉमिक इतनी ज्यादा नहीं है, इतना घर का पैसा ज्यादा नहीं, तो वो वहां पे जाके कह सकते हैं कि भाई देखें अपनी बॉस सर्विस में कि हमारी मदद की जाए, तो वो देखते हैं, फिर वो इकोनॉमिकली देखते हैं कि भाई इस आदमी ने वाकई इसके इतनी दवाइयां हैं, इसकी दवाइयां महंगी हैं, तो वो फिर आपको बकायदा उसमें परसेंटेज जो है आपको लगाते हैं, कभी आपको 85 या 70% से ऊपर जितने भी हैं वो दवाइयां महंगी हैं वो आपको सस्ती करते हैं, आपको 85% भी देते हैं, तो उसमें आपको चंद एक करोड़ के दवाइयां मिलती हैं, तो बेशक वो 800-900 करोड़ की हो, आपको 50-60 करोड़ में मिलती है। तो ये चीजें जो है जो आप वहां पे जाएंगे,
0: कानून से फायदा उठाना चाहिए, कानूनी फाइट करनी चाहिए, और हमारे सिटी काउंसिलर जितने भी हैं जिस जिस कम्यून में बैठे हुए हैं उन्हें भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए। शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया, दोबारा अगले प्रोग्राम में शामिल होंगे।
1: शुक्रिया जी, बहुत बहुत अल्लाह हाफिज़ जी।
0: सामान नाज़रीन, ये थे सैयद तौकीर हुसैन बुखारी शाह साहब। सामान नाज़रीन, हमारा मुत्तफ़िक़ होना ज़रूरी नहीं है, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, आपके पास कोई दलायल है, तो आपके लिए आपकी आवाज़ का टाइम हाज़िर है, हमारे साथ साथ रहिए, अगले मेहमानों की तरफ बढ़ते हैं।
2: ये रेडियो आपकी आवाज़ है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए, सो रेडियो आपकी आवाज़ सुनते रहिए। ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: मेहमान आए हुए थे नॉर्वे से, बस इसी तरह से बस। और आपको पता ही है मैं तो ज्यादातर फिर अपना काम और काम के वाले से ही इसी
1: आप तो
0: तरह ही
1: कायदे
0: करता हूँ।
1: आज़म
0: हाँ जी
1: रहमतुल्लाह अलैह के फरमुदात पर अमल करते हैं, काम काम काम और फिर काम।
0: जी जी बिल्कुल, जब से डेनमार्क आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह काम ही कर रहे हैं जी, तो काम काम वो ही काम जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह का अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्लाह ने इज्जत दी हुई है, काम की सब है, आपको पता ही है ये मामला चलते हैं, काम है तो सब काम है।
1: चौधरी साहब, अब बजट के 2 सेशन हो चुके हैं कोपनहेगन में, और अब ये टैक्सियों की भी बात की जाती है, पार्किंग को बेहतर करने की बात की जाती है, इन्वायरमेंट की बात की जाती है, और भी इसमें बहुत सारी बातें शामिल हैं। तो ये आपकी जो ब्रांच है, आपको इसका भी काफ़ी तजुर्बा है, तो ये क्या होने जा रहा है टैक्सी के साथ?
0: राय साहब, टैक्सी का सिस्टम जो है ना, जो पहले वाला था वो तो बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट भी इसमें इन्वॉल्व भी थी, जो कि मैं समझता हूँ कि इसको जो है ना खराब करने में, ये सिस्टम जो पहले वाला था, तो इन्होंने ये किया है कि सब को जी ओपन कर दे, जो बंदा चलाना चाहता है टैक्सी आए अपना लाइसेंस ले और उसके बाद अपनी गाड़ी चले जाके। ये देखे ना, पहले आया था उबर हमारा, इनके हमारे साथ उनका मुकाबला करवाने के लिए ना गवर्नमेंट ने उनको इजाजत दे दी, पहले गैर कानूनी आई, फिर वो कानूनी, कानून के अंडर वो जो सारी उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करी गवर्नमेंट की, और उसके बाद वो आए, और उसके आने के बाद उन्होंने जो है ना रेडियो कोडन वो जो है ना वो भी खरीद ली, तो उसका रेडियो कोडन भी केस चल रहा था फिर वो, और उसके बाद वो छोड़ के अब ग्रीन टैक्सी आ गई है। ग्रीन टैक्सी में लोगों को बेनिफिट ये मिल रहे हैं कि वो 30,000 तकरीबन 29,500 कोई इस तरह 600 कोई दे रहे हैं महीने का, तो प्लस बोनस प्लस वो इंश्योरेंस जो है ना पेंशन वगैरह ये वो जो है ना दे रहे हैं लोगों को, और फैस्ट लोन है उनकी, तो लोग उसकी तरफ ज्यादातर मैं देख है कि ज्यादा ड्राइवर जो है ना अपनी दूसरी कंपनियों को छोड़ के उस कंपनी में जा रहे हैं। ये थोड़ा सा डेनमार्क में ये टैक्सियों का जो पहले वाला सिस्टम था वो अब खत्म हो गया है। अब हमारे भी वो जो है ना कंपनी में यही है, ड्राइवर बहुत कम मिल रहे हैं, क्योंकि हमारी कंपनी एक अपनी फेमस शुरू से उसके अपने कस्टमर है, अब वो इंटरनेशनल कस्टमर जो वो ज्यादातर जो है ना वो ले गया उबर, जो हकीकत बात ये है, क्योंकि इंटरनेशनल उनके पास नंबर होता है, जब लोग वो बाहर से आते हैं तो उस ऑटोमेटिकली ऐप जो है उनके उनके टेलीफोन पे आ जाता है, मैसेज आ जाता है कि आप गाड़ी ये गाड़ी ले, ये सस्ती है उबर की गाड़ी, तो वो लोग वो करवाते हैं, और हमारे जो कंपनी है उसको तो वो जो उन्होंने डायरेक्ट टेलीफोन करना है या उनका ऐप जो डेनमार्क में है वो ही चलता है, तो ये काफी चीजें हैं, उनका सिस्टम भी एडवांस है, हमारा सिस्टम भी जो पुराने वाला है अभी अभी चेंजिंग कर रहे हैं उसमें, लेकिन ये लोगों के पास जो ग्रीन टैक्सी आई है या
1: चौधरी साहब,
0: उबर है
1: इतनी
0: इसके
1: बड़ी
0: पास वो
1: ब्रांच थी तो
0: पैसे
1: अभी
0: ज्यादा
1: तक
0: है।
1: उनका पुराना सिस्टम है, दुनिया तरक्की कर रही है, वो पुराने सिस्टम पे चल रहे हैं।
0: राज साहब पता है कि वो जब खरीदते हैं ना एक सिस्टम तो उसकी एक लागत होती है, ये लोग आए हैं पहले नए आए हैं नई टेक्नोलॉजी लेके आए हैं, हमारे लोग जो है पहले से है, क्योंकि वो फोरमैन वन मैनों की फाइनिंग है और उसके हिसाब से वो पहले चल रहे हैं, वो अपना बजट देखते हैं, उस बजट के हिसाब से वो देखते हैं कि हमारे पास कितना पैसा है, हम सिस्टम को चला सकते हैं, नया सिस्टम हर रोज तो नहीं ले सकते ना नया सिस्टम, क्योंकि इन्होंने 2-3 दफा वो चेंज कर चुके हैं अपना सिस्टम, और उसके बाद अब आपको पता ही है टेलीफोन का सिस्टम देख लें, टेलीफोन एक आता है वो साल के बाद नया टेलीफोन आ जाता है और उसमें नई टेक्नोलॉजी आ जाती है और इतने ज्यादा चीजें आ जाती हैं को पता ही नहीं चलता। अब गाड़ियां हैं इसी में चाइना की गाड़ियां आ गई हैं, उसमें इतने फंक्शन है जितने के जर्मन की गाड़ियों में इतने फंक्शन नहीं होते, ये टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट जा रही है कि रोज तो नहीं सिस्टम चेंज हो सकता, अब हमारे भी चेंज कर रहे हैं इंशाल्लाह, वो कह रहे कि महीने 2 तक काफी चेंजिंग जो हमारे सिस्टम में आ जाएगी, तो जो है कस्टमर के लिए बेहतरी होगी, इंटरनेशनल कस्टमर जो है
1: चौधरी
0: उनके
1: साहब,
0: लिए
1: इसमें
0: ऐप में
1: कोई
0: भी
1: शक
0: आसानियां
1: नहीं
0: होंगी।
1: है कि जो हमने तहकीक की है कि ये बड़ी गाड़ियां नहीं हैं इनके पास, जो नया सिस्टम आज जो नई गाड़ी सेल्सकेप आई है, इनकी गाड़ियां छोटी हैं, लोग पसंद नहीं कर रहे, लेकिन दूसरी तरफ जो उनका पैकेज है, सहूलियात हैं, ये तो सुपर किस्म की सहूलियात हैं।
0: जी बिल्कुल सही है, ऐसी बात है, लेकिन उनका उनके पास बजट है एक, वो बेड दे सकती है, वो लोगों को कंसेशन दे सकती है, टूर जो है ना वो परसेंट जो उनको बहुत काफी कम करके देते हैं, लेकिन उनका सिस्टम ऊबर का तो ये है, जब रश होता है तो वो उसका सिस्टम महंगा कर देते हैं उनको, वो अपने उनके हाथ में होता है। हमारा एक पक्की प्राइस होती है, एक टूर की होती है या हमारे टाइम की होती है, वो उसी टाइम से हमारा मीटर चलना होता है। तो ये गवर्नमेंट ने खुद ही किया है, गवर्नमेंट ने ये, और दूसरी तरफ देखें तो गवर्नमेंट को फायदा है, गवर्नमेंट को टैक्स ज्यादा जा रहा है, लोग जो बेकार घर बैठे थे या आगे पीछे थे वो आप गाड़ियां ले रहे हैं, गाड़ियों में जा रहे हैं, ये ग्रीन टैक्सी में काफी लोग चले गए, बहुत ज्यादा मारे जाने वाले चले गए हैं। वो कहते हैं जी बस पक्की तनख्वाह मिल रही है तो हम बैठते हैं, जब गाड़ी लेनी है उनसे गाड़ी लेके चले जाना है, बस आप देखना है को मिल गया कस्टमर तो ठीक है, नहीं मिल गया तो हमें पक्की तनख्वाह मिल रही है। तो ये जो है तो हमें तो 10-10, 12-12 घंटे अपनी कंपनी में काम करना पड़ता है, तो वो इसलिए हमारी कंपनी को इतना ज्यादा अब जो है ना वो जो है ना ड्राइवर नहीं मिल रहे, क्योंकि ड्राइवर दूसरी साइड पे जा रहे हैं, तो जाहिर है उनको जो है ना जिधर बेनिफिट ड्राइवर को मिलेगा उधर ही जाएगा।
1: तो चो साहब ये बात दूसरे लिहाज से वर्कर के लिए अच्छी नहीं है कि उसके पास टेंशन नहीं है, जहनी बोझ नहीं है, जब टूर वो मिलेगा तो वो चलाएंगे, नहीं मिलेगा तो खड़े इंतजार करते रहेंगे।
0: बिल्कुल ऐसी बात है राय साहब, ये जो है ना हमारे दोस्त जो गए हैं ना वो इसी वजह से गए हैं कि उनको ये टेंशन नहीं है कि यार पैसे बने हैं या नहीं बने, उनकी तकरीबन 60,000 महीने की तनख्वाह बन जाती है जैसे हमारे, तो वो अगर दिन में हम हमारे साथ चलाए ना तो वो 60 साल नहीं बना सकते, उतने घंटों में, 7 घंटों में, जो 8 घंटों में जितने घंटे हैं उनके, 5 दिन उन्होंने चलानी होती है, और जो है ना तकरीबन उनको 30,000 उनके अकाउंट में होता है, प्लस उन्होंने टैक्स पर अपना देना होता है, वो तो जाहिर है, लेकिन ब्रूटो उनको 30,000 मिलती है, तो 30,000 उनको, ये बहुत अच्छी है ना एक ड्राइवर के लिए, बहुत अच्छी ऑफर है, इसीलिए काफी लोग जो है काफी वॉनवेयर भी छोड़ के उधर जा रहे हैं, ड्राइवर ड्राइवर गाड़ी चला रहे हैं जाके ड्राइवर की हैसियत से, तो वो कहते हैं कि टेंशन नहीं है, चलो ठीक है पक्की तनख्वाह एक मिल रही है तो ठीक है, लेकिन ये मेरे ख्याल में ज्यादा अरसा नहीं चलेगा इस तरह का कंसेप्ट जो ग्रीन टैक्सी का है, क्योंकि ये फोर्ड नहीं कर सकेंगे इतना जो है ना, का ज्यादा ज्यादा वो दिन में 2 या 3 या 4 टूर उठाते हैं लोग, तो इतने में तो नहीं जो मालिक को इतना भाड़ा बिल्कुल नहीं खाएगा, वो तो किसी और नजरिए से आए, उनकी अपनी कंपनी है गाड़ियों बनाने वाली, गाड़ियां लेके वो आए हैं मार्केट में, हो सकता है उनको गाड़ियां बेचने में सहूलत हो या इस तरह की हो, तो ये इस वजह से फिर वो अपना अपना लोग देखते हैं, कारोबारी लोग बिजनेसमैन वो अपना आगे का भी देखते हैं ना, सोचते हैं।
1: जो सब बिजनेसमैन तो अपना पैसा डूबने के लिए तो नहीं लगाता।
0: जी ऐसी बात है, ऐसी बात है बिल्कुल, ये देखें ना
1: आप
0: अब
1: खुद
0: आ रहे हैं ना
1: कारोबारी
0: उनके पास
1: शख्सियत
0: भी,
1: हैं।
0: ज्यादातर कितना अरसा चला सकते हैं, कितना देखे ना, मेरा रेस्टोरेंट था काफी अरसा मैंने चलाया, उसके बाद उसका किराया इतना था कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, फिर उसके बाद हमने बातचीत करनी शुरू की लेकिन उन्होंने नहीं माना, हमने कहा जी फिर हम नहीं चला सकते। जो है ना कारोबारी लोग है ना जो, या कारोबारी इंसान है वो अपना नुकसान था जैसे आपने कहा, वो तो ज्यादा देर तो नहीं बर्दाश्त कर सकेगा, तो इसी तरह ग्रीन टैक्सी भी है, वो इस तरह ज्यादा वो अपना नुकसान नहीं बर्दाश्त करेंगे, वो कई कई मुल्कों में भी वो खंकूस पहले हो चुकी है ये कंपनी ना, तो इसी तरह से फिर देखें कितना क्या इनका मामला आता है या किस तरह चलते हैं, देख लें फिर
1: जो
0: अल्लाह
1: सब। आप दिन
0: करे
1: को
0: हमारे।
1: सड़कों पे देखते रहते हैं, एनालाइज भी करते हैं, तो ये जो पार्किंग है, आपको पार्किंग मिल जाती है, पार्किंग का प्रॉब्लम है, तो गाड़ियां तो ज्यादातर शहर में अब इलेक्ट्रिक हो गई हैं।
0: बिल्कुल राय साहब बिल्कुल सही बात है, गाड़ियों की प्रॉब्लम है और पार्किंग की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, और हमें भी टैक्सी खड़ी करने की, पहले हमें सहूलत होती थी कि टैक्सी जो है ना इलेक्ट्रिक गाड़ी है वो मुफ्त खड़ी कर सकते थे, और उसके बाद उन्होंने गाड़ी इन पे भी लगा दिया है, तो हमें भी अब शहर में देख ले, वैसे वो तो बिल्कुल नेचुरली बात है राय साहब, जो घर में एक एक गाड़ी होती थी, अब 5-5 गाड़ियां है, 4-4 गाड़ियां, हर बंदे को अपनी अपनी गाड़ी है, हर बंदे के पास, बच्ची के पास अपनी है, बेटे के पास अपनी है, घर वालों के पास अपनी है, तो इस तरह से वो जगह तो इतनी है, फिर मुश्किल तो होगी, लेकिन ये गवर्नमेंट को कुछ सोचना पड़ेगा, आवाम के लिए सहूलत पैदा करनी पड़ेगी उनके के किस तरीके से
1: तो सब
0: वो
1: एक
0: क्या
1: सवाल
0: करें,
1: होता है
0: सड़कें काम
1: टेक्निकल जो
0: करती जा
1: लोग
0: रहे हैं।
1: हमसे बात करते हैं, मैंने कहा चले आपसे पूछ लेते हैं, गाड़ी की जो इलेक्ट्रिक पार्किंग है वो बोर्ड जो लगा होता है उसके ऊपर लिखा होता है 3 घंटे की पार्किंग है, उसके ऊपर पार्क करते हैं तो उसका जो देना पड़ता है, पता नहीं मुझे उसका पता नहीं है, आप बता दीजिएगा। तो जो गाड़ी परमानेंट लोगों ने ली हुई अपनी चार्जिंग की फ़ीस परमानेंट बिलफर्ज 900 करोना 1000 है, 1200 है, 500 है, 700 है, वो तो इलेक्ट्रिक वाली स्टिक लगा के तो चले जाते, 3 घंटे की तो पार्किंग उनके लिए फ्री है।
0: ऐसी बात है राज साहब, कुछ जगह है जिनमें 3 घंटे की है, कुछ जगह जिसमें 1 घंटे की है, कुछ जगह जिसमें आधे घंटे की है पार्किंग चार्जिंग पे प्लेस पे, वो मुख्तलिफ मुख्तलिफ जगह पे है, तो वो उधर वो लगाते हैं स्टिक लगा के वो चले जाते हैं। हाँ, अगर स्टिक वो जो नहीं चार रही है, कोई जुर्माने वाला आ जाता है, जुर्माने को उस टाइम से ज्यादा हो जाता है तो फिर वो जुर्माना लगा देता है। तो लेकिन ये भी काफी अरसा नहीं चलेगा, ये ज्यादा लोग जब मिस यूज करेंगे तो फिर को भी पता चल जाएगा कि ये इसको मिसयूज कर रहे हैं, तो फिर उसका कुछ हल निकालेंगे।
1: तो जो सब आपसे पूछूं, आपकी गाड़ी 3 घंटे में चार्ज हो जाती है अगर फास्ट चार्जिंग ना हो तो?
0: मैं राज साहब घर में जब लगाता हूँ ना, तो मैं 10 बजे लगाता हूँ अपने घर में, तो मैं सुबह उठ के 6-7 बजे देखता हूँ तो वो मेरी फुल हुई होती है गाड़ी।
1: लेकिन बाजार में तो 3 घंटे में नहीं चार्ज हो सकती?
0: नहीं, बाजार में नहीं होती, बाजार में नहीं होती।
1: तो क्या बार बार चार्ज करने से बैटरी को कोई नुकसान होता है?
0: नहीं, बार बार चार्ज करने, हाँ, लेकिन ज्यादा कैपेसिटी पे फुल 100% चार्ज करें फिर बैटरी को नुकसान होता है, उससे पहले बैटरी को नहीं नुकसान होता, क्योंकि वो तो जितनी दफा मर्जी अभी आप लगाते वो कोई इसका इशू नहीं होता, लेकिन ज्यादातर आप जब 100% इसको करते जाएंगे या हैवी पे, तो फिर गाड़ी इसकी बैटरी को डैमेज होने का खतरा होता है।
1: जो साहब, ये टैक्सी ब्रांच बहुत बड़ी ब्रांच है, चूँकि इसमें हमारे बहुत सारे लिसनर हैं, बात करते रहते हैं, तो ये मुस्तकबिल में क्या बनेगा?
0: मुस्तकबिल में ये जो है ना बहुत ही चेंजिंग आनी है, अब ड्राइवर फ्री गाड़ियां भी आ रही हैं, उनकी बात की जा रही है अभी का कुछ अरसे से, वो पता नहीं अभी हकीकत है या नहीं है, 1-2 साल के अंदर अंदर वो भी आ जाएंगी, जब वो भी आ जाएंगी तो गाड़ियां उस पे गाड़ी फिर उसके बाद बिल्कुल ही सिस्टम चेंज हो जाएगा, तो ड्राइवर भी नहीं होंगे उस गाड़ियों में, तो गाड़ियां खुद ही चलेंगी, तो लोग बुक कराएंगे, गाड़ी घर आ जाएगी, बैठ के चले जाएंगे, और उसके बाद ये ड्राइवरों का ये सिस्टम और ये टैक्सी में कोई समझ नहीं आ रही कि क्या होगा, क्या कितनी चेंजिंग, कितनी तेजी से ये चेंजिंग जो आ रही है ना, कोई समझ नहीं है कि क्या होगा इसका मुस्तकबिल।
1: अभी खबरें चलती रहती हैं, साथ साथ लोग जो है अपनी जो क्या अहमियत बढ़ाने के लिए भी खबर दे देते हैं कि गाड़ियां महंगी होने जा रही हैं, बिजली की गाड़ियां, उस पर टैक्स ज्यादा हो जाएगा, चार्जिंग के पैसे ज्यादा हो जाएंगे। लगता है जितनी गाड़ियां आगी वो तो वक्त के लिहाज से सस्ता काम होगा, महंगा होगा?
0: राज साहब, महंगा तो नहीं होगा, महंगा नहीं होगा, ये चार्जिंग जो है ना ये महंगी नहीं होगी, क्योंकि ये जिस तरह तेल हो या बिजली या जिस तरह का हिसाब इनका होता है ना, उसी हिसाब से, ये नहीं कि गाड़ियां ज्यादा आ जाएंगी तो बिजली महंगी कर देंगे, ये नहीं होगा, क्योंकि और दूसरा यह है कि जितनी गाड़ियां होगी कुछ ना कुछ आपको पता है मुख्तलिफ जगह पे उन्होंने सेल भी लगाई होती है, जैसे मार्केटों पे होती है, तो कुछ जगह पे होती है कि ये फलां जगह पे है इतनी है, जो है ना आप देख ले सियाकल खो पे है, उन्होंने अपना जो चार्जिंग ऐप जो है उसमें लिखा हुआ है इतना इतना करेंगे तो इतने का होगा, और दूसरे क्यूएट का उसका अलादा चार्जिंग है, दूसरा अलादा चार्जिंग, तो ये जो मार्केटिंग मार्केट में बैठे हुए लोग हैं ये कोशिश करेंगे ज्यादा ज्यादा उनके चार्जर इस्तेमाल किए जाए जो ना गाड़ी चार्ज करने के लिए, तो वो थोड़ा सा बेनिफिट तो लगाएंगे फिर, तो ये महंगा मेरे ख्याल में महंगा नहीं होगा।
1: जो साहब, आपको एक खबर देते चले, चंद लम्हे ब्रेकिंग न्यूज दी है सैयद तकीर हसन बुखारी साहब जो कि थिंक टैंक हैं, वो वेंस्टा पार्टी को ज्वाइन करने जा रहे हैं।
0: अच्छा जी, माशाल्लाह बड़ी अच्छी गल है, शाह साहब जी माशाल्लाह बड़े मुतर्रक इंसान है और आपके रेडियो पे काफी इंफॉर्मेशन भी देते रहते हैं, और जो है ना पूरा मामला जो कोपनहेगन में चल रहे होते हैं उनमें बातचीत भी करते रहते हैं, तो शाह साहब हमेशा सियासत में इन रहे हैं, डैने सियासत में भी और पाकिस्तानी सियासत में भी, डैने सियासत में काफी उनको नॉलेज भी है, वो पहले काफी अरसे से जो है ना हिस्सा भी ले चुकी है, रहते भी हैं, इन भी रहते हैं, और माशाल्लाह ये कोई नहीं है कि वेंसा पार्टी है या सोशल डेमोक्रेट है या कोई भी है या इन लिस्ट है, ये हम लोगों को सब पार्टियों में जाना चाहिए और सब पार्टियों के साथ हमें मिल के काम करना चाहिए, वर्क करना चाहिए। अगर कोई पार्टी हमारे जो है एंटी है, तो जब हमारे लोग जाएंगे उसमें, जब बैठेंगे तो वो भी लोग देखेंगे कि, और हमारे लोगों के तासरात देखेंगे, बातचीत सुनेंगे, तो लोगों का उनके भी माइंड चेंज होंगे। तो जब उनके उनकी पार्टी में कोई जाएगा ही नहीं, तो फिर तो वो जो अपने अपने जेहन के मुताबिक जो उन्होंने फैसले करने हैं वो करेंगे, डट के करेंगे। तो इसलिए सब पार्टी, मेरा ख्याल है कि सब पार्टियों में जाना चाहिए। कोई भी पार्टी है जो हमारे खिलाफ भी है उसमें भी जाना चाहिए, हमारी मायत में भी है उसमें भी जाना चाहिए। सब पार्टियों में हमने रहना इधर है, हमने डेनमार्क में ही रहना है, हमारे बच्चों ने भी इधर रहना है। तो हमारे बच्चों को चाहिए कि इन पार्टियों में इन्वॉल्व हो, यानी सियासत में इन्वॉल्व हो। तो शाह साहब तो माशाल्लाह बड़े मुतहर्रक है, माशाल्लाह अच्छा ही सोच के उन्होंने कुछ फैसला किया होगा।
1: चौधरी साहब, हमारी सियासी पार्टियों का क्या मुस्तकबिल है डेनमार्क में?
0: हमारी सियासी, क्या पाकिस्तानी सियासत,
1: सियासी पाकिस्तानी सियासत की बात कर रहा हूँ?
0: हाँ जी राज साहब, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि कोई मुस्तकबिल नहीं है इनका। हमारी पार्टी जो मैं जिसके साथ मुंसलिक था, जो मुस्लिम लीग काफ के साथ, आपको पता है काफी अरसे से जो मेरी मैं जिम्मेदारियां अदा कर रहा था, तो जब उन पार्टियों ने मेरे जो है ना, पार्टी के कायद जो शुजा साहब जो थे, उन्होंने तो सालक साहब ने ऐलान कर दिया है ना कि बाहर हमारी कोई पार्टी का ओहदा नहीं होगा, किसी को हम कोई ओहदा नहीं देंगे। कोई अपनी मर्जी से कुछ लिखता रहे कहता रहे तो हर को उनको घर घर जाके तो नहीं कहना पड़ता ना इंसान को। जब कोई एक लीडर जो बयान देता है या कोई लीडर जो उनका बयान होता है उस पर ही अमल करना होता है। तो उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी का कोई बाहर ओहदा नहीं है, सब बराबर है, किसी भाई को हम नाराज नहीं करते किसी कंट्री में भी कि इसको इसको दे दे उसको दे दे, ये नहीं है। और जो इशजा साहब ने पहले भी कहा था, फिर सालिक साहब ने भी ऐलान कर दिया है कि आपने देखा भी था, आपने फेसबुक पे भी लगाया था, तो ये हमारी पार्टी का तो कोई ओहदा मैं समझता हूँ कि किसी मुल्क में भी उन्होंने कोई ओहदे दौरान नहीं अब रखा, सारे खत्म कर दिए हैं उन्होंने।
1: चलिए साहब, आखिर में कुछ कहना चाहिए, एक मिनट है, दो मिनट है आपके पास, कोई मैसेज देना चाहे?
0: मैं समझता हूँ राज साहब, सबको मिलजुल के रहना चाहिए और हमें डेनमार्क में, डेनमार्क की पार्टियों में हिस्सा लेना चाहिए और डेनमार्क में पार्टियां बना के उनके साथ अपनी कम्युनिटी के साथ मुंसलिक रहना चाहिए। कम्युनिटी को जो है ना, जो भी मामलात होते हैं हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के, हमारे बुजुर्गों के मसले मसाइल जो है ना, हमें उनको हल करना चाहिए। मैं समझता हूँ सबको मिलजुल के रहना चाहिए।
1: चलिए साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमारे साथ शेयर किया।
0: थैंक यू, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी राय साहब, सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम।
1: समाज नाजरीन, ये थे चौधरी शौकत जो कारोबारी शख्सियत है, उन्होंने अपना मैसेज दिया। समाज हमारा किसी से मुतफिक होना ज़रूरी नहीं है, कोई बात करना चाहता है, अपनी राय देना चाहता है, उसके लिए हमारा टाइम हाजिर है।
2: ये रेडियो आपकी आवाज़ है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज़ सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: जो है वो आप देखेंगे कि शहबाज शरीफ की उम्र का तख्ता और उठ के इमरान खान को दोबारा वजीर आजम बना दिया जाएगा। तो जो बंदा भी इस तरह का ब्लंडर करता है, जो भी इस तरह की झूठी खबरें देता है पीटीआई के या इमरान खान के जो फैन क्लब है, वो सारे के सारे उसका प्रोग्राम देखना शुरू हो जाते हैं, उसे धड़ाधड़ लाइक मिलते हैं और वो अपना पैसा कमाता है। फिर उसे जो है वो इससे जो है वो मजीद हौसला अफजाई होती है और वो अगले दिन इससे बड़ा झूठ बोलता है। तो ये झूठ बोलना, तवातर के साथ झूठ बोलना और एक दूसरे से बढ़ के झूठ बोलना, ये जो इमरान खान का नया सोशल मीडिया फैन क्लब है, इसने जो है इसका ये समझे कि अपने अपनी एक जिम्मेदारी ले रखी है कि हमने जो है वो पीटीआई के जो सादा लोग हैं, जो सच्चे लोग हैं, जो आज भी जो है वो चाहते थे कि यार दूसरी दो पार्टियों से जो काम नहीं हुए वो हम करेंगे, तो उन्हें वरगला के जो है वो इस्तेमाल कर दिया। आप देखेंगे पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कमीशन और मुज़ाकरात जहाँ पे हो रहे होते हैं वहां पे, यहाँ पे सेनेट के अंदर, हर जगह से जो है वो यूट्यूबर खड़े होकर अपना लाइव शो कर रहे होते हैं और उस लाइव शो में एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे होते हैं, दूसरी तरफ वो यूट्यूबर जैसे मतीउल्लाह जान सबको दे ले, तो वो खड़ा होके जो है वो डिक्टेशन दे रहा होता है कि पीटीआई को असल में ये कहना चाहिए, पीटीआई की क्यादत को यूं खड़ा स्टैंड लेना चाहिए, पीटीआई को हुकूमत के सामने ये मुज़ाकरात करने चाहिए, ये जो है वो मुतालबात रखने चाहिए। आप देखेंगे मीडिया का काम ये नहीं होता वो कि वो किसी पार्टी को डिक्टेशन दे, वो पार्टी ने जो पॉलिसी ली है, जो भी उसकी लाइन है, वो अवाम के सामने लेके आता है, लेकिन वो उन्हें वरगलाता नहीं है। पाकिस्तान के अंदर उल्टी गंगा बहती है और इस शायद हमारे जो पार्टी के सरबराहान है वो भी अब इसके आदी हो गए हैं और उन्हें हर वक्त जो है वो अपने हक में तारीफें सुनना जो है वो पसंद है। वो जेल में बैठे हुए भी ये सोचने पर आबादा नहीं है कि हमसे कौन कौन सी गलतियां हुई और उन गलतियों की वजह से आज हमें ये खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो इमरान खान का साहब की भी जो शख्सियत है वो भी इसी का असीर हो चुकी है।
1: तो जंजुआ साहब, वह आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अपने केसेस का जो है वो फेस करना चाहिए। आपकी बात सही है कि पार्टी अपनी जगह है लेकिन केसेस अपनी जगह है, केसेस लड़े, वकला उनके पास मौजूद है, टीम उनके पास मौजूद है, अपनी केसेस होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बढ़िया मीडिया के एंकर हैं, अपना क्या नाम है, वो अक्सर आप भी उनको सुनते रहते हैं, तो वो कहते हैं कि ये 9 मई का वाकया हुआ, ये जनरल फैज साहब और इमरान खान की प्लानिंग थी, अगर स्टेट के खिलाफ कोई बगावत करता है तो उसका भी तो कोई कानून होगा।
0: आप जिस मुल्क में मैं और आप रहते हैं यहाँ पे मुझे आप किसी भी शख्स के अंदर जो बड़े बड़े जो है वो ताकतवर बनते हैं और बड़े बहादुर बनते हैं और उन्हें बोले कि आप वज़ीरे आज़म को गाली दिखा, एक गाली निकाल के मुझे दिखा दो, आप उस सिस्टम के ऊपर जो लोग बैठे हैं आप उन्हें ये कह के दिखा दो अपने वीडियो व्लॉग के अंदर कि ये करप्ट है और फिर देखो आपका अंजाम क्या होता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस तरह का मस्खरापन इतना आम हो चुका है कि हमारी आवाम जो है वो इसके अलावा कोई खबर सुनने को तैयार नहीं है कि उन्हें ये खबर मिले कि मुर्गी ने चूंग मार के जाल को नीचे गिरा दिया, या ये खबर हो कि राह चलते हुए राहगीर ने कुत्ते को काट लिया। वो जो अच्छी खबर होती है वो नहीं सुनती, उन्हें जो है वो ऐसी खबर सुनने की आदी हो गई है हमारी आवाम के जिसका कोई सर पैर नहीं होता, और फिर वही जाके लोग जो है वो नाई की दुकान पे या किसी मिनाजुल कुरान के सेंटर पे जाके इस तरह की लायानी बातें करते हैं और वहां पे अपना एक नया फैन क्लब बनाते हैं और फिर वो वहां पे बैठे हुए लोग इस शख्स को अपना जो है वो एक रहनुमा बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये एक तमाशा हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, यही बैरून मुल्क जो पाकिस्तान से आए हुए लोग हैं ये कर रहे होते हैं और इसी वजह से जो है वो पाकिस्तान को इन चैलेंजेस का सामना है। लेकिन राजा साहब जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस तरह की जो बदमाशियां हैं, इस तरह की जो हरकतें हैं, उनका अंजाम ये होगा कि आइंदा जब ये लोग पाकिस्तान जाना चाहेंगे तो इनके वीजे नहीं लगेंगे, ये जब ऑनलाइन वीजा अप्लाई करेंगे तो इन्हें जो है वो हमारे जितने सफारतखाने हैं उनका वीजा रिजेक्ट करेंगे, वो कहेंगे कि आप पर्सनली आए, और जब ये पर्सनली वीडियो बेल के ऊपर आएंगे तो वहां पे वो आइडेंटिफाई होंगे कि ये तो वही लोग हैं जो पाकिस्तान को गालियां देते थे, फील्ड मार्शल को गालियां देते थे, तो दहशत गर्दी के जुर्म की वजह से इनके जो आईडी कार्ड्स हैं वो ब्लॉक होंगे और फिर इन्हें समझ आएगी कि हमने पाकिस्तान जाना था, अपने अपने वालदैन को मिलना था या अपनी जायदाद अपनी जमीनों को का बंटवारा करना था, तो हमारे लिए क्या क्या हम सीटें खड़ी हुई हैं। चले ये लोग तो ऐसे हैं कि नहीं, पाकिस्तान से कोई गर्ज नहीं है, लेकिन इन

0: हुकूमत एक धोखादेही का नाम है, करप्शन का नाम है, लूट मार का नाम है, रियासत को तबाह करने का नाम है, इस मुल्क के इदारों को बर्बाद करने का नाम है। तो नाम तो तब रहे किसी का कि किसी का कोई नाम हो।
1: अच्छा,
0: इनका तो कोई ना नाम है, ना निशान है, ना इज्जत है, ना वकार है। ये लूट मार के लोग हैं।
1: ठीक है,
0: इसलिए वो जो आपका एक रिवायती जुमला है ना कि उनके नाम रहा, मैं उसमें नहीं एग्री करूंगा।
1: ठीक है,
0: मगर ये है कि वो इसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए था अपोजिशन
1: इसका हिस्से नहीं। बात आ गई, ठीक है, बड़ी क्लियर।
0: फंदे में थी, लटकती, फांसी चढ़ती।
1: सिप्ला, आप 17 जून को धरना देने जा रहे हैं तारुल कादरी साहब, आप पाकिस्तान कब आएंगे? और ये जो आपकी वापसी और धरना है, ये भी पैनामा से मुताल्लिक ही हुकूमत के खिलाफ जो भी इस वक्त काविशें हैं उसका हिस्सा और तसलसल है?
0: देखिए, मैं इंशाअल्लाह ताला जैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत को मंजूर होगा पाकिस्तान तो मैं आ रहा हूँ, और 17 जून का एहतजाज भी होगा। उस वो एहतजाज जो है बुनियादी तौर पर तो 17 जून के शुहदा के
1: ठीक है
0: होगा, अदल और इंसाफ को तलब करने के लिए, जालिमों को अपने इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाने के लिए, कातिलों से उनके खून का कानूनी तरीके से बदला मांगने के लिए, शहीदों के वारसान को उनका हक दिलाने के लिए, वो तो इसलिए होगा। और साफ साफ जाहिर है, पनामा लीक्स का मैटर है, करप्शन की हद है। और पनामा लीक्स जो है, ये तो आप लफ्ज बोले ना, पनामा लीक्स का लफ्ज, जरा लीक्स कहते हैं कि एक बहुत बड़ा, आप समझें एक उबारा हो या एक बहुत बड़ा कोई एक वेसल हो, उसमें थोड़ा सा सुराख हो जाए तो थोड़ी सी लीक होती है। तो लीक्स का मतलब तो ये है कि पीछे एक समंदर है।
1: सही।
0: ये तो सिर्फ पनामा की एक कंपनी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पनामा की एक कंपनी है, उस कंपनी की कुछ मालूमात लीक हुई है।
1: ठीक है,
0: सारे पनामा की मां की नहीं हुई।
1: सही।
0: और पनामा एक नहीं है, हजार, हाँ, यानी यहां 92 के करीब ऐसे आइलैंड्स और कंट्रीज हैं जहां ऑफशोर कंपनियां बनी हुई हैं, हजारों इनकी, खुदा जाने ऑफशोर सैकड़ों कंपनियां हैं, सैकड़ों कंपनियां इनकी, बच्चों के नाम, फैमिली के नाम, फ्रंटमैन के नाम। और ये तो सैकड़ों कंपनियों में से फिर एक फर्म जो इनकी मैनेजमेंट करती है, लॉ को डील करती है, उसकी कुछ मालूमात लीक हुई है। तो पीछे तो करप्शन का एक समंदर पड़ा।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, ये में जरा बड़ी संजीदा बात हो रही है,
0: इसलिए मुझे इजाजत दें
1: थोड़ा सा वहाँ लाइटर साइड पहले बता दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत सारे लोग वैसे बड़ी बातें हो रही थी तो
0: इजाजत दें,
1: बहुत सारों की निकल आई, पहले बता दें डॉक्टर साहब, आपकी तो कोई ऑफशोर कंपनी नहीं है ना, पहले बता दें, फिर आप बात जारी रखें।
0: अल्लाह का शुक्र है, ना मेरी कोई ऑफशोर, ना कभी ऑनशोर
1: है ही नहीं कोई,
0: हमारा दामन हमेशा साफ रहा है और अल्लाह के हुक्म से मरते दम तक रहेगा।
1: वैसे डॉक्टर साहब, मैं माहौल बना हुआ है, आप भी लोगों को बता दें कि भाई ये मेरे कुल असासे, इतना मैं टैक्स देता हूँ और ये सारा कुछ, ताकि बिल्कुल ये भी खो ही जाए हाथ के हाथ
0: मेरे। तो जी, मैं आपको आना, मेरी सारी दुनिया को मालूम है, सारी दुनिया को मालूम,
1: बता दें।
0: अच्छा, मैं अब आपको बताना चाहता हूँ एक इम्पोर्टेंट चीज,
1: जी जी,
0: इजाजत दें तो इनके करप्शन के कुछ पहलू में और मंजर आम पे आज के प्रोग्राम के लिए जरिए मैं लाना चाहता हूँ नई चीजें। आप इजाजत देते हैं, मैं कुछ चीजें और ऐड करना
1: चाहता हूँ, आप मुख्तसर बता दीजिएगा, बिकॉज बहुत सारा वक्त महदूद और बहुत सारी बातें मैंने और करनी है आपसे, पूछनी है, तो बस आप बताइएगा जी।
0: अब देखिए, देखिए पहले पाकिस्तान में करप्शन होती थी ठेकेदारों के जरिए, अब वो पुराना कल्चर हो गया, अब कंपनियां बना के करप्शन की जाती है। और इन्होंने बीसियों दर्जनों कंपनियां पाकिस्तान में बना रखी और उनके लिए एक्ट बिल मंजूर करवा लेते हैं, और सैकड़ों कंपनियां बैरून मुल्क, दर्जनों मुल्कों के अंदर सैकड़ों कंपनियां बनवा रखी हैं। ये जितने ठेके चलते हैं पाकिस्तान में, हर ठेके के पीछे अगर आप असल ठेकेदार के चेहरे से पर्दा उठाएं तो हर पर्दे के पीछे ये खुद नजर आएंगे। कहीं एक्सक्लूसिव होंगे, कहीं इनका फ्रंटमैन होगा, कहीं पार्टनरशिप होगी।
1: अच्छा,
0: जो कुछ हो रहा है, मैं तब आपको तमाम ठेकों की बात कर रहा हूं। अब हत्ता के बिल करा के अदालतों और इदारों को ला ताल्लुक करवा देते हैं, बिल मंजूर करवाते हैं।
1: ठीक है,
0: इन्होंने, अब मैं इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने, ये मैं कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है उसकी रिपोर्ट दे रहा हूं, ऑडिटर जनरल पाकिस्तान 2014 और 2015 की रिपोर्ट दी, ये सरकारी रिपोर्ट है। उन्होंने कहा कि पंजाब गवर्नमेंट ने लाहौर में एक वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी बनाई,
1: ठीक है,
0: और बगैर किसी एग्रीमेंट के उसको 11.5 अरब रुपए का कर्जा दे दिया है। कंपनी प्राइवेट है,
1: ठीक है,
0: कंपनी प्राइवेट है वेस्ट मैनेजमेंट की, पंजाब गवर्नमेंट उसको 11.5 अरब रुपए का कर्जा दे रही है। अब ये 11.5 अरब कहां गया, क्यों दिया? کس لیے دیا؟ اس سے سکول بننے تھے.
1: اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یقین ہے کہ ایسی آپ بہت ساری مثالیں بتا سکتے ہوں گے اور وہ بڑی ویلڈ ہوں گی.

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: समय हमने इंफॉर्मेशन के लिए प्रोग्राम बनाए, काफी बनाते रहते हैं। इलेक्शन को कवर किया, स्वीडन के इलेक्शन की बात की। चूंकि स्वीडन के इलेक्शन की इसलिए बात हो रही थी चूंकि वो कम्यून के भी इलेक्शन थे, आमद के भी इलेक्शन थे, पार्लियामेंट के भी इलेक्शन थे, उस पर हमारे उम्मीदवारों ने भी हिस्सा लिया। चूंकि वो डैनिश दोहरी शरीयत का भी मसला था, वोट दोनों तरफ देने का हक था, अम्बेसियों में भी आप वोट दे सकते थे और उसके अलावा जाकर वोट आप डाल सकते थे। तो जिसको वोट का हक मिला होता है उन्होंने वोट अपना डालना होता है। तो इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने इस चीज़ों को प्रोग्रामों में हिस्सा भी लिया है, चीज़ों को बड़े करीब से भी देखा, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मेरी मुराद है शायद नसीम, शायद एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं।
2: सब आपको भी खुश आमदीद। इतवार का एक सुहाना मौसम है, धूप लगी हुई है कड़ाकेदार,
1: बड़ी कड़ाकेदार धूप है, इसमें कोई शक नहीं है। जो है विटामिन डी जो है मुफ्त में मिल रही है, लेकिन कमरे के अंदर तो नहीं मिलती क्योंकि शीशे है हमारे, धूप तो बहुत ज्यादा आती है, लेकिन जो बाहर विटामिन डी मिलती है वो तो हो रही होती है, उसका मजा ही कुछ और है।
2: बिल्कुल, क्या कौमें हैं ये इस धूप का फायदा उठाती हैं, बाहर निकलती हैं, बैठती हैं, एंजॉय करती हैं। और एक तरफ वो कौमें हैं जो घरों के अंदर सोफों में बैठी हैं, साजिशें कर रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ।
1: नहीं, वो भी तो मजा आता है लोगों को ना, वो भी तो काफी है ना, अभी अच्छी लगती है,
2: वो भी काफी है।
1: अच्छा, शायद बताएं, स्वीडन के इलेक्शन हो गए, सारी चीजें तस्वीर सामने आ गई और मेम्बरान जो बने या ना बने, हुकूमत भी अभी बनी नहीं, जिस तरह डेनमार्क की 4 महीने लगे थे बनते बनते, आपकी भी यही लगेंगे।
2: हमारे आज से 4 साल पहले स्वीडन के इलेक्शन हुए थे, यही वाले 4.5 साल पहले, बात 4 साल पहले की बात है। तो तब हमें 5 माह लग गए थे तकरीबन गवर्नमेंट बनते हुए, 5 माह से ज्यादा, आपको शायद याद हो। ये आज 2026 से 2022 की बात है, बात 4 साल बाद इलेक्शन दोबारा हुए हैं। तो स्वीडन का ये मैंने आपको बताया था लास्ट जब मेरी आपके यहाँ पर इंटरव्यू आप हो रहा था आपके दोस्त से, तो उसमें 2 से 4-5 मेहमान और भी थे, तो मैंने आपको बताया था कि स्वीडन की जो पिछले 10-12-15 सालों से आप ले जाए, बल्कि 20 सालों से ले जाए, इनकी सियासत मीडिया और लॉबिंग के गिर्द घूमती है। पहले इसको खास तौर पर मीडिया इसको जो है ना मीडिया के जरिए इसको इसकी लॉबिंग कराई जाती है, फिर इसको खास जो क्या कहते हैं एक ग्रुप है उसके जरिए इसकी लॉबिंग पूरे स्वीडन में कराई जाती है और फंडिंग इसकी बाहर से होती है, मैंने आपको बताया था। वो उसके मुताबिक वो चल रहे हैं, गवर्नमेंट वो कभी भी एक आने नहीं देते जिसके जिसमें 2/3 सीटें या ज्यादा सीटों से एक आसानी से कोई गवर्नमेंट एक वो बना ले, तो वो ऐसे ही रखते हैं कि इसको मैं यही देख रहा हूँ कि 10-12 सालों से इसको वो बराबर ही लेके जा रहे हैं, यानी जो भी इलेक्शन होता है उसमें एक का फर्क होता है या बराबर कर देते हैं उसको, या फिर उसके बाद वो होता है कि वही जो ब्लॉक है रेड है या ब्लू है, 2 ब्लॉक है, वही ब्लॉक जो थोड़ी सी सीटें लेके जीता भी है तो उसी ब्लॉक के अंदर उसी के खिलाफ उसका अपना अपने ब्लॉक की दूसरी पार्टी आ जाती है, तो फिर ऐसे गवर्नमेंट नहीं बनती, फिर जो है ना वो काम जो मामला है ना वो वहां पर ही क्या कहते हैं पढ़ा के 4-5 माह तक या इससे ज्यादा भी जा सकते हैं। तो आप कभी कहते हैं कि वही वाली गवर्नमेंट दोबारा आ जाएगी जो पहले थी, ये खैर ऐसा तो नहीं होता, वही तो नहीं आ सकती, लेकिन गवर्नमेंट फिर आपकी मजबूत नहीं बनती, गवर्नमेंट आपकी उसी तरह रहती है जिस तरह पहले चल रहा है पिछले कितने सालों से। तो स्वीडन में ये आखिरी जो गवर्नमेंट आई है जो रही है इसमें तो जो अमीर लोग हैं वो अमीर तर हो गए हैं और जो उनको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट की गई है टैक्स में।
1: तो अब दुनिया में ट्रेंड चल रहा है अमीर होने का, तो हर आदमी अमीर होना चाहता है, सियासतदान भी अमीर होना चाहते थे, पहले सियासत करते थे अब अमीर होना चाहते हैं, चलें ये तो चलता रहता है। लेकिन जो हमारी अपनी कम्युनिटी है जिसको मैं गैर मुल्कियों की कम्युनिटी कहूँगा, क्योंकि अब स्वीडिश हैं, गैर मुल्की तो नहीं है, उन्होंने नेशनैलिटी ले ली है और जिन्होंने नहीं ली वोट का हक था, तो ये हमारे लोगों को क्यों नहीं समझ आती इस वोट की अहमियत क्या है, फिर वही पाकिस्तानी तर्ज की सियासत शुरू हो जाती है।
2: देखें जी राजा साहब, पहली तो बात यह है कि जब आपने यहाँ पर सियासत करनी है, यहाँ पर आपने इलेक्शन लड़ना है, सीधी सी बात, सिंपल सी बात करूंगा, सारी लोगों को सिंपल समझ आ जाएगी, घुमा फिरा के करने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, कहता रहूंगा कि आपने यहाँ की सियासत के मुताबिक चलना है, जो उनका सिस्टम है। आपने यहाँ पर अपनी देसी सियासत नहीं करनी, आपने लोगों को अपना अपना मंशूर बताना है, अपनी पार्टी का जो आपका मंशूर है उसको सच सच बताना है। आपने आपने कोई देसी सियासत नहीं करनी। झूठ बोलेंगे तो झूठ यहाँ पर ज्यादा देर नहीं छुपा जा सकता। जो निचले लेवल से कोई अपनी सियासत शुरू कर रहा है यहाँ पर, चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई भी है, जो पार्टी के अंदर एंटर हुआ है, जो इसको जिसको टिकट मिली है, कोई भी है जी, यहाँ पर मैं आगे जाके बात करूंगा, वो इस बारे में भी आप सवाल करेंगे, तो वो आपने जो अपनी सियासत शुरू की है, अपने आपको टिकट दी है पार्टी ने, चाहे काउंसिल की है, चाहे आपको क्या कहते हैं पार्लियामेंट की कोई कोई दी है टिकट, तो वो आपने उसको सच बयानी से काम करना है। पक्ष नहीं, सियासत की तरह नहीं चलना, आपने झूठ नहीं बोलना, क्योंकि यहाँ झूठ ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे के अंदर खत्म हो जाता है, आप पकड़ जाते हो। तो और दूसरे जो यहाँ पर लोग हैं जो किसी को भी वोट देते हैं, जो तो वो भी जनाब पक्ष की सियासत को मजे देने जरा के ना दे। गो के यहाँ पर स्वीडन में बहुत से लोग नए आए हैं, कोई किसी को 1 साल हुआ है, 2 साल हुए हैं, 4 साल हुए हैं, ज्यादा से ज्यादा 3-4 साल से ये लोग, कोई स्टूडेंट है, कोई पुर्तगाल से आया है, कोई यूनान से आया है, ज्यादातर पुर्तगाल से आए हैं, वीजे खुले हैं, स्टूडेंट आए हैं, तो वो उनको सियासत का नहीं पता है यहाँ की, तो यहाँ की सियासत को उसी तरह लेते हैं जैसे पाकिस्तान में आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया होता है। तो ऐसे नहीं होता, आपने यहाँ पर पहले इसका मतालिया करना है, सियासत को समझना है कि किस तरह की सियासत है, क्या है, तो उसके मुताबिक आपने किसी के इंडिविजुअली किसी की जात के ऊपर पर्सनली आपने किसी को वोट देना, वो आप करेंगे तो फिर आपका वोट जाया हो जाएगा, क्योंकि आपने देखना कि ये किस पार्टी को आप वोट दे रहे हैं, उस पार्टी का मंशूर क्या है, वो पार्टी पहले आपके जो इस स्टूडेंट में इकतदार में उसने आपके लिए क्या किया है, उसको जाके पीछे देखें। एक वाहिद इंडिविजुअली बंदे को देख के या किसी को भी देख के आप वोट ना दें, पार्टी को देखें, पार्टी ने पहले क्या किया है यहाँ पर, ये सबसे ज्यादा वो जरूरी है। तो और जो जो इलेक्शन कैंपेन में जो जो वो चल रही होती है, जो पिछले 3 माह से चल रही थी, जिसमें बहुत सी पार्टियां अपना मुद्दा बयान कर रही होती हैं, उसको उस हर एक चीज को जो उनकी कैंपेन होती है उसको देखें, उसमें पार्टियां क्या कह रही हैं, और वो आपके आपके खिलाफ क्या जो है ना बकवासियत कर रही हैं, खासकर फार्मर्स के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, उसको देखें। और माजी में जो है ये सोशल डेमोक्रेट ने कोई कुछ ज्यादा अच्छा करदार अदा नहीं किया, मैं सोशल डेमोक्रेट फार्मर के हक में जो उन्होंने वादे किए थे वो पूरे नहीं किए, मैं इसको इस तरह लूंगा यहाँ पर वो कहते हैं स्वीडन में, तो सोशल डेमोक्रेट या हमारे यहाँ पर मेरा तो मालमो में इनकी क्या कहते हैं हुकूमत रही है, मालमो में जो है इनकी, तो अभी भी है इनकी, तो उसमें कोई ज्यादा जो वादे किए उन्होंने उन्होंने कोई वो चीजें जो है वो उसको पूरा नहीं किया, उस तवक्को पे वो पूरा नहीं उतरे, तो वो उसको देखें आप पहले।
1: तो इसमें कोई हमारा अपना कसूर भी है या कि पार्टियों का कसूर है?
2: देखिए जी, मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि हमारे जो जो फॉरनर्स हैं उसमें सबसे ज्यादा जो है देखें, सोमालिया का एक पार्लियामेंट के अंदर आ गया है जिसको स्वीडिश नहीं आती, और वो लोगों ने इसको वोट दिया है क्योंकि वो हक की बात कर रहा था, उनको पता था कि ये हमारे लिए जाके वो कहते हैं वो लड़ेगा, और वो सच और हक की बात कर रहा था। अब देखें, और बहुत से फॉरनर्स आए हैं उसके अंदर, पार्लियामेंट के अंदर आए हैं, काउंसिल तो बहुत ज्यादा बने हैं, फॉरनर्स की बात कर रहा हूँ, जिसमें तुर्की है, कुर्दी है, बाल्कन कंट्रीज के लोग हैं, वो तो छोड़ दें, काउंसिल तो कोई बड़ी बड़ी बात नहीं होना, लेकिन पार्लियामेंट के आना बहुत बड़ी बात है, उसके अंदर बहुत ज्यादा लोग आए हैं स्टॉकहोल्म के अंदर, जो पार्लियामेंट है, और वो उसमें मैं आपको बता दूं कोई पक्ष नहीं आया, ये भी बता दूं आपको।
1: वजह
2: ये है कि इत्तेफाक नहीं है, एका नहीं है, झूठ है, अपनी पक्षनी सियासत भी में इन्वॉल्व करते हैं, दानिशा ना करते हुए भी कर देते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ की 3री जनरेशन वॉच कर रही होती है, अब 3री जनरेशन है ये, मैंने फिर बताया था कि स्वीडन में बहुत से लोग पक्षन से आए हैं, स्टूडेंट हैं, वीजे लगा के, उनके वीजे नहीं है अभी, वो किसी किसी पेंडे नहीं चढ़े, तो वो वही वो बात ही नहीं करते, वो सिर्फ अपने जाती फायदे के लिए वो ट्रक की बद्दी के पीछे लग जाते हैं कि यार ये जो बंदा है ये जीत के कौंसिल तो मेरा वीजा लगा देगा, या मेरे वीजे के लिए कोई को करेगा, ऐसे नहीं होता। कौंसिल वीजा लगाएगा आपका? कैसी यार वैसे बेवकूफी है ये, कि कहाँ पे आपकी तलीम
1: तो
2: आपने हासिल
1: सर
2: की
1: ये
2: है?
1: क्यों नहीं बात समझ आती? ये एक बड़ी फेलस बात हो गई है कि पाकिस्तानियों का आपस में इत्तेफाक नहीं है, ये कोई बात तो अच्छी तो नहीं है, तो बहुत नेगेटिव बात है।
2: देखें ये इसको जड़ से पकड़े ना, आपका जड़ क्या है? आपका मुल्क क्या है? वहां पर कोई, वहां पर कोई चीज चल रही है फैलस? ये सच है ना, सच बात करनी चाहिए। जब सच्ची बात नहीं करेंगे, जड़ से चीज को नहीं पकड़ेंगे, तो हम उसको ऊपर से शुरू करेंगे। तो देखें ना, ये आपको नजर नहीं आ रहा क्या हो रहा है? तो आप ये अपना राजा साहब, 50 लाख बंदा आपका बरौने मुल्क आ चुका है, स्वीडन के वीजे खुले हुए हैं, धड़ाधड़ लोग आ रहे हैं स्वीडन स्टूडेंट छोड़ के पाकिस्तान को, और वो उनमें से बहुत से पढ़े लिखे लोग हैं। ये बात ये कलमैया है, ये सोचने की बात है, लेकिन सोचता कोई नहीं है इसके ऊपर, बातें करते हैं। आए हैं कि नहीं? आ नहीं रहे? आपको ज्यादा पता होना चाहिए, मुझे तो आपसे ज्यादा पता है, स्वीडन में रहता हूँ। दूसरे ममालिक जो है जहां पर वीजे खुले हैं, जो पोलैंड तक लोग आ रहे हैं छोड़ के अपना मुल्क, क्या वजह है? मजबूरी, गरीबी, काम नहीं, ये सारी। ऐसे तो कोई किसी का छोड़ने का दिल ही नहीं चाहता। तो वो है जड़ है, आपका मुल्क है, मेरा मुल्क है, वहां पर कोई पुरसाने हाल नहीं। हाँ अभी जो बात की, जो मीर है मीर हो गया, खरब जो खरबपति जो अरबपति था वो खरबपति है, कोई पूछने वाला नहीं है कि ये पैसा कहाँ से आया है, कोई पूछने वाला है? इधर तो पूछता है ना कि शायद तेरे को पैसा कितना आया है, लो जी हिसाब दो, हिसाब दूंगा, जो क्लियर हो गया। डरते हैं लोग यहाँ पे, एक बार सोचते हैं यहाँ पर लोग करते हैं जो वो कहते हैं, सिस्टम यहाँ का वो पकड़ता भी है जो फ्रॉड करते हैं, जो जो अमीर लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर टैक्स दिया वो रहते हैं, टैक्स दे के अपना सारा कुछ उन्होंने अपना अपना अपना अपना क्लियर किया हुआ है, चाहे वो सियासत में आया हुआ है, चाहे मैं भी बात करूँ जो चाहे सियासत में है वो भी क्लियर होके आया हुआ है, और पहले क्लियर होके आया है और बाद में कैसे अमीर हुआ है वो भी क्लियर हो गया। ये सिस्टम तो यहाँ चल रहा है ना उसके पता, चलो वो तो एक दूसरी बहस है
1: तो
2: कि
1: गैर
2: यहाँ
1: मुल्कियों का कोई भी सिस्टम जो है वो सियासी लिहाज से या अपनी कम्युनिटी के लिहाज से वो सही नहीं चल रहा, इस पर ज़ाती इख्तलाफात आपकी बातों से पता चलता है। लेकिन ये एक टैक्सी ब्रांच में गैर मुल्कियों की इजारादारी थी और ये दोबारा जो है वो कोई और कंपनियाँ आ गई हैं, वो उनकी इजारादारी बन रही है, इसका मतलब है कि यहाँ भी नाइतफाकी है।
2: इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आप टैक्सी की बात कर रहे हैं, गैर मुल्की जो कंपनी उधर आई है कोई, और वो उसने अपनी इजारादारी कायम की है, जारी बात है, हर एक को हक है यहाँ पर, आपका सिस्टम उन सब ने हर एक को बिजनेस के मौके दिए हैं, कोई भी आ सकता है। गैर मुल्की हम थे, मेरे वालिद थे, टैक्सियां थी, करते थे, बूढ़े हो गए हैं, पेंशनिस्ट हो गए हैं, बहुत से अंकल बहुत से बुजुर्ग कर रहे हैं, लेकिन इसमें यार ये तो भी तो देखना चाहिए यार साहब, इसमें हमारा अपना कसूर है। हमने आज तक गैर मुल्कियों ने, मैं हर खाली पाकिस्तानी का नाम नहीं लूंगा, इसमें सारे गैर मुल्की हैं, कोई इसको ये उधर ना ले जाए नेगेटिविटी में, सारे गैर मुल्की हैं, जबकि गैर मुल्कियों की एक बहुत बड़ी वहां पर 90% से ऊपर जो थी वो टैक्सी वो कंपनियां थी जिसके वो मालिक थे। और क्या आपने आज तक कोई अपना संस्थान बनाया? नहीं, बना ही नहीं सके। हाँ माजी में 30, 35, 40 साल पहले बनाया था, उसमें आप लड़ पड़े थे, हुस्न सेक्सी नाम था, लेकिन बहुत पुरानी बात है वो, 90s की बात है, तब भी आप आपस में लड़ पड़े, अभी नात भाई की बात हो रही है, वो हुस्न फिर आपसे वो डैनिश ले गए छीन के, वो पहला गैर मुल्की थे जिन्होंने वो खोले था हुस्न सेक्सी, उसके बाद आप कोई कुछ नहीं खोल सके, आपका संस्कार ही नहीं था अपना, जब तक आपका संस्कार ना होता इतफाकी के साथ तो आप आगे नहीं जा सकते। फिर उसके बाद आपने कोई स्टैक यूनियन नहीं बनाई, यानी कि एक मजबूत एक ताकतवर जिसकी बुनियाद आप रखते आज से 10 साल पहले रखते थे। चेक्स ने उन खत्म हुई थी 2018 में, हर उसका कंट्रोल होल्ड था, वो चेक और बैलेंस रखता था, और वही वॉन मैन का बेलिंग देता था, चलो वो खत्म हो गई, खत्म कर दी गई या जो भी हुआ, उसके बाद आपने फिर आपको 10 साल मिले, आज 2027 आ गया है, 9 साल आपको मिल गए, 9 सालों में आपने कोई स्टैक फिनिंग नहीं बनाई, आपने अपने उल्लू सीधा करने के लिए अपनी गाड़ी लेके काम पर निकल जाते, मेरे पास टाइम नहीं है मैं अपनी दिहाड़ी लावा, क्योंकि इसके लिए टाइम निकालना पड़ता है, आपको स्टैक फाइनिंग बनानी पड़नी थी। और ये पता क्या कहते हैं, जब ये बात करते थे ना, कोई कोई मेरे जैसे बात करते, ओ यार इंजीनियर होता बड़ा मुश्किल है, हर चीज को हमारी कौम ने स्टार्ट ही मुश्किल रखा हुआ है। आप ये काम कह रहे हैं ना करना, कोई भी काम सियासत, ओ यार ये बड़ा मुश्किल है, ये नहीं हो सकता, ना ही रखी हुई है यार। अल्लाह शुरू करो, अल्लाह ताला ने मदद करनी है ना, उसका नाम लो, कहते बिस्मिल्लाह करो नेक नीति के साथ, वो आपकी अल्लाह मदद करेगा। लेकिन ना इसकी बुनियाद ही ना सही है, इन बदबख्तों ने रखी हुई है। ओ नहीं यार ये नहीं हो सकता, हर चीज में वो नहीं यार ये नहीं हो सकता। तो देखो आप यहाँ पहुंच गए, तो ब्लेम हम किसको दें? गैर मुल्की जो आई है यहाँ कंपनी, उसको ब्लेम दें?
1: चले तो ये कंपनी आगे कानून से आएगी, आपस मार्केट में जो है वो लोगों को रोजगार मिल रहा है, आपकी ब्रांच में जो टैक्सी ब्रांच है तनख्वाह अच्छी मिल रही है, बेनिफिट अच्छे मिल रहे हैं, लोग तो जाएंगे।
2: यानी कि वो कौन सी गैर कानूनी आई है, अभी आपने बात की है, यहाँ के कानून के पूरे जो कानून के प्रोटोकॉल थे पूरे करके आई है, गैर कानूनी तो वो कोई नहीं आई, उसके ऊपर हमने वैन डालने हैं, रोना पीटना है। आप ये जब चीज हो जाती है तो उसके ऊपर आप क्या कहते हैं, हम लोग दौड़ना शुरू कर देते हैं। मैं आपको फिर कहूंगा कि आपने कोई मजबूत कोई यूनियन बनाई होती है ताकतवर, सारे वॉनमनों ने मिलके, बहुत पुरानी, अब तो बहुत लेट है, अब तो नहीं बन सकती, बनाई होती तो आज ये नौबत ना आती शायद, आप केस भी कर सकते थे, आप बड़ा कुछ, आप कानून के मुताबिक हर चीज चल सकते थे और ये चीजें आप कर सकते थे, लेकिन आप करना नहीं चाहते थे, आपके अंदर ही इत्तफाकी का ना इत्तफाकी का क्या कहते हैं फुकदान था, एक दूसरे के आप लोग कहते हलाफ थे, आप गैर मुल्की, और फिर आप देखें कि आपका आप सारे आहिस्ता आहिस्ता जो गैर आ गए, अब इसके ऊपर भी कर रहे हैं, ये ज्यादा देर नहीं रहेगी, ये निकल जाएगी, गल्ला करो सुनो ना दिया, ये यानी कि बैठ के खुद ही बातें, खुद ही मफरूजे, जो कौम मफरूजों में चलती है उसका यही हाल होता है, फैंटेसी मफरूजे शॉर्टकट, ये तो तीन चार चीजें हैं, इसमें चलना, तो देखो हालत क्या है इनकी। मैं ऐसे कौम बात करूंगा ना, क्या हालत है हमारी पाकिस्तान में, कर्जों में डूबे हुए हैं, 200 बिलियन का कर्जा है हमारे ऊपर, शर्म से मर जाना चाहिए हमें, झूठ सारा दिन, झूठ टीवी में बताया जाता है, सारा दिन झूठ बताया जाता है मीडिया पर, झूठ के ऊपर ये हम खड़े हैं, कितनी देर तक खड़े हो जाएंगे।
1: लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जितनी भी सियासत की तरफ आप बात कर रहे हैं कि जब वोटर सपोर्टर ही खुद करप्ट है तो फिर लीडर को क्यों गिला किया जाए, वोटर सपोर्टर को नहीं पता कि मैं वोट किसको दे रहा हूं।
2: ये बात राजा साहब आपका सवाल बड़ा जबरदस्त कर दिया आपने, ये मैं चाह रहा था आप करें मेरे जेन से, वोटर और सपोर्टर, देखें वोटर बदबख्त सॉरी को नहीं पता कि मैं क्या बदबख्ती कर रहा हूं, यानी कि मैं किधर वोट दे रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, यानी कि यार जेहन भी दिमाग भी होता है ना, कोई दिमाग भी बनाया हुआ अल्लाह तला ने, हर एक का दिमाग बना, अल्लाह तला ने हर एक का दिमाग बनाया हुआ, ये भी तो कौमें सोचती है ना, ये बैठी हुई है यहाँ भी, तो देखो यहाँ भी बड़ी चीजें होती होंगी, नेगेटिविटी होती है, बड़ा कुछ होता है, लेकिन ये अपने अपने मुल्क और अपनी नेशन के लिए ठीक है, ये सिर्फ करते हैं हमारे खिलाफ, फॉरनर के खिलाफ जो अपने जो इनका प्रोपोगंडा होता है, और वो भी कहीं कहीं जगह वो जायज करते हैं, हमने भी यहाँ आके कौन से कोई तीर मार ली है, क्या कर ली है, चलो ये तो एक दूसरी बहस है। अब मैं वोटर सपोर्टर की बात करूं अपने, यार इनको देखो दिमाग अल्लाह ताला ने दी हुई है, किधर लगे लग जाते हो तुम, कोई यार यहाँ की कोई सियासत पहले पढ़ लो, यहाँ का कोई मताले पता ही कख नहीं कि यहाँ पर ए से लेके जेड तक क्या है, सियासत क्या होती है, यहाँ पर पार्टियां कैसे चलती हैं, काउंसिल कैसे चलता है, आपकी पार्टियों के मेंबर कैसे होते हैं, रेड ब्लॉक क्या है, ब्लू ब्लॉक क्या है, यही नहीं पता, ते वोट पान चले आए किन्नू, राजा साहब नू, की है राजा, और मनु एक ने क्या ही राजा ने वोट पाया, वो यार गल करने वाली, शर्म से मर जाना चाहिए, तुम इधर आके भी तुम्हारी वही है सियासत जो पाकिस्तान में तुम करके आए हो, ना पता है ना अगे का पता है, ना अगे का पता है, ना ना तो पिछे का पता है, ना अगा दौड़ तो पिछा चौड़, ये तुहाडा हिसाब है, जिथो आए उत्थे भी तुसी एंजी सो इत्थे भी आके तुसी एंजी हो, यार कोई कोई कोई यार काम का काम कोई कोई चज का काम कर लो, जिन्ना कोई सानू कोई कोई हो जाए फखर। अब ये बातें मैं कर रहा हूं ना, इसमें इसमें इसमें बनाएंगे मजाक खड़े होके बाहर, ओ पागल ही हो, इस कोई भी करे, आप करें, कोई भी, कोई आपको दे रहा है मत दे रहा है कोई चंगी, कोई दे रहा है मशवरा, कोई यहाँ पर रह रहा है, कोई 60 साल से आए हुए हैं जो उन्होंने सीखा है यहाँ आके, बहुत से लोग यहाँ 60 साल से भी रह रहे हैं ना, 70 साल से भी रह रहे हैं यूरोप में, 80 साल से भी रह रहे हैं, उन्होंने वो सीखा है। जब वो उनसे पूछते हैं, वैसे तो मेरे पास टाइम नहीं है इनको इनको कहते हैं बताने के लिए अपना कीमती कोई सिर खपाने का, चलो आपका फोन आ गया, इनको मत भी दे देता बाद में, पहले सुनेंगे। ये चीजें लेने वाली कौम है राजा साहब, चीजें लेती है, चीजें लेगी हर एक से।
1: देखें यहाँ के कानून है, यहाँ के सिस्टम है, लोगों को वजारतें दी, दुनिया में लोग जो है वजीर आजम बने, जमहूरी सिस्टम से बने, वोट दिए, अपना इतने बड़े न्यूयॉर्क के मेयर बने, बर्तानिया के मेयर बने, किसने जमहूरियत ने वोट देने से बने। हमारा वोट देने का तरीका हमारे लीडर की तरफ जाता है, हम डेमोस्ट्रेशन करते हैं, डेमोस्ट्रेशन करना ये जमहूरी हक है, इसमें कौन सी बुरी बात है, ये जमहूरी हक है, करनी चाहिए, लेकिन कानून कायदे के अंदर करनी चाहिए। यहाँ भी कौमें करती हैं, इत्तेजाज करती हैं, शायद कभी हम लोग अपने मफाद के लिए भी बाहर निकलते हैं।
2: हम लोग जब हमें कोई जाती मफाद हो ना, जाती जिसे हमें कोई फायदा हो रहा हो, जिसे पता हो कि 100% मैं शोर हूँ कि मुझे कोई 100% फायदा हो रहा है, जब मुझे शोर हो गया, गारंटी मिल गई है, फिर मैं दिखाने के लिए बाहर निकलूंगा, बाहर एक एहतजाज करूंगा दिखाने के लिए। आप मेरी इस बात को अभी नहीं समझेंगे, इसको इस बात को समझें जरा, मेरे क्या कहने का मतलब है। ये मेरा मतलब है कहने का कि जब मुझे कोई जाती मफाद होगा ना, और मैं उस मुझे उस मफाद की गारंटी मिल जाएगी कि मेरा वो मफाद पूरा हो जाएगा, तो फिर मैं वो दिखाने के लिए बाहर निकलूंगा। वैसे मैं वैसे बाहर नहीं निकलूंगा, वैसे मैं अपने मुल्क और कौम के लिए, अपने सिस्टम जो इधर भी सिस्टम चलता ना, यहाँ भी सिस्टम पास का ज्यादा कर जाता है तो लोग निकलते हैं। ये नहीं कि यहाँ एहतजाज नहीं होता, पेरिस में नहीं होता, लंदन में नहीं होता, फ्रांस में नहीं होता, क्या कहते हैं स्पेन, ये लोग नहीं करते, ये जो गोरे मैं इनकी बात कर रहा हूँ, ये नहीं एहतजाज करते, ये बड़े बड़े एहतजाज करते हैं, बड़े बड़े बड़े, जब इनको पता हो कि इनका सिस्टम, इनकी कोई चीज उनके बरक्स जा रहा है, या यहाँ पर महंगाई अरूज पर पहुंच गई है, महंगाई अरूज पर पहुंच गई है, जॉब्स नहीं है, लोगों को जॉब नहीं हो रही मुहैया, क्योंकि यहाँ स्टेट का काम है, जॉब्स नहीं है तो फिर उसको कम से कम पैसे तो उसको मुहैया किए जाए ना, ताकि वो अपना रोज बसर कर सके। ये लेकिन
1: बात तो है ईमानदारी की, चाहे कोई भी,
2: मैं इसमें ये बात पूरी कर लू। अब ये तो हो गया ना इधर का, मेरे मुल्क पाकिस्तान, अगर वहां पर महंगाई है, वो तो है डेफिनेटली बहुत ज्यादा, क्योंकि आपकी तनहाइयां तो उतनी नहीं है, वो तो ना होने के बराबर है, और क्या कहते हैं रोजगार नहीं है, बहुत से लोग जो है रोजगार से दूर हैं, कई लाखों करोड़ों। यहाँ पर आप कानून के दायरे के अंदर रह के एहतजाज बनता है ना इस कौम का, इस बेशरम कौम का, नहीं निकलेगी ये। और ये आईनी है,
1: आपका मेरा मसला एक है, गैस महंगी है मसला एक है, सीमेंट महंगा है, बजरी महंगी है, कोई भी चीज़ें महंगाई है, तो सारी चीज़ें जो हैं वो सब की फेलस है। जब हम अपने फेलस मुतालबात के लिए नहीं निकलते, तो मैं किसी लीडर के लिए निकलता हूँ, मैं किसी एक शख्स पीर के लिए बाहर निकलता हूँ, मुझे अपने मफादात का क्यों नहीं पता, मेरी पेंशन कितनी है, दूसरे की पेंशन कितनी है, ये पेंशनें पार्लियामेंट में बढ़ाई जाती हैं, बिल पार्लियामेंट में पेश किए जाते हैं, सुबह असम्बली में पेश किए जाते हैं, कौमी असम्बली में पेश किए जाते हैं, कभी इलेक्शन में या यूरोप में मुझे 40 साल हो गए देखते हुए कि 25% लोग जो है वो आखिरी दिन फैसला करते हैं, जब लीडरानों की डिबेट होती है, पार्टी के लीडरान की डिबेट होती है कि हमारा मंशूर क्या, हमने क्या करना है, उस दिन 25% लोग फैसला करते हैं, उससे पहले उन्होंने सुन रहे होते हैं, एनालाइज कर रहे होते हैं। हमारे मुल्कों में या जहाँ फैसला करने वाले लोग होते हैं, वो भी तो अवाम फैसला करती है, वो भी तो लीडर फैसला करते हैं। कभी आपकी याद में लीडरों ने आपस में बैठ कर डिबेट की है और हम आपस में लड़ रहे हैं? जी शायद
2: जी, आपने ये एक क्वेश्चन ये बड़ा अच्छा किया है कि जब यहाँ पर इलेक्शन कैंपेन शुरू होती है 2 माह पहले या 3 माह पहले, ज्यादातर तो 2 माह पहले, 1-1.5 माह पहले शुरू हो जाती है, जहाँ पर लीडर जो पार्टियों के लीडर होते हैं आमने सामने, उनकी डिबेट भी होती है, जैसे अमेरिका में होती है, जैसे यूरोप के दूसरे ममालिक में होती है, बहुत से मीडिया चैनल्स वो दिखाते हैं, बहुत से स्टेक होल्डर्स का एहतमाम करते हैं, तो उसमें 10 या 8-10 जो पार्टियों के मेंबर, बड़े बड़े लीडर हैं जो पार्टियों के, वो खड़े होकर उनके लाइव डिबेट की जाती है, लोग बैठे हैं सुनते हैं। इस तरह की डिबेट का आप कह रहे हैं, इस तरह की डिबेट आपके मुल्क में नहीं हो सकती राजा साहब, میرے ملک پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں, جس ملک سے میرا تعلق ہے, کبھی بھی نہیں ہو سکتی. جو مرضی آپ کر لیں, جو مرضی آپ کر لیں, یہ کیونکہ آپ کا سسٹم کے اندر آپ کا, کیونکہ آپ کا جو سسٹم ہے وہ یہ نہیں کرنے دے گا, نہ وہ ہونے دے گا, آپ کے بیوروکریٹس جو ہیں اس کے اندر انوالو نہیں ہونے دیں گے. ہاں یہ چیز نام

0: ही बात की थी कि आपके मुल्क से लोग निकल गए हैं काफी ज्यादा, 50-60 लाख, लेकिन ना बहुत ज्यादा बड़ी बात होती है राजा साहब। और वो सियासी इस्तेकाम ही नहीं है आपके मुल्क में, वो डावाडोल है। और आज 2027 आ गया है, 4-5 साल होने लगे हैं गवर्नमेंट के बने हुए आए हुए, कोई एक काम बता दें। चले मैं इसमें बहस नहीं करता, आप वो बात कर रहे थे स्पीकर की, आप बात कर रहे थे सर, मैं यही कह रहा हूँ कि बुनियाद ही नहीं है जिस मुल्क में जो रखते हैं चले, बुनियाद रखते हैं इट पुट से शुरू करते हैं, वही ठीक नहीं है। ऊपर बिल्डिंग कैसे ठीक होगी, वो तो ऐसी ही रहेगी, वो तो ठीक नहीं ना रहेगी, जो मर्जी कर ले बस आप उसको धक्का लगा रहे हैं, उसको जबरदस्ती उसको अपने रखा हुआ है ऊपर, उस बुनियाद के ऊपर जबरदस्ती खड़ा किया हुआ है आपने उसको, बस सहारा दिया हुआ है आपने, जो होते हैं शतीर गार्डर के साथ जो कहते हैं पंजाबी च, उनके साथ आपने उस बिल्डिंग को इशारा दिया, कितनी देर तक है यार, 10 साल, 5 साल, और वो भी बेवकूफ सारे बन, उसमें सारे बेवकूफ बन रहे हैं। हाँ, जिन जिन कुछ कुछ लोगों का, जिन कुछ खानदानों का या किसी कुछ स्टेक होल्डरों का लगा हुआ है, क्या कहते हैं वो, जैक लगा हुआ है, वो जनाब खरबों में खेल रहे हैं, और आपका खरबों डॉलरों में खेल रहे हैं,
1: बिल्कुल
0: और
1: आप सही
0: आपकी
1: कह रहे हैं। शायद
0: हाँ
1: देखें पिछले दिनों जब चौधरी शुजात साहब का था, उन्होंने कहा कि जो बाहर जो पार्टियां हैं इनको कोई ओहदे नहीं देने चाहिए, ये डिवाइड होते हैं आपस में लड़ते हैं। तो क्या ये जितनी सियासी तंजीमात हैं जमात हैं ये आपस में लड़ते हैं, इनको ओहदे दिए जाते हैं, तो यहाँ की सियासत में ये क्यों ओहदे लेते हैं? क्या आप समझते हैं कि इसी तरह का फैसला होना चाहिए?
0: एक तो राजा साहब मैं ये ओहदों से बड़ा तंग हूँ, क्या मुझे मुझे कभी आपने देखा है, मैंने कभी, आज कितनी देर हो गई है सियासत करते हुए, एनालाइज भी करता हूँ तजिया भी देता हूँ, कभी देखा है मैंने कभी किसी ओहदे की तरफ गया हूँ राजा साहब? ये जो ओहदा यार, ओहदे के पीछे ये लोग भागते हैं जैसे ऐसे कि जैसे पता नहीं ये कितनी कितने सालों से यो ना, और उसमें मैं देखता हूँ, मैंने उसमें मैं कहता हूँ ये भी था, यानी कि ओहदा मिल, वो यार ये सब ओहदा सब झूठ है, नोटिफिकेशन आता है वो भी जाली है, उसको लेके वो घर फ्रेम बना के सजा लेते हैं, ये सब बकवास है, सब झूठ है। आप
1: क्या
0: अपने
1: ये
0: पहले
1: सांसें
0: आप
1: कमतरी है?
0: ये सासे कमतरी नहीं है, सिर्फ ये दिखाना है, मैं दिखाना है पेंड नू अपने, देखो मैं क्या हूं, सासे कमतरी भी है इसमें, ठीक है
1: शायद
0: देख
1: हमारे
0: लीजिए,
1: पास
0: कोई
1: 2 मिनट है आज टाइम, थोड़ा हाल बताएं।
0: हाल आपको हर बार बताते हैं, हाल यही है कि जिस दिन आपने झूठ बोलना, अवाम ने झूठ बोलना छोड़ दिया पूरी, और आपके सिस्टरों और आपके आपके सियासतदानों ने, पाकिस्तान के, मैं पाकिस्तान के पहले बात करूंगा, आपका मुल्क, मैं ये नहीं कहूंगा कि साथ ही, आपका मुल्क एक सीमत पर चल पड़ेगा जिस दिन आपने झूठ बोलना कर दिया बंद, झूठ, लेकिन जिस दिन और वही जिस दिन आपके सियासतदानों ने झूठ बोलना बंद कर दिया, सच बोलना शुरू कर दिया, उस दिन आपका मुल्क दूसरी सीमत में चलना शुरू हो जाएगा, यही हाल है इसका, बस ये इसकी शुरुआत
1: आखिरी
0: है।
1: बात, क्या बैन लगा देना चाहिए दुनिया में कोई सियासी पार्टी जो पाकिस्तानी नहीं होनी चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को?
0: गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के तो ऊपर खुद पहले बैन लगना चाहिए, वो खुद ही हैरानी है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कैसे
1: चलिए
0: बैन
1: वो
0: लगा
1: तो
0: सकती है किसी
1: आईनी
0: के ऊपर?
1: बात
0: हाँ,
1: होगी ना इसकी, वो तो ये बात हो सकती है ना, ये तो कर सकते हैं
0: वो
1: ना।
0: पहले वो तो नहीं, वो तो किसी के ऊपर बैन नहीं लगा सकते बेचारे, वो इतने जोगे ही नहीं है, बैन उनमें तो इतनी ताकत ही नहीं है ना एनर्जी है, वो तो खुद किसी, वो कहते हैं वो कानों के जो होते हैं छोटे छोटे कान है उसके ऊपर खड़े हैं, वो नीचे से पीछे से हटा दिए खत्म, वो क्या बैन उन्होंने लगाना है किसी के ऊपर? मैंने आपको शुरू में यही बताया था कि बुनियाद बुनियाद ही ठीक नहीं है, वो जब बुनियाद ही ठीक नहीं हो, जो चोर दरवाजे से खड़े हैं आगे, वो क्या आपके लिए करेंगे राजा साहब, आपके लिए काम करेंगे या मेरे लिए या पाकिस्तान के लिए, वो तो नहीं कर
1: तो
0: सकते।
1: ओवरसीज तो देख रहे हैं, दुनिया की मॉडर्न तरीन जमहूरियत देख रहे हैं, ममालिक की तरक्की देख रहे हैं, ये भी तो ठीक हो जाए ना।
0: देखिए जी, अब ओवरसीज जो है ना, इधर पूरे यूरोप में और अमेरिका में, कनाडा में, अमेरिका कनाडा में तो चौथी जनरेशन है, तीसरी जनरेशन इधर भी है, चौथी जनरेशन इधर भी शुरू होने वाली है यूरोप में, आपको रिजल्ट डेनमार्क में भी मिल गया था, आपको रिजल्ट यूरोप में भी, इधर भी मिल गया, स्वीडन में भी, पाकिस्तानियों की बात मैं कर रहा हूँ, तीसरी जनरेशन इधर भी शुरू होने वाली है, अभी तीसरी यहाँ शुरू नहीं हुई, इधर क्या कहते हैं स्वीडन में, डेनमार्क में तो ऑब्वियसली शुरू हो गई है ना, वहां तो उनकी

0: ये वो शादियां भी हुई हैं, उन्होंने वोट डाले हैं ना, वही कर रहे हैं, वही समझ रहे हैं सारा कुछ। तो ये जब तीसरी जनरेशन खत्म होएगी, चौथी जब इधर ही भी आएगी, तीसरी और उधर चौथी शुरू हो जाएगी तीसरी, तो आपके हालात खुद ही ठीक हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, जो सियासी है उधर के। मेरा ये दावा है। जब तक जो पीछे जो है, पिछला दौर जो है, अदवार जो है, वो फिर उसको लोग भूल जाएंगे, वही आके आपकी जो है ना, आपके वो सिस्टम के अंदर वो लोग जो वोट देंगे, वो सिस्टम में लोग आएंगे। अभी इसके ऊपर टाइम है, एज आप कह सकते हैं 5 साल, 10 साल, मैक्सिमम 10 साल, मिनिमम 5 साल जो अगला इलेक्शन होगा।
1: तो ये
0: मैंने
1: सोशल
0: पहले भी,
1: मीडिया का वायरस कैसे ठीक होगा?
0: सोशल मीडिया तो एक आवाम है ना, सोशल मीडिया तो जो वो दुनिया की आवाम है, वो इसके अंदर होती है और अपने अपनी राय देती है। क्योंकि लोग मीडिया को, डेनमार्क की मीडिया को भी नहीं इतना इतना लोग देखते हैं जितना डेनमार्क की सोशल मीडिया को देखते हैं। हर मुल्क का सोशल मीडिया है का काम कर रहा हो, क्योंकि सोशल मीडिया का मतलब है अवाम, अवाम लिख रही है, अवाम बता रही है, अवाम कह रही है, अवाम ये जो हर जो चीज जो मीडिया छुपाता है वो अवाम ले आती है उसके ऊपर, ये जो चीज हुई है।
1: चलें, शायद चलते चलते मैं आपसे पूछ लूँ, एजेंडे में शामिल तो नहीं था, तो आपका स्वीडन में फंड रेजिंग प्रोग्राम हुआ, कितने पैसे इकट्ठे हुए?
0: राजा साहब, जिस दिन फंड रेजिंग प्रोग्राम हुआ था, उसके अगले रोज ही जो हमारी टीम मेंबर था, वो शदीद बीमार हो गया। जब उसको उनका डायग्नोज हुआ हॉस्पिटल में, तो वो ट्यूमर की तशखीस हुई, तो वो 2 हफ्ते से, अभी वो 1.5 हफ्ते से हॉस्पिटल में है, उनका ट्रीटमेंट शुरू होने वाला है। मुझे उम्मीद है कि वो जब शुरू हो जाएगा उनका ट्रीटमेंट, तो हम एक या 1.5 हफ्ते तक या 1 हफ्ते के अंदर अंदर उसकी जो है ना, सारा जो मवाद है, जो हर चीज है उसकी, फिर हम बकायदा उसको अनाउंस करेंगे कि क्या है,
1: ये फिर आपने निज़ाम देख लिया
0: किस चीज का निजाम।
1: चेक एंड बैलेंस का?
0: नहीं, वो तो ये शो के था ना कि आप बात कर रहे हैं, वो तो
1: नहीं, मैं
0: सारे
1: सारे
0: पैसे
1: ऑन द
0: उसी
1: होल करूं, फिर एक ही बंदे के पीछे घूम रही है ना हर चीज।
0: नहीं, नहीं, वो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि उसका तो वो तो हुआ, उसके पीछे हम लग गए सारे, लेकिन टीम ने जो पैसा था वो तो सारा हमारा 99% वो कैश नहीं था, वो तो ऑनलाइन था सारा, वो तो सारा चला गया उधर, उधर यही सारा 99% क्या कहते हैं वो ऑनलाइन था, बल्कि 99.9% ऑनलाइन था,
1: तो
0: वो
1: कितना
0: तो सारा
1: हुआ?
0: चला गया। राजा साहब, मैं इसको अभी भी नहीं बता सकता, जब तक मैं इसका स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, ना मैं मीडिया एडवाइजर हूँ उसका, उस टीम का, ना मैं उस टीम का बिल वास्ता, ये बिल वास्ता मेरा वही उनका तल्लुक है, लेकिन चलो शोकत होना का हिस्सा हूँ एक, लेकिन टीम का वो इस तरह नहीं, जो जो जो जो ये काम कर रहे हैं, कोई कोई मीडिया एडवाइजर है, कोई स्पोक्स पर्सन है, वो मैं नहीं हूँ, वही आपको बता सकते हैं,
1: चलें,
0: मैं तो नहीं
1: शायद
0: बता
1: अल्लाह
0: सकता।
1: ताला उनको सेहत दे, जो अस्पताल में, अल्लाह पाक उनको सेहत दे, उनके लिए भी दुआ करें, हम भी दुआ करते हैं। इंशाल्लाह फिर दोबारा रابطہ होगा।
0: जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।
1: सामान नाज़रीन, ये थे शायद जो के बात कर रहे थे। हमारा किसी से मुतफिक होना ज़रूरी नहीं है, अगर कोई बात करना चाहे, अपनी राय देना चाहे, उसके लिए हमारा टाइम हाज़िर है।
2: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए, ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान। सामिन नाज़रीन, मिला जुला इंफॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज़ के स्टूडियो से बराह रास्त पेश किया जा रहा है। इस वक्त जो हमारे साथ हमारे मेहमान हैं वो ज़ीशान अली हैं, जो किसी तारफ के मोहताज नहीं, हुकूमती जमात के नुमाइंदे हैं और बड़ी पोस्ट पर बैठे हुए हैं अपनी पार्टी में। इनका बड़ा असर रसूख है और ये स्कूल टीचर हैं, अभी बच्चों के साथ जो है वो फुटबॉल का जो है वो मैच खेलने गए थे या कि मैच खिलाने गए थे। चूंकि उस्ताद हैं, ज़ाहिर है इनके शागिर्द या बच्चे जो अपने होते हैं, बच्चे भी शागिर्द ही होते हैं, तो ये मसरूफ़ रहते हैं, छुट्टी का दिन है, बड़ी मुश्किल से टाइम होता है। तो ज़ीशान, एक बार फिर आपको अदारा आपकी आवाज़ पर खुश आमदीद कहते हैं।
3: जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम राजा साहब, आपको, सब सुनने वालों को, और बहुत शुक्रिया जी, बड़ा अच्छा लगता है आपका इंट्रोडक्शन भी सुन के,
1: नहीं जी,
3: मतलब
1: बड़ा हमें अच्छा लगता है कि क्योंकि उस्ताद को जो है ना, उस्ताद चाहे छोटी उम्र का हो चाहे बड़ी उम्र का हो, उस्ताद उस्ताद होता है।
3: हाँ जी, बेशक, इसमें कोई शक नहीं है। वाकई ये एक बड़ा प्यारा जी, क्या कहते हैं, लकब भी है, तो ड्यूटी भी बड़ी प्यारी सी है, कि इसी में अपना घर बार भी चल जाता है, इसी में खिदमत खल्क भी हो जाती है, इसमें मतलब सब कुछ बड़ा अच्छा सा आ जाता है, अल्लाह का बहुत शुक्र है।
1: ذیشان الیکشن ہو گئے، کمیون کی کمیٹیاں بھی بن گئی، تقسیم ہو گئے، ابھی کچھ بجٹ جو ہے وہ پاس نہیں ہوئے، لیکن بجٹ پر جو ہے وہ کام سارا سب کا مکمل ہو گیا، افیشل جو اناؤنسمنٹ ہے وہ ابھی سامنے نہیں آئی، تو آپ کیا کہیں گے؟
3: جی کام تو زوروں سے چل رہا ہے، وہی دیکھیں نا جی، کمیونوں کے بھی بجٹ چل رہے تھے، ہمارے ادھر بھی چل رہے ہیں، کچھ جگہ دی اینڈ ہو گیا، ہمارا میرے خیال سے بیلر کا پھنسا ہوا ہے، ہم لوگ تو اس طرح سے پیچھے تو ہینڈلنگ میں نہیں ہے، مگر کچھ پارٹیز کے ساتھ جس طرح وہ کہتے ہیں نا باہر بیٹھ کے بھی تعاون ہوتا ہے، تو ہمارا ذرا پھنسا ہوا ہے، ہمارا ادھر سے میں وہی کہتے ہیں نا کہ الیکشن کے ٹائم میں سب لوگ کرتے ہیں اسکول بچے، مگر ہمارا ادھر کمیون کا اسپارک ہے، چلو آ گیا تھا، اس میں سجیشنس کی کہ جی بچوں کا اور اسکولوں پہ بھی کیسے اسپارک کرنا ہے، پھر یہ جو پچھلے 2-3 ہفتے پہلے فیس ہونا پھر اس کا رزلٹ آ گیا، پھر ادھر رک گئے اسپارک کرنے سے، یہ بڑا چلتا رہتا ہے، پالیٹکس میں بڑا مزے کا کام ہے، جب الیکشن ہوتے ہیں تب جی یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، اور جب پھر چل پڑتے ہیں تو پھر ادھر بچانا ہے ادھر بچانا ہے، جو بچانے والی سوچ ہے نا ڈن مارک کی یہ بڑی ہے، اس کا اسپارک ہیلپ
1: بچانے والی سوچ ہے، تو اخراجات کرتے وقت کیوں نہیں سوچتے؟
3: اخراجات کرتے وقت یہی اگر میں بھی بولوں کہ جتنا مجھے یہ سال 2 جو ان سے پچھلے لگے یا اندر ہو کے دیکھا ہے، یہی سمجھ نہیں آتی کہ اخراجات اچھے بھلے کر کے جاتے کدھر ہیں، اور وہ اصل میں بیوروکریسی کافی زیادہ ہو گئی ہے اس ملک میں، اس طرح آپ دیکھتے ہیں کسی بھی شعبے میں چلے جائیں بیوروکریسی بڑی ہے، میٹنگز بہت ہیں، ہم اسکول ٹیچرس کی بھی ایسے ہی ہے، کافی دفعہ میٹنگز ہوتی رہتی ہیں مگر وہ جس طرح کام آگے بڑھتا نہیں ہے، اسٹوڈنٹ مطلب آگے بڑھ نہیں رہے اس طرح سے، مگر میٹنگز کر رہے ہیں ہم بیٹھ کے، ہم ہنگ نے پاور فل نیٹ ورکس میں، تو اس چیز کو کم کرنا ہے، اور شکر ہے کہ اب کچھ پارٹیوں نے یہ بھی بولنا شروع کر دیا کہ یار ان چیز پہ فوکس کم ہونا چاہیے، جو ٹیچرز ہیں بچوں کے ساتھ زیادہ ٹائم گزارے، جو ڈاکٹرز نرسز ہیں وہ پیشنٹس کے پاس زیادہ ٹائم ہونا چاہیے، انسٹیڈ آف بیٹھ کے ہم وہ تکمیشیا کر رہے ہیں ہر چیز کو لکھنا جی، کیونکہ دوسروں کے لیے لکھنا کرنا، تو ادھر سے بچانا اصل میں ریسورسز کو دوسری طرح یوز کرنا سیکھنا پڑے گا، کیونکہ بچتے بچتے تو آپ کو پتا ہے بچانے لگو تو بچتا کچھ نہیں کسی کو بھی، پرائیویٹ ہو یا حکومت یا ملک کا خزانہ،
1: تو لگتا اسی طرح ہے کہ جب جس طرح یہ گیمز کھیلی جاتی ہیں کمپیوٹر پر، دنیا بھی ایک گیم بن گئی ہے، تبدیلی کی طرف جو ہے سیاست کم ہے گیم زیادہ ہے،
3: جی بالکل ایک گیم زیادہ ہو گیا، دوسرا تو آپ دیکھیں گیم چھوڑے ایک تو سیاست ٹک ٹاک ہو کے رہ گئی ہے نا، اور بس ویڈیوز ہو کے رہ گئی ہیں، آج کل اگر آپ دیکھیں گیم تو گیم، مطلب یہ جو الیکشن ہوئے ہیں فالک سنگھ سہیل جو ہوا اس میں سارے ڈیسک فالک پچی کی طرف دیکھتے ہیں، انہوں نے جی اپنے پولیٹکس کو اور کی، اور جن کو بولتے ہیں وہ کم کر کے انہوں نے یہ جو کمیونیکیشن اور کی ہوئے ہیں یہ زیادہ رکھ لی ہے، کہ ویڈیوز کیسے بنانی ہے، لوگوں کا اٹریکٹ کیسے کرنا، اور انہیں پالیٹکس ہوتی ہے نہیں، بس ادھر کی بات ادھر، کوئی پولیٹکس کے انوالو ہے نہیں، اور جب ان کو کچھ نہیں ملتا تو ظاہر ہے مسلمان اور ہم کالے بالوں والے ویسے ہی ملے ہوئے ہیں، ان سے سارے بولتے رہتے ہیں، جو مسئلے مسائل ہیں معاشرے کے اس پہ کوئی بولتا نہیں، اس پہ جب بولنا شروع کرتے ہیں جی کسی کے پاس کوئی سولوشن نہیں ہے، ابھی اسکول کا اتنا بڑا ایشو دوبارہ ہو گیا، سولوشن موبائل ٹیلی فون لے لو جی، اب پہلے کون سا بچے موبائل ٹیلی فون پہ بیٹھے رہتے ہیں اسکولوں میں، دیکھیں نا آج آ کے قصور کس کو دے دیا، جہاں مطلب کوئی کچھ کرنا نہ پڑے، تو وہ بھی کافی ٹیچر بھی اس چیز سے کافی کہتے ہیں فرسٹریٹڈ تھے کہ مطلب یار پرابلم رزلٹ آ بھی رہے ہیں مگر ان لوگوں نے نا پھر بھی سولوشن کوئی اپنی مطلب کا ہی دیکھنا،
1: اسکولوں میں بچے تو پڑھ رہے ہیں آپ دیکھتے رہتے ہیں چونکہ خود آپ کے بچے اپنے ہیں، لیکن سیاستدانوں میں اگر دیکھا جائے تو پارٹیاں جو بڑی پارٹیاں یا چھوٹی پارٹیاں ہیں، قد کاٹ والا لیڈر جو ہے وہ جس طرح پہلے وقتوں میں ہوتا تھا، ہر پارٹی کا بڑا لیڈر ہوتا تھا اور ایک کے بعد دوسرا بڑا لیڈر ہوتا تھا، نمبر 2 تو اس سے بھی بڑا لگتا تھا، لیکن اب کسی پارٹی میں اس طرح قد کاٹ کے کتنے لیڈر رہ چکے ہیں، جو رہ گئے ہیں وہ بھی اب ایکسپائر ہیں،
3: جی ہاں، اور یہ ہماری کل بھی یہی گفتگو چل رہی تھی کہ اگر آپ دیکھیں پچھلے 2-3 الیکشن دیکھ لیں، وہ لوگ کہتے ہیں میٹے کیسے بن جاتی ہے، کیسے بن جاتی ہے جی، اپوننٹ کوئی ہے نہیں صحیح طرح اچھا کوئی آیا پچھلے 2-3 الیکشن میں، پہلے آپ دیکھیں نا پارٹیوں کے اندر مطلب ایک ایک دو دو تین تین جی کھڑے ہوتے ہیں جی، कि अगर ये गया तो मैं तैयार हूँ। अभी फोर में एक जाता है, अगला कोई आगे आता ही नहीं है, बस लोग बैठे हुए हैं कि चल हम बैठे रहे। और वही थोड़ा बहुत ये, अब मैं खुद इसमें इंटरव्यू हो गया, मतलब ये भी कहना कि बंदे जोन से हैं, कौन से अंदर आते हैं कौन से नहीं, मगर आप वो पौन इस पची देख रहे हैं उनके साथ जो दो तीन बंदे हैं उनकी हिस्ट्री उठा के देखे, मतलब बंदा सोचता है कभी कभी के काफी वेले बंदे आ गए हैं इसमें भी। पता नहीं कहना ठीक होगा जब बंदा खुद भी बैठा हुआ, मुझे आता ही नहीं समझ ये खुद की तनकीद खुद ही, क्योंकि मैं अपने आप को तो उस तरह से वेला समझता नहीं। जरूरी ड्यूटी भी है, बड़ी जिम्मेदारी का काम है, मगर डेनिश पॉलिटिक्स में आजकल बस लोग कौन सा वीडियो टिकटॉक बना बना आते ना अंदर आ गए, काम करना सबको आता नहीं,
1: मतलब है हर सिस्टम को जो है वो एक गुलाम बना लिया गया है। तो जीशान, चूंकि आप सोचते रहते हैं, आप खुद भी सोशल मीडिया को देखते हैं और हमारे लोग भी देखते रहते हैं, लेकिन हम यहाँ की सियासत जब दो तीन माह रह जाते हैं तो फिर हम सियासतदानों की बातें करते हैं, कैंडिडेट्स की बातें करते हैं, और उसके बाद बाकी सारा साल तीन चार साल जो है वो पाकिस्तानी सियासत करते रहते हैं, इसकी क्या वजह है?
3: इसकी वजह इंटरेस्ट होगी राजा साहब। अब मैं अपना इसमें कसूर मानता हूँ, मुझे पिछले एक दो दिन पहले दोस्त भी लोग कह रहे चले यार तू नजर नहीं आ रहा आजकल ना ऑनलाइन मीडिया, तो उधर रहना बड़ा जरूरी है, एक जरूरत भी बन गया कि अगर आपने पॉलिटिक्स में रहना तो नजर भी आते रहना, और उनकी बात बिल्कुल ठीक, वो भी चढ़क रहे कहते यार तू खुद समय नाम हो गया दो दिन लास्ट साथ गुजारे इधर मीटिंग पे होता है उधर रखा कर अपना बताया करके क्या कर रहा ना, यार बस आदत नहीं है इस चीज की। मगर दूसरी तरफ ये भी देखे, अब मेरे बाकी अब कासिम भाई अंदर गया हुआ है जी, वो आजकल बैठे हुए हैं वो भी लिख रहे हैं, इरफान भाई इरफान गिलानी साहब वो भी बैठे हुए हैं वो भी लिखते रहते हैं, नदीम फरूख साहब बैठे हुए हैं, दत्तास्टर वो बड़े बड़े बैठे हुए हैं, कभी आप जाके देखे ना कि हमारे कितने बंदे लाइक या कमेंट या उनको कुछ करें, कुछ भी नहीं होता, जब वो जो काम कर रहे हैं तब दिखा रहे हैं तब उसमें कमेंट शमेंट भी कोई नहीं उस तरह से, मगर जब कोई लंगर पार्टी का सिस्टम होता है उधर माशाल्लाह जी जबरदस्त और कामयाबी के बड़े ज्यादा मैसेज आ रहे होते हैं, तो
1: लंगर पार्टी तो हमारा कल्चर है ना जी
3: तो वही है ना जी, अब वो माशाल्लाह ये जो हमारे सारे काबिल दोस्त आगे पीछे बैठे हैं अपना दिखा रहे हैं कर रहे हैं, मगर कितने लोग वो पोस्ट पढ़ते हैं शेयर करते हैं वो भी देखे ना, मगर कहीं कोई अगर किसी ने कोई किसी के अजाज में पार्टी रख दी वो ऐसे शेयर हो रही होती है कि जैसे पता नहीं क्या, तो वो हम भी वही बन गए जो पॉलिटिकल, जहां पॉलिटिकल इनहॉल है जहां मतलब काम हो रहा है उसको हम भी सही तरह नहीं देखते, फिर जब इलेक्शन आते हैं फिर आपको पता है फिर कोई इधर पार्टी रख रहा होता है फिर उधर वाहवा हो रही होती है फिर कोई और रख रहा होता है जिनके वाहवा करवाने के लिए।
1: पिछले दिनों तो कोई बात कर रहा था मुझसे तो कह रहा था राजा साहब 10 दिन मैंने रोटी फ्री खाई है मस्जिद में तो इसका मतलब है सियासत तो फिर मस्जिद कर रही है।
3: बस ऐसे वही मैं कह रहा हूँ कि बातें होती नहीं, मेरा तो काफी अब अपने यूथ से जब मैं मस्जिदों में बात करता हूँ तो आप तो रखा करें महीने में एक दफा कम अज कम कंटेम्प्रेरी एक इशू लेके अब हो कह रहा है, मतलब इस महीने मीडिया में क्या हुआ, मुसलमानों के बारे में कुछ ना कुछ तो मीडिया में आता रहता है, और ये क्या मस्जिदों में बुला के अपने यंगस्टर्स को बताएं कि ये खबरें चल रही हैं इनको हमने कैसे डील करें कैसे ना करें क्या हिकमत है, ये भी समझाना बड़ा जरूरी है। बाकी चीजें तो हम समझाते रहते हैं, हकूक समझाते रहेंगे, वुजू तहारत नमाज जो सब जरूरी काम है वो तो समझाते रहेंगे, मगर माशरे में चलना भी कैसे है वो भी हमारा और मसाजिद का फर्ज है कि इस तरह के प्रोग्राम भी रखा करें, कुछ लोग कर रहे हैं अगर ये अच्छे से होना चाहिए वैसे हमारे यंगस्टर्स के लिए, और ये नहीं किया
1: लेकिन मतलब शुरू किया बहुत लेट शुरू किया है,
3: बस वो तो फिर चलो शुरू कर लिए शुक्र है राजा कि अगली दफा तक तैयारी हो जाएगी, मुझे भी अब अल्लाह का शुक्र है कोई यूथ के ऑर्गेनाइजेशन ने पूछ लिया आप आएंगे जी वो बात मैं जरूर आऊंगा, मतलब अगलों को तो ये लगता है कि अपना पॉलिटिकल उल्लू सीधा करने आ रहा है, मगर मेरा तो बेसिकली ये है कि बस निकल आए लोग फिर वोट अगर दाएं दें या बाएं दें मगर वोट तो देना पहले, तो फिर इंशाल्लाह कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे ज्यादा बंदे, क्योंकि मेरी पिछले दिनों वही किसी दोस्त से बात हो रही थी मैं कहा आजकल हम लोग खुश हो जाते हैं जी के ये जब हमारी दो चार बड़ी कमोल है, स्पेशली पॉन्पी एल्बस लॉन्च हॉस्टल जहाँ हमारी बैकग्राउंड के काफी लोग रहते हैं। मम्मी मैं बोला मैं कि यार हमें एक बंदे को 6-6, 7-7 वोट लेके अंदर आने का क्या फायदा होगा, अगर ज्यादा बंदे आए किसी तरह, अगर हम कुछ कर सके ज्यादा आ जाए। मैं कहा सिर्फ अंदर आ रहे नहीं, अब इन ऐसी खमोलों में हमारी भी एक परमिशन फर्स्ट निकलनी चाहिए कुछ सालों में, ये हमारी प्लानिंग होनी चाहिए।
1: नहीं,
3: सिर्फ ये नहीं
1: आपने
3: कि
1: शुरू में
3: अंदर
1: बात
3: अंदर
1: की
3: आ
1: है
3: जाए।
1: ना ब्यूरोक्रेट्स की, तो हमारे कैंडिडेट्स भी जाने से पहले ही ब्यूरोक्रेट बनना चाहते हैं।
3: बस फिर मुश्किल भी काफी है ऐसा,
1: मुश्किल
3: समझ
1: काफी
3: नहीं
1: है
3: आती किस काफी
1: जीशान।
3: मुश्किल
1: मेरे
3: है
1: एक दोस्त हैं
3: क्योंकि
1: सियासतदान, तो मैंने उनको दावत दी, मैंने कहा यार आपसे बात करनी है, तो मुझे कहने लगे मैं जी आज जो है ना वो गजल नाइट पे मसरूफ हूँ।
3: अच्छा वो होते हैं
1: करनी
3: गजल नाइट को
1: सियासत
3: भी
1: है तो
3: छोड़,
1: गजल नाइट पे मसरूफ हूँ।
3: कल्चरल भी तो थोड़ा सा करना चाहिए ना एनहेंस। अगले हफ्ते इंशाल्लाह टाइम दे देंगे जो फिर उम्मीद तो यही है मगर
1: देखिए
3: वाकई
1: जीशान, आप बच्चों को जाते हैं सुबह स्कूल जाते हैं, आपको टाइम पर जाना पड़ता है, टाइम पर छुट्टी करनी पड़ती है, जो मीटिंग्स होती हैं वो आपको टाइम पर करनी पड़ती है, सारी चीज़ें जो हैं वो टाइम पर करनी पड़ती हैं, सियासत टाइम पर नहीं करनी।
3: बस वो क्या करें, हम शऊर और शौक की भी बात होती है जी, लगता भी है कि टाइम वेस्ट है सबको, जिससे मैं पूछता हूँ यार क्यों टाइम जाया कर रहा है, तो कभी कभी वाकई बंदा सोचता है यार मैं किधर टाइम जाया कर रहा हूँ, मगर वही बात आ जाती है कि इन दी एंड इधर ही फैसले होते हैं, इधर से ही निकलता है सब कुछ, रहना पड़ेगा इवन दो हमें लगता है कि यार टाइम जाया हो रहा है। तो सियासत यही बात है, वो सारे ही कहते हैं ना कि एक इलेक्शन के दूसरे इलेक्शन के बीच में होता है आपका कैंपेन सारा, और ये मैं भी यही सीख रहा हूँ, तो ये हमें करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। अब अल्लाह का शुक्र है कि जहां भी जाता हूँ इन गर्मियों माशाल्लाह मेले भी हुआ, अब ये है कि लोग देखते हैं, पहचानना शुरू किया है, गुफ्तगू करते हैं पॉलिटिक्स के बारे में, इस तरह किसी तरह बस ऑर्गेनाइज कर सके सही तरह, वही मैं भी सोच रहा हूँ। क्योंकि आपको सच्ची बात बताऊं, लोग आते हैं स्पेशली यंगस्टर आते हैं, बात करते हैं, खुशी बड़ी होती है, मगर फिर जब याद आता है ना किसी से बात करते हैं, वो यार मैं इस दफा वोट नहीं डाल सका क्योंकि इस तरह के भी बड़े लोग मिले यार, वो मैं भूल गया या मेरे मुझे टाइम नहीं मिला, फिर बंदा कभी कभी सब ये भी सोचता है कि हम ये किसके लिए कर रहे हैं, किसके लिए खड़े हो रहे
1: यार टाइम नहीं मिली, अगर आप
3: हैं,
1: देखें
3: बस
1: किसी
3: वही
1: प्रोग्राम में जाए ना, किसी मस्जिद में प्रोग्राम होता है ईद मिलाद नबी के हवाले से, या जो है अपना जो है और किसी किस्म के प्रोग्राम होते हैं, तो खाना खाते वक्त तकरीबन घंटा लग जाता है, तो वो खाना नहीं
3: जी।
1: छोड़ते, वहाँ घंटा टाइम होता है, वैसे उनका बड़ा बिजी टाइम है।
3: ये भाई वो इस
1: क्या
3: चीज
1: ये
3: की
1: भी
3: मुझे
1: इंसानी
3: असल
1: हकूक की बात है?
3: इंसानी नीड की बात होगी, इंसान खाना तो फिर नीड में आ जाता ना, अगलों को वोट देना नीड नहीं नजर आता तो क्या करे
1: आपके टाइम से फ़ायदा उठाते हैं, आप हुकूमती जमात के उस भी सुरसा के मेंबर हैं अपनी जमात के, बहुत कुछ आपको देखने का मौका मिलता है, लीडरान से मिलने का मौका मिलता है। ये कैटेगरी 5 की हम बात करते रहते हैं, हमने आहिस्ता आहिस्ता अभी कंपेन शुरू किया है कि इसके सिग्नेचर लिए जाए और सब पार्टियों को दिया जाए कि लोग अपनी पार्टी के लीडरान को दें ये सिग्नेचर, उसके बाद हुकूमत वक्त को जो पाकिस्तान की हुकूमत है उनके जो नुमाइंदे हैं उनको भी ये कापियाँ दी जाए, आप क्या कहेंगे?
3: हाँ जी, ये आइडिया बड़ा पसंद आया मुझे कभी कि मतलब एक फोर्स हो के उनसे सामने वाकई इस तरह की जाए, और जिस तरह आपने जब ये मुझे बताया था कि इस तरह कर रहे हैं, मैं कि बड़ा जबरदस्त है हमारी तो, जब एक दो ऑर्गेनाइजेशन भी बड़ी अच्छी है, वो कश्मीर फंड की जितने डॉक्टर्स हैं सारे इकट्ठे, कितने कितने पढ़े पढ़े लिखे बंदे, कितने कितने हाई पोस्ट पे बंदे बैठे हुए हैं, कि ऐसे ऐसे बंदे जरा सामने आए इससे, जिस तरह वो पिटिशन को सपोर्ट करें, तो फिर ये है कि इसे हम आगे लेके चलेंगे। जा रहे यार फैमिली वीजा तो किसी तरह खोलो ना यार,
1: इसमें तो
3: लोगों से
1: किसी का
3: ताल्लुक
1: कोई
3: हाल
1: जाती
3: हो
1: मुफाद नहीं है।
3: नहीं, सबके लिए खुल जाएंगे, जिसका कोई आ गया करीबी प्यारा मतलब तो बिस्मिल्लाह। तो ये है कि अब माशाल्लाह इतनी पार्टीज में इतने इतने लोग वाकई सारे बैठे हैं कि उनके उनके इस ऑफर तक इस तरह तक तो हाथ पड़ता ही है, तो बताइए यार इतने लोग हैं ये दरख्वास्त लेके आए हैं, मतलब इसको भी देखा जाए थोड़ा सा बढ़ेगा। ये है कि मुश्किल काम काफी है इस वक्त उलन पॉलिटिक पे, वो हमारी जो भूत से मनाव विजय लास्ट से भी होती रहती है, वो यही कहता है कि वो मतलब सोशल डेमोक्रेट ने इसको बहुत टाइट रखा हुआ काम। 307 उलवेल देख रहे हैं आप, उसमें उनके सबसे ज्यादा मेंबर है, उनके बाद फिर वो सारी पार्टियां आ जाती है जो वैसे ही हमारे खिलाफ है। 307 उलवेल में भी देखो सारे वो बंदे बैठे हुए हैं जिनको जी जिन्होंने हमारी साइड बिल्कुल ले ली है, 4 बंदे या 5 अपने बैठे हो गए। तो ये है कि कोशिश करनी चाहिए, यह है कि इकट्ठे होके इस तरह का ये आइडिया बड़ा अच्छा है, अब इसको जरा अंजाम किसने देना है, स्टार्ट किस तरह करना है, फिर आगे से आ जाएगा, इसका क्रेडिट किसने लेना है, समय हम उधर आगे करते हैं ना, क्रेडिट किसको चाहिए।
1: देखिए ना, रेडिकल वेंस्टा वोट लेकर फॉरनों के अपनी सीटें तो पक्की कर ली, लेकिन जब मौका आता है फॉरनों के लिए वो कानून साजी में हिस्सा नहीं लेते।
3: नहीं, वो बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, बड़ा मुश्किल काम है। और इस वक्त इस बार तो उनको भी मैं इतना कसूर इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि सोशल डेमोक्रेट की जो हमारी बैठी हुई है स्टेट मिनिस्टर, वो बिल्कुल सुनना ही नहीं चाहती इस मामले में, वो तो हमें काफी सोर्सों से पता चला है। उस मामले में तो आप छोड़ ही देना, अब आप देखें
1: इतनी पावरफुल है।
3: जी जी, वही बोला ना, कोई और है ही उसके मुकाबले। अब आप देख ले वो बाकी सारे बंदे उन्होंने साइड पे किए इस दफा। अगर आप थोड़ा सा पॉलिटिकल एनालिसिस करें ना, कि इस दफा ना उन्होंने अपने वो जो उनके सोल्जर होते हैं उलनिंग के खिलाफ बोलने के लिए, उनमें से किसी को इंटीग्रेशन मिनिस्ट्री बनाया, जो उनका वैसे सबसे अच्छा बंदा मोंटोस को, उसको अब हम हमारी कम्युनिटी में काफी लोग जानते हैं क्योंकि तो काफी एक्टिव, काफी आता जाता रहता है। मेरी उसके साथ हुई है, मेरी जो पहली डिबेट थी उसमें मेरे साथ खड़ा हुआ था और बड़ी हौसला अफजाई की उसने मेरी। उसने तब मुझे याद है कहता है मूनिक है को फोन करके बोला था कि यार जो आपका जो कैंडिडेट आया था उसने काफी अच्छा किया था। तो मोहन को हम बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं, इस तरह मैं तो बहुत ज्यादा जानते हैं, बड़ा अच्छा बंदा है, उसे कम अज कम इंटीग्रेशन मिनिस्टर उन्होंने अच्छा बना दिए। मगर आप उसकी वीडियोस देख रहे हैं, वो सारे हंस रहे होते हैं कि वो सूट करता ही नहीं है उसको, जो वीडियो बेचारा बना रहा है ऐसे लगता है जिस तरह धक्का ना बना रहा है, मगर बस वो उनकी पार्टी लाइन है उसको फॉलो कर रहा है। उन्होंने अपना साफ सुथरा बंदा था वो उधर डाल दिया है और उससे बस वही काम ले रहे हैं जो उनको चाहिए। तो इतनी पावरफुल टॉप है जी। यस,
1: आप अक्सर देखते रहते होंगे हमारे इरफान गिलानी साहब हैं, हम के हमारे अकलौते मेंबर हैं, काफी एक्टिव रोल अदा कर रहे हैं, तो आप किस तरह देखते हैं उनको?
3: वो तो जी मैं कहता हूँ आप ही ने माशाल्लाह वो दोनों सीटें भी संभाली हुई हैं, मतलब मीटिंग्स ही मीटिंग्स हैं, फिर इधर का बजट है, उन्होंने पहला वो हिस्टोरिकल बजट में भी साथ है जो रीजन वेस्टर्न का पहला बजट था, नई रीजन जो बनी है माशाल्लाह। और मैं उनकी पोस्ट तो देखता रहता हूँ, फॉलो करता रहता हूँ, माशाल्लाह काफी अच्छा एनलाइटनिंग कर रहे हैं सबको कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मगर वही कह रहा हूँ ना उनकी कितनी लंबी पोस्ट कौन कौन पढ़ता है ये जरा सोचने वाली बात होगी, क्योंकि वो दिखा बता तो रहे हैं हमें मगर इंटरेक्शन बड़ी कम होती है उनकी पोस्ट पे।
1: क्या आप खाली फोटो में देख रहे हैं या कि प्रैक्टिकली देख रहे हैं?
3: जी फोटो में नजर आएगा तो प्रैक्टिकली भी होगा, तो जाहिर जाते हैं करते हैं, लग तो काफी बिजी रहे मतलब माशाल्लाह। और वो काम भी जिस तरह आप देखें कि मतलब डिफरेंट डिफरेंट जगह पे पार्टी टॉप में भी उनका काफी अच्छा है, उनके साथ करते रहते हैं तो वो अच्छे है, अच्छा पोस्ट है माशाल्लाह, अच्छा है कि रानी खेल में जरा ऐसे भी बंदा अपना और आया कि जो जिस तरह काम भी कर रहे हैं दिखा भी रहे।
1: तो अगले इलेक्शन में डेफिनेट वो उम्मीदवार होंगे, आप भी उम्मीदवार हैं, कासम भी उम्मीदवार होंगे, राशिद भी उम्मीदवार होंगे, अगली दफा सिकंदर भी उम्मीदवार होंगे, तो अगली दफा टफ मुकाबला नजर नहीं आ रहा?
3: होना चाहिए टफ मुकाबला, कि कम से कम मुकाबला होगा कभी, तो फिर वही होगा ना कि अच्छा कैंडिडेट उठ के आएगा। अब जैसा इरफान भाई भी माशाल्लाह काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर उन्होंने कैंडिडेट बनना है, करना काम दिखाया होगा तो वोट भी मिलेंगे। तो ये जिस दिन हो गया हम सबके साथ के जी काम करके अपना आप दिखा के कंपटीशन अच्छा फेयर करके एक दूसरे के साथ आया गया, यही तो हम भी चाहते हैं कि लोगों को भी लगे कि यार अच्छे अच्छे बंदे हैं, इनको इनके काम पे देखो, मतलब देखो इन्होंने क्या किया है, क्या कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं। तो इस दफा उनके पास तो इरफान भाई के पास तो बड़ा अच्छा चांस है, क्योंकि वो तो कुमनेल में भी है, रीजन में भी है, मुझ जैसे के लिए मुश्किल होगा। मैं असल में जहां बैठा हूँ वो काम नजर नहीं आता उस तरह से, वो सारा कॉन्फिडेंशियल काम होता है, वो मीटिंग से जब हम निकले भी ऐसे किसी तो बता नहीं सकते जी क्या बातें होंगी। बस
1: हाँ ये बात
3: ये
1: आपकी
3: बता
1: बिल्कुल
3: सकते
1: सही है।
3: ये बता सकते हैं कि बात हुई क्या, मगर ये नहीं बता सकते क्या बात हुई। तो इस तरह के भी काम होते हैं, तो ये है कि डेफिनेटली जब मौका मिले, जिस तरह वो कर रहे हैं, अब कासिम भाई हमारे हेल्थनेस में सुप्रिया बन के गए हैं जबरदस्त, मुझे अगर मौका मिला अब तो कम अज कम देख ले, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियों में ये हो गया कि हमारी जो इधर ओमान की सीट थी वो मोनिका गोपीन की थी, मोनिका गोपीन मिनिस्टर बन गई हैं, तो वो ऑल ले लिया उन्होंने जो कि वो ले सकती थी, तो जो 2 नंबर पे क्वेश्चन थे हमारे मुर्गार ने कि वो अब फर्स्ट सुप्रीम के तौर पे अंदर है, अल्लाह उनको सेहत दे और अच्छा रखे, मगर अगर अब कुछ हो जाता है उनको, अगर छुट्टियों पे जाना पड़ता है कुछ हो जाए तो अगला फोन आ जाना निशानली को, तो ये भी है कि अगर मौका मिल गया तो काम करके देखेंगे दिखाएंगे सीखेंगे हम भी उस वाले से अगर आ गए तो, वरना कोशिश अपनी है बाहर से बैठ के जितना कर सकते हैं, फिर जो जज्बा जुनून है वही लोग देखें, जिस दिन काम
1: चलें
3: करने
1: जो
3: का
1: काम
3: मौका मिले
1: दौड़ते
3: काम
1: हैं
3: करके
1: दौड़ते
3: दिखाएंगे।
1: दौड़ते आखिर मंजिल पर पहुंच जाते हैं।
3: जी जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं रहता, अल्लाह का जितना शुक्र कर उनका, मैं आप सबको पता है सारे बोलते थे लेट आया, लेट आके अल्लाह की जात ने जहां तक पहुंचा दी, जो उनसे मौके दे दिए, ये उसका जितना शुक्र करूं कम। उसके बाद जिस तरह मैं आप कहता हूँ कि अभी बच्चे और यंगस्टर जिस तरह अब तो मैं बहुत तो यंगस्टर रहा नहीं मगर उनके बीच में रहता हूँ, मेरा काम उनके बीच में रहना है, मैं हमेशा उधर ही होता हूँ, उनको समझता हूँ, उनके साथ अटैच दूसरी तरह कर जाता हूँ, ये नहीं कि फील्ड सिर्फ यंगस्टर्स की है, जब हमारे दूसरे भाई हैं उनकी भी अपनी अपनी फील्ड है, अपनी अपनी सलाहियतें हैं, मगर मुझे असल में जो शौक है मुझे अपने यंगस्टर्स के लिए होता है, और ये है कि अल्लाह उधर अटैचमेंट हो जाती है, वो निकल आए वो एक्टिव हो जाए, मैं तो बोलता हूँ अगर किसी को किसी यंगस्टर को अगर शौक भी है तो आके मिले, उनको भी स्टार्ट करवाएं और उनको अच्छी से शुरू करें, अपना कॉन्टेक्ट बनाए, जिस तरह आप मेरे फॉरेक्शन की बात कर रहे हैं क्यों इतनी स्ट्रांग है अपनी पार्टी में, क्योंकि ये बचपन से या यंग से तेसु है, इसके साथ के जितने मिनिस्टर हैं जितने इसके पार्टी मेंबर हैं इसके साथ ये कितने सालों से साथ साथ चलते आ रहे हैं, बड़े सालों के कॉन्टेक्ट हैं, तो इस तरह हमारे यंगस्टर भी शुरू से हमें तैयार करने चाहिए, उनकी रहनुमाई करनी चाहिए कि वो स्ट्रांग बन के आए, जो हमारे कॉन्टेक्ट हैं हम उनके जरिए उनको स्ट्रांग करें पार्टी में आगे लाएं,
1: कितने
3: क्योंकि
1: यंगस्टर
3: अकेले
1: हैं अगर
3: पार्टी में
1: आपकी
3: बैठ।
1: आप, मैं तो किसी यंगस्टर को नहीं जानता, एक दो को जानता हूं कि जो अभी यंग
3: जी
1: उम्र में जो मेंबर बने हैं पार्टियों के, वैसे तो बेचारों को दिलचस्पी नहीं है, जब कम्यून का इलेक्शन लड़ना होता है तो कुछ
3: बिल्कुल,
1: अरसा मेंबर बन जाते हैं।
3: दिलचस्पी जी वाकई नहीं है, और वो दिलचस्पी मैं अपने बच्चों को बोलूं, गोरे बच्चों को भी आजकल दिलचस्पी नहीं है, सांसों से पढ़ाते मुझे अब 12-13 साल हो गए, जितनी जितनी कम कम दिलचस्पी होती जा रही है बच्चों को आजकल, बंदा क्या करे, मगर वो भी पॉलिटिक्स भी ऐसी हो गई है कि अब समझ भी नहीं आती लोगों को, पहले कम से कम समझ आती थी ये ब्लॉक है वो ब्लॉक है ये चाहते हैं ये चाहते हैं, अब कौन क्या चाहता है कुछ समझ नहीं आ रही लोगों को, आसरे होते हैं
1: चलें
3: कहते हैं
1: आप
3: यार।
1: जीशान आखिर में क्या कहेंगे, चूंकि आप स्कूल टीचर हैं तो बच्चों को क्या मशवरा देंगे कि वो अपनी तालीम को, वालदैन को क्या मशवरा देंगे कि वो अपने बच्चों पर किस तरह की नजर रखें?
3: जी नजर तो आजकल ये बड़ा रह गया जी कि यारी दोस्ती पे नजर रखनी बड़ा जरूरी है, साथ पे रखना, क्योंकि जिस तरह आप देख रहे हैं अगस्त का महीना ले लें, हमारी आजकल अब एजुकेशनल प्लेसेस भी जहां बंदा जा रहा होता है गिमनेशियम में जा रहा होता है, वो रॉस किले में 16 साल के लड़के ने 16 साल के लड़के को मार दिया, इधर पिछले दिनों हेलियो गिमनेशियम हमारे इधर करीब है, इधर मेरे इतने पुराने स्टूडेंट पढ़ते हैं, उधर पिछले दिनों एक ने जी को छुरी मार दी, वो बाद में मुझे पता चला जी मेरा एक स्टूडेंट आया पुराना, कहते यार मेरा क्लास में फेलो था, तो कहने का मतलब है कि नजर रखें दोस्त यारी पे रखें, क्योंकि आजकल आजकल ये अच्छे बच्चे भी आपको जगह जगह मिलेगा मगर बुरे भी अनफॉर्चुनेटली आते जा रहे, तो नजर रखें बात करें उनसे, क्योंकि बच्चे काफी कुछ ऑब्जर्व करते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ वो एक कपड़े की तरह वो कतरा कतरा करके अपने अंदर लेते जाते हैं, उन्हें निचोड़ना चाहिए कभी, उनके साथ बात करें, और ये जो सारे हो बातें होती हैं वीडियोस आती हैं वो भी देखते हैं, कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो मौत में सस में ऐसी कोई वीडियो नहीं देखता, या ICM की या मुसलमानों के खिलाफ की, तो बड़ा जरूरी है कि उनसे बात करें जो वीडियोस देखते हैं, और ये मसाजिद को भी जो हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों से बात किया करें क्या चल रहा है, کیونکہ ان کے دماغ میں اور ان کے ہاتھ میں جو موبائل ہے وہ کافی کچھ دکھا دیتا ہے, تو اس کو ریفلیکٹ کرنے کے لیے گفتگو ان کے ساتھ بڑی لازم, ورنہ وہ سب ان کے اندر ہی رہ جائے گا. اور تو مور دین ایور ان سے بات کرنے کی, سمجھنے کی اور سمجھانے کی بڑی ضرورت ہے. اور میرے لائف کسی کے لیے کوئی خدمت ہوئی تو آپ بتائیے گا, کسی کو بچے کی مدد کے لیے ضرورت ہے کسی بھی کام کے لیے, بچوں کے لیے آلویز آلویز دیئر. اس دفعہ بھی دو کلاسیں چھوڑ, دو کلاسوں کا کلاس لیا بنا ہوا ہوں, وہ شوق ہی یہی ہے, اسی میں مزہ آتا ہے.
1: چلیں آپ کو شوق بھی ہے تو کوئی کام کرنا چاہیے جس میں زیادہ بندے کا شوق ہونا چاہیے, وہ کام کرنا چاہیے جس میں بندہ جا کر کوئی تبدیلی لا سکے.
3: جی وہ تبدیلی وہی ہے جی, ایک ایک بچے کی بھی تھوڑی سی زندگی چینج کر لی, کسی اچھے رستے پہ چل پڑے تو اس سے بہتر ہو, اس سے زیادہ خوشی ہو کوئی. تو اللہ کا شکر ہے جی کہ 14 سال ہو گئے, کوئی آج تک بچہ ایسا نہیں آیا کہ وہ جو بولے یار یا کیک لی تھا. الحمدللہ وہی ہے, عبادت سمجھ کے کام کو کر رہے ہیں ساتھ, اس کے حلال آ رہا ہے, اللہ کا اتنا شکر ہے کہ جتنا کرے کام ہے
1: رزق کے حلال آ رہا ہے, اللہ کا شکر ہے, یہی سب سے بڑی بات ہے آج کی.
3: جی بالکل بالکل بالکل, کوئی شک یہی بات.
1: زیشان آپ کا بہت شکریہ, آپ نے قیمتی ٹائم ہمیں دیا.
3: جی بہت شکریہ آپ کا, بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے. انشاءاللہ اور اب گرمیوں کی چھٹیاں ختم ہو گئی اور ایکٹیو ہو جاؤں گا, تو جس کسی کو بھی کبھی کچھ ہوا انشاءاللہ, اور سوشل میڈیا پہ بھی ایکٹیو ہونے کی پوری کوشش ہے, ورنہ کسی کو بھی کوئی کام ہو بنا جھجھک رابطہ کریں تو انشاءاللہ کوشش کریں گے جہاں تک ہو سکے تو پورا کرنے کی انشاءاللہ.
1: بہت شکریہ زیشان. سامعین ناظرین یہ تھے زیشان علی جو کہ اپنی پارٹی کے حزب ثلثہ کے ممبر ہیں, ان کی پارٹی کے جو لیڈر ہیں وہ وزیر خارجہ بھی ہیں, کمیٹیوں میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, بڑی پاورفل پوزیشن میں ہیں, اور وہ یہ بھی نہیں کہتے کہ اب مجھے ووٹ دیں, وہ کہتے ہیں سیاست میں حصہ لیں, بچوں پر نظر رکھیں. وہ بڑی زبردست انہوں نے بات کی ہے اور رزق حلال کی طرف جو ہے میں الحمد انہوں نے کہا کہ الحمدللہ رزق حلال آ رہا ہے اور کافی اچھی مقدار میں مل رہا ہے, تو رزق حلال کھائیں تو انشاءاللہ آپ کو رزق حلال ملے گا, اس میں کوئی دو رائے نہیں.
2: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے, اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے, آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے. سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں.

0: जो चेयरमैन है वो कह रहे थे आप अगला इलेक्शन जो है कोपेनहेगन कम्यून से लड़ेंगे और वो खुद पार्लियामेंट का लड़ने जा रहे हैं, ये बात कहाँ तक दुरुस्त है?
1: अंकल, एम्बिशन तो हमारा हमेशा कि हम पार्लियामेंट का रहा है। एंड अभी हमने, क्योंकि लास्ट इलेक्शन हमारा कम्यून का कोपमेक में हुआ है, तो हमने काफ़ी अच्छी तरीके से कि हम एक नेटवर्क बनवा लिया, काफ़ी अच्छी तरीके से हम जो यहाँ के लोगों के इश्यूज है वो हम समझ रहे हैं। तो मुझे लगता है ये यही है कि हम, हमारे लिए एक ज़रूरत बन गई है कि हम पार्लियामेंट लेवल में भी हम कम्यूनिटी की आवाज़ को हम बुलंद करें। तो अभी बहरहाल, क्योंकि ये काफ़ी एक डिफिकल्ट टाइम रहा है जो ट्रांजिशन रहा है मेरा सेकंड भाई का, तो हमने अभी इस पे थोड़ा बहुत फोकस करना है। तो इंशाल्लाह जब ये स्टेबल हो जाएगा तो हम पार्लियामेंट इलेक्शन के भी तैयारी शुरू कर लेंगे।
0: पार्लियामेंट के इलेक्शन, कम्यून्स के इलेक्शन तो टाइम पर होते हैं, पार्लियामेंट का तो किसी वक्त भी हो सकता है, लेकिन पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए साइन भी ज़रूरी होते हैं। क्या इसके अलावा भी बंदा इलेक्शन लड़ सकता है?
1: तरीके होते हैं, लेकिन बेस्ट वे तो यही है कि आप, क्या मैं एज ए पार्टी आप सिग्नेचर्स इकट्ठे कर लें। हमने, क्या मैं लास्ट इलेक्शन में भी देखा है कि जो हमारे भाई राशिद अली हैं, उन्होंने भी क्या मैं इलेक्शन लड़ा था, मतलब वो पार्टी के बगैर। तो ये तरीके का पॉसिबल है, लेकिन ये है कि जब आप फिर इस तरीके से इलेक्शन लड़ते हैं तो आपके लिए बहुत बहुत बहुत मुश्किल होता है कि हम एक सीट जीतना। आपको, मुझे लगता है 20,000 वोट्स से ज्यादा आपको चाहिए ये सीट हासिल करने के लिए।
0: तो राशिद अली क्या वापस आ रहे हैं या कोई नई पार्टी ज्वाइन कर ली है?
1: जी, उनका मुझे नहीं पता, लेकिन बाहर मुझे ये पता है कि वो एक्टिव है अभी भी क्या हम पॉलिटिक्स में।
0: तो अशम आपसे बात करेंगे, अभी आपने जो तैयारियां की हैं, ज़ाहिर है अभी आपके पास काफ़ी टाइम है सीखने के लिए भी, और आपको वैसे भी काफ़ी काम आपने पहले भी सीखा हुआ है, पार्लियामेंट में थे तो आप देखते रहते थे आपको, आप अपना काम करते हैं, ऑफिस वर्क आपका A1 होता था। लेकिन अब बहुत सारे उम्मीदवार हैं, अगर देखा जाए गैर मुल्कियों में, गैर मुल्कियों की जो आवाज़ उठाती है वो सिर्फ आप ही की
1: जी
0: पार्टी है, बाकी तो इलेक्शन जीतने के लिए सोशल डेमोक्रेट भी बात करती है, रेडिकल वेंस्टा भी बात करती है, SF भी बात करती है और जमातें
1: जी
0: भी बात करती हैं, तो खुल के जो मुखालफत करती है वो तो डेनिश पीपल्स पार्टी करती है, आप क्या कहेंगे?
1: जी अंकल, आप बहुत शुक्रिया आपने ये क्या हम सवाल उठाया, क्योंकि बेसिकली मेरा यही कंसर्न रहा है एज ऑफ रिसेंट। क्योंकि अगर आप कल परसों देखें, एक कहानी निकली है काफी क्या हम अखबारों में, जहां वो कह रहे कि फकीर खान का नया बंदा अशम आगन अदीम ने ये कहा है कि क्या मैं अरेंज मैरिज एंड फोर्स मैरिज दो डिफरेंट चीजें हैं। बेसिकली मैं ये कह रहा था कि डेनमार्क में हमारे जो माइनॉरिटीज, खासकर मुस्लिम जो कल्चर के लोग हैं, इनकी ये प्रैक्टिस है कि वो अरेंज मैरिज प्रेफर करते हैं, एंड बच्चों को भी अक्सर कि हम इस चीज़ में ज़्यादा आसानियाँ वो देखते हैं। तो मैंने बस ये कहा कि कोई रेसिस्ट पॉलिटिशियन कहते हैं कि ये दो चीज़ें एक हैं, इसको ख़त्म कराने के लिए कि फिर डेनमार्क में अरेंज मैरिज का मौका ना हो। और मैंने बस यही कि हम आगे कहा है कि ये कि हम अच्छी बात नहीं है, इसमें कोई कि हम गलत काम नहीं होता कि आप प्लीज़ इन लोगों को अलाउ करो ये करने के लिए। लेकिन इस पे मुझे बहुत शदीद क्या मैं क्रिटिक्स हुए हैं, ना सिर्फ क्या मैं रेसिस्ट पार्टियों से जो राइट विंग पार्टीज है, लेकिन जो लेफ्ट विंग पार्टीज है ये भी कह रहे कि इसको हमें अलाउ नहीं करना चाहिए। गारी केलविंस ने कहा है, इनस लिस्ट ने भी क्या हम इस चीज़ पे काफ़ी क्रिटिकली उन्हें देखा है। अब मेरी सिर्फ ये क्या हम कंसर्न है कि जो पार्टीज हम नॉर्मली हम इनको वोट देते हैं, अगर वो ऐसे एक कॉन्सेप्ट जैसे अरेंज मैरिज को ख़त्म कराना चाह रहे हैं, तो फिर क्या मैं, हमारे लिए क्या रह गया अंकल, आप मुझे बताएं।
0: इन स्टेशन की आप बात करते हैं तो एक दफ़ा उन्होंने इंटरव्यू दिया, उस वक्त की जो फोरमैन थी, बाद में वो सोशल डेमोक्रेट में चली गई, तो अब लॉर्ड मेयर भी रहीं, तो अब गालिबन उन्होंने सियासत छोड़ भी दी है, तो वो तो एक ज़माने में कहती थी जब ये सवाल किया गया अरेंज मैरिज के मुतल्लिक, तो वो कहती या हा लीग लैस, मुझे कोई परवाह नहीं है, कुछ 10 शादियाँ करे, 5 करे, 3 करे, 2 करे, अपनी मर्जी से करे, मैं बिल्कुल बलैना नहीं करूँगी।
1: अंकल, होना भी ऐसे चाहिए ना कि हम, आप कि हम ओपन रहे दूसरे लोगों के कि हम प्रेफरेंस के लिए, एज लॉन्ग एज आप कोई किसी के साथ ज्यादती ना करें, कोई क्रिमिनलिटी ना करें, तो हमें फिर क्या हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए। आज वो ये कह रहे हैं कि क्या मैं, हम अरेंज मैरिज के जो कॉन्सेप्ट है इसको कि हम बैन करना चाह रहे हैं, कल वो किसी के हिजाब के बारे में बात करेंगे, या तो वो फिर कहेंगे कि आप
0: नहीं
1: मस्जिद
0: आजकल

0: को भी हमने बंद कराना पड़ेगा।
1: आप तो कभी भी किस तरह की डिबेट हमने नहीं सुनी
0: जी।
1: आजकल कोई अरेंज मैरिज हो रही है, हमें तो अभी आज दिन तक हमारे पास तो कोई इतला नहीं है।
0: नहीं, ये पिछले 2-3 दिनों से मैं अंकल आपको आर्टिकल्स भी सेंड कर लूंगा, काफी ज्यादा क्या मैं खबर आई है इस चीज के बारे में
1: तो इस पे
0: मेरे साथ
1: रेडिकल
0: एसोसिएट
1: इंस्टा क्या कहती हैं, सोशल डेमोक्रेट क्या कहती है, ये दूसरी पार्टियां क्या कहती हैं?
0: जी। आप यकीन करें कि एक जो विंस्का का जो मेयर है आमसोस पर मेस्टा ल्यूटकन, उसने कहा कि मैंने कभी इतना क्या मैं क्रेजी बात नहीं सुनी। मतलब उन्होंने अपना ये इशार किया है कि ये हमारे सोच में भी नहीं हो सकता कि हम इस चीज को अलाउ करें। तो अब मसला ये हो गया कि ये कहानी बन गई है, और अब हमें अगले मीटिंग में देखना पड़ेगा कि वो इस पे एक्चुअली कोई काम करना चाहेंगे इसको खत्म करने के लिए, या वो एवं क्या मैं मीडिया के लिए ये बात कर रहे हैं। और अगर केल विंसन ने भी कहा कि ये हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते, एंड इनोसलिस ने भी कहा है।
1: अशम क्या बात है, रेडिकल वेंस्टा तो गैर मुल्कियों के हक में बड़ा बोलती है, जब वक्त आता है तो उसके बाद वो अपनी सीट लेकर फिर वो भूल जाते हैं, मुआहदे कर लेते हैं, पार्टियों के साथ मिल जाते हैं।
0: अंकल अगर अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन यही है कि कई ऐसे पार्टीज हैं जो हमारे वोट्स के लिए काफ़ी कुछ कह जाते हैं, लेकिन इसेंशली कि हम पार्टी के जो स्ट्रक्चर में वो ये अलाउ नहीं करते कि वो हमारे लिए काम करें। अभी जैसे ये अरेंज मैरिज वाली बात हुई है, एक दूसरा एग्जांपल मैं ले सकता हूँ कि पार्लियामेंट में रिसेंटली इन्होंने ये क्या बिल क्या एक्सेप्ट कर लिया है कि जो फॉरेन स्टूडेंट्स जो यहाँ आते हैं नॉर्मली वो अपने बीवियों को भी या फैमिली मेंबर्स को भी साथ के आ सकते हैं, मतलब अपने स्पाउसेस को साथ के आ सकते हैं। अब उस चीज़ को भी वो ख़त्म कर रहे हैं। और पहले ये था कि क्या मैं जब आप ऐसे स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं तो आपको फिर 3 साल मिलते हैं वर्क वीज़ा, अब वो 3 साल वर्क वीज़ा वो 1 साल का करवाना चाह रहे हैं। अब बंदा ये सोचे कि क्या मैं इन्होंने पहले से ये स्ट्रक्चर बनाया है कि लोग यहाँ आए अपना मास्टर या PhD करें कंप्लीट करके फिर वो एक अच्छा सा काम करें, अच्छे पैसे कमाएं, और फिर उन पैसों में से तो काफी पैसे क्या मैं गवर्नमेंट को मिलेगा ना टैक्स के थ्रू। तो पहले से एक सिस्टम बना है जहां सिर्फ जो वेल एजुकेटेड एंड वेल स्टेब्लिश लोग हैं वो यहाँ रह सकते हैं, लेकिन अब उनको भी वो हटा रहे हैं क्योंकि कोशिश ये है कि जितने कम क्या मैं खासकर जो एशियन मुल्कों के लोग आ रहे हैं उनको हम जितना रिस्ट्रिक्ट करें वो बेहतर है। और साथ साथ यूरोपियन यूनियन ने एक स्पेशल डील बनाया इंडिया के साथ कि हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ इंडियंस आए। तो ये आप अंकल आप खुद देखें कि हम ऐसे एक डायरेक्शन में जा रहे हैं जहाँ अनफॉर्चुनेटली मुसलमान
1: कहीं हम
0: होना
1: लोगों
0: आपके
1: की
0: लिए
1: अपनी
0: आसान नहीं
1: गलती तो
0: है
1: नहीं है,
0: जी।
1: कहीं हम लोगों की अपनी गलती तो नहीं है?
0: हमारी गलती है अंकल, हमारी गलती इस रीजन की वजह से है क्योंकि हम प्रॉपर तरीके से क्या हम इन्वॉल्व नहीं हो रहे पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में। अगर अभी मैं सिटी काउंसिल से पहले मैं क्या नोएपो काउंसिल में बैठा हूँ, वहाँ एक अंकल असलम मुल्ला पाकन है वो शामिल है क्या उस वेल में, लेकिन उनके अलावा ऐसे कोई प्रॉपर किस्म के क्या मैं मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो जब हमने फैसले लेने होते हैं कि क्या हम इस रोड को अगर हमने खोलना है या इस रोड को हमने बंद करना है या पार्किंग का हम देख लें, अगर वहाँ हमारे कम्युनिटी के लोग नहीं होंगे तो हम अपनी कम्युनिटी के लिए कैसे काम करेंगे, एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो लोग काम करना चाह रहे हैं अगर हम उनको सपोर्ट ना करें फिर तो आप दुआ ही कर सकते हैं।
1: लेकिन अशम अगर आप दूसरी तरफ देखें कि जो लोग 12 12 13 13 साल से यहाँ रहते हैं, टैक्स भी दे रहे हैं, कोई इलीगल काम भी नहीं कर रहे, लेकिन उसके बावजूद उनको वीज़ा नहीं दिया जाता।
0: ये क्योंकि अंकल हमारे एक इमेज बन गई है ना, अभी भी पाकिस्तान कैटेगरी 5 में है, एक जमाने में हम कैटेगरी 3 में थे। तो ये हम ये एक इश्यू ऑन गोइंग है इवन दो कि क्या मैं जितने सक्सेसफुल पाकिस्तानी डैनिश लोग हैं उतना क्या हो सके दूसरे और क्या माइनॉरिटी ग्रुप के नहीं होंगे। हमारे बहुत बहुत अंकल वेल स्टेब्लिश डेनिश सिटीजन है। अगर आप देखें सुप्रीम कोर्ट का जो जज है पाकिस्तानी है, मतलब कई ऐसे लोग हैं जो हाईली क्या मैं इन्वेस्टर क्या मैं बिजनेस ओनर्स है जो क्या पाकिस्तानी है। तो हमारा डेनिश कम्युनिटी में हमने अपने आप को इस्टेब्लिश किया है, पॉलिटिकली हमने उस तरीके से इस्टेब्लिश नहीं किया जहां हमें करना चाहिए।
1: तो अशम, आप क्या समझते हैं कि कुछ में कुछ हमारी अपनी गलतियां भी हैं, या आप दूसरी तरफ जमातों की तरफ कहते हैं फलां जमात हमारे खिलाफ बात कर रही है, फलां जमात कर रही है, कहीं हमारी अपनी गलतियां भी हैं कहीं?
0: अंकल, मुझे लगता है कि हम प्रॉपर तरीके से और क्या हम काम कर सकते हैं। अभी आप देखें, एज ऑफ रीसेंट क्या मैं उन्होंने क्या मैं जो क्लाइमेट मिनिस्टर अनाउंस किया, वो एक अफगानी औरत है। उसने भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम किया, समिया नावन ने। लेकिन मेरी बस ये क्या मैं अभी तक समझ नहीं आ रही कि क्या मैं पाकिस्तानी इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हुए हैं पॉलिटिक्स में, इतना ज़्यादा क्या हम हमारा एक्सपीरियंस रहा, इतने हम लोग हैं, अभी तक हमारे पास एक पाकिस्तानी मेयर नहीं बना। तो ये आपको
1: क्या
0: सवाल
1: वजह क्या है,
0: उठाने
1: वजह
0: पड़ते हैं,
1: क्या है?
0: और यही मैं सोच रहा हूँ कि मुझे नहीं पता कि ये वजह क्या है
1: हम वोट देते
0: इसका।
1: नहीं हैं, अब हम पावर पॉलिटिक्स करते हैं।
0: ये भी चीज है कि हम जो ऐसे कम्युनिटी में हमारे पास बहुत ज्यादा डिवीजन है। अब आप देखें, पिछली दफा क्या मैं पार्लियामेंट के इलेक्शन में कासिम भाई वाहिद पाकिस्तानी थे जो क्या मैं कुंभ मेघने से खड़े हुए थे, उसके उनके साथ साथ क्या समिया नावा खड़ी हुई थी। मतलब दो मुसलमान थे कुंभ मेघने में, कितने मुस्लिम लोग हैं, और आपके सामने है जितने वोट उनको मिले हैं, वो क्या सही रिफ्लेक्शन नहीं है जो यहाँ की कम्युनिटी, जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है या मुस्लिम कम्युनिटी है। तो अब मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि अगर हम प्रॉपर तरीके से सपोर्ट करें अपने कैंडिडेट्स को, तो हमारे लिए आसानियां भी हो जाएंगी। क्यों, इन द एंड ये रूल्स हमारे लिए है ना। अगर क्या हम रूल सही लोग नहीं आएंगे अंदर, तो हमारे खिलाफ रूल्स बनेंगे।
1: आप यहाँ पैदा हुए, आपने यहाँ तालीम हासिल की, आपने कानून को फॉलो करते हैं, तो उसके बावजूद अगर आप प्रॉब्लम बताते हैं, फिर आम आदमी का क्या हाल होगा?
0: अंकल, यही क्या मेरी सबसे बड़ी कंसर्न है। अगर वो क्या मैं मुझे सिकंदर भाई या किसी और क्या जो पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस है हमें ऐसे ट्रीट करें, तो जो आम आदमी है उनके साथ क्या होता होगा क्या मैं ऑन अ डेली रूटीन। तो बेसिकली हमें क्या एक चेंज लेके आना पड़ेगा, और ये आराम आराम से आएगा। लेकिन सबसे पहले अगर हम साथ इकट्ठे हो गए, क्या हम अग्री करें कि नहीं बिल्कुल हमें इन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, तो फिर ही क्या हम आप लोगों के लिए काम कर सकते हैं।
1: अच्छा, अब क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम खुद वोट नहीं डालते, तो फिर हम डैनशो को किस तरह कहें कि वो हमें वोट डालें?
0: बिल्कुल अंकल, हमें क्या हम रियलाइज करना चाहिए कि वोट की क्या इंपॉर्टेंस है। एंड ये नहीं है कि क्या मैं अच्छा बारिश हो रही है इस दिन तो हम क्या हम वोट नहीं डालना चाह रहे। ये अक्सर ये एक बहुत बड़ा इश्यू होता है, और मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है मेरे अपने दोस्तों के साथ, कि वो कहते हैं कि यार कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप पिछले कम्यून के इलेक्शन में आप देख सकते थे कि क्या मैं हमारे कम्युनिटी के एक कैंडिडेट थे जो एक वोट से हार गए थे। तो ऐसे भी इंसिडेंट्स होते हैं, तो
1: क्या इसमें
0: हमें
1: हमारी
0: ऑब्वियसली
1: पाकिस्तानी पॉलिटिक्स तो नहीं शामिल?
0: अंकल ये तो आप लोगों को बेहतर पता होगा। मैं तो होप करता हूँ कि पाकिस्तानी पॉलिटिक्स नहीं इन्वॉल्व है, लेकिन मैं ये भी कह सकता हूँ कि ऑब्वियसली कोई ना कोई हद तक ये भी सच्चाई है।
1: सच्चाई है। तो आखिर में हमारे पास 1 मिनट है, आप किस तरह क्या कहेंगे आखिर में अपने वोटर को, सपोर्टर को, सामाइन को, नाज़रीन को?
0: जी शुक्रिया। बस मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले मैं सबका शुक्रिया अदा करूँगा कि ये इस मुकाम पे लेके आ गए हो आपने, कि मुझे क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई है कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। मेरी तो ऑब्वियसली ये ख्वाहिश थी कि क्या मैं कम्युनिटी इलेक्शन में हमें 2 मंडेट मिलते, कि मैं एंड सेकंड भाई साथ साथ क्या हम जाते वहाँ। लेकिन बहरहाल एक सिचुएशन बन गई है, उसको हम फिर देख के चलेंगे। एंड खुशी की ये बात है ना कि क्या मैं हमारी कम्युनिटी के बंदे को मिला है वो मैंडेट,
1: इसमें कोई
0: क्योंकि ये भी
1: शक
0: तो
1: नहीं
0: हो
1: है,
0: सका
1: फ्री
0: किसी
1: क्रोने
0: गोरे
1: का
0: को मिल
1: मैंडेट है
0: जाता। जी
1: ये, फ्री क्रोने का मैंडेट है, आपकी पार्टी का मैंडेट है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरी ऑब्वियसली कोशिश ये होगी कि मैं जितने भी कम्युनिटी के लोग हैं उनको लेके चलूं। अगर कभी भी कोई आपको इश्यू सामने नजर आए, आप मुझे क्या मेरे से रब्ता करें, एंड फिर होपफुली मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों को प्रॉपर तरीके से पॉलिटिकली सेटिस्फाई करूं।
1: अशम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमारे साथ शेयर किया। सामान्य नाजरीन, ये नौजवान सिटी काउंसलर हैं, پہلی دفعہ یہ اپنا انٹرویو دے رہے ہیں. اس سے پہلے ان کے پاس کافی سارے تجربات ہیں, پارلیمنٹ کا ان کو تجربہ, یہ الیکشن لڑ چکے ہیں پارلیمنٹ کا, اب کمیون میں بیٹھے ہیں, یہ 4 سال کمیون میں بیٹھیں گے, تجربہ حاصل کریں گے, اگلا الیکشن لڑیں گے. جب تک آپ ووٹ نہیں ڈالیں گے, یہاں کا سسٹم ایسا ہے, قانون تبدیل نہیں ہوں گے. ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا.
2: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے, اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے, آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے. سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامع ناظرین, ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ انٹرو میں کہ آج ہمارے بہت سارے مہمان ہوں گے. ہمارے پڑوسی ملک سویڈن میں الیکشن ہوئے, چونکہ ڈینش بھی ہیں, دوہری شہریت کا نظام ہے, ڈینشوں نے بھی ووٹ ڈالے جن کے پاس سویڈن کی نیشنل شہریت تھی. اسی طرح دونوں شہروں میں آنا جانا لوگوں کا لگا رہتا ہے اور اس پر یہ بات چیت بھی کرتے رہتے ہیں. یہ سارے باشعور ہیں, اس سیاست کو سمجھتے ہیں, جن ممالک میں رہتے ہیں اس ملک کی سیاست پر ان کی گہری نظر رہتی ہے. ہمارے ساتھ اس وقت کامران قریشی صاحب ہیں جنہوں نے الیکشن لڑا, انالسٹ ہیں زبیر حسین صاحب, اسی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں سید توقیر حسن بخاری شاہ صاحب, اور نعیم صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, فیصل مرزا بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ معلوموں میں رہے اور بڑی گہری نظر ہے ان کی, انہوں نے کہ سیاست میں جو ہے وہ اس الیکشن میں بڑا کردار ادا کیا. تو سب مہمانوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں.
3: رضا صاحب آپ کو بہت السلام, اور سب ساتھیوں کو, سب ناظرین اور سب سننے والوں کو السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. شروع کرتے ہیں ہم کامران سے. کامران, آپ الیکشن لڑے, الیکشن ہو گیا, ریزلٹ بھی آ گیا, آپ کیا کہیں گے؟
4: سب سے پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم, سب کو, آپ کے سامعین کو بہت بہت السلام علیکم رحمۃ اللہ. ہاں جی, الیکشن جو تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. 26 اگست سے لے کر 13 ستمبر تک یہاں پر الیکشن ہوا ہے, تو الحمدللہ اب بالکل کمپلیٹ ہو گیا ہے. جو ابھی جو جتنے بھی ہے, اب دیکھتے ہیں جو مطلب پارلیمنٹ میں جو سیٹیں نکلی ہیں وہ لیفٹ ونگ کی وہ 176 ہیں اور رائٹ ونگ کی جو ہے وہ 173 ہیں. تو اب دیکھتے ہیں جی آگے, اور 28 ستمبر کو اسپیکر ہے جو سویڈن پارلیمنٹ, انہوں نے اجلاس بلایا ہے, اور 29 ستمبر کو وہاں پارلیمنٹ میں ووٹنگ ہونی ہے پرائم منسٹر کے لیے. جی رہا سر,
1: پرائم منسٹر کے لیے ووٹنگ ہونی ہے. زبیر صاحب, آپ نے اس الیکشن کو ڈیفینیٹ واچ کیا ہوگا, انالائز بھی کیا ہوگا, آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟
5: دیکھیں راجہ صاحب, جہاں تک الیکشن کی بات کریں تو لازمی سی بات ہے کہ اس پہ ہر پاکستانی کی نظر رہی, اور خاص طور پہ مہاجرین کے لیے بہت ہی اہم قسم کا جو یہ الیکشن تھا وہ رہا. اگر ہم الیکشن کے نتائج کو دیکھیں تو یقینی طور پر نتائج حیران کن ہی ہیں. سویڈن میں انتہائی دائیں بازو کی جو جماعت ہے, سویڈن ڈیموکریٹس کی جو مقبولیت تھی وہ حالیہ دنوں میں کچھ اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ ایک زمانہ تھا لوگ ان کو چھپ کر ووٹ دیا کرتے تھے اور بتانے سے ڈرتے تھے, لیکن اس بار نہ صرف لوگ فخر سے ووٹ دے کر سوشل میڈیا پر دکھا رہے تھے بلکہ پارٹی کے جلوسوں اور جلسوں میں تل دھرنے کی جگہ تک نہیں ہوتی تھی. پھر بات آتی ہے کہ آخر ایسا ہوا کیوں کہ سویڈن ڈیموکریٹس یا جو آپ کا انتہائی دائیں بازو کی جماعتیں ہیں وہ ہاری کس طریقے سے, یا ان کا جو ہے ووٹ بینک ہے وہ کم کیسے ہوا؟ تو ہوا یوں کہ ایڈوانس ووٹنگ, جس کو ہم فورتھ ہیڈ روشنی کہتے ہیں, کہ ان دنوں میں ایک ایسا اسکینڈل سامنے آیا جس نے ہنگامہ برپا کر دیا کہ ایس ڈی کا ایک شینستمان, یعنی کہ ان کا ایک رہنما تھا, ان کا رشیا سے جو ہے وہ کوئی تعلق کھل کر سامنے آیا, اور یہ اسکینڈل کچھ بہت ہی زیادہ سوشل میڈیا اور میڈیا پر چلتا رہا, جس کی وجہ سے سویڈش ووٹر جو ہے وہ اپنے ملک کی سلامتی کو مد نظر رکھ کے انہوں نے اس معاملے کو حساس جانا, اور سویڈش ڈیموکریٹس کا جو ووٹ بینک ہے وہ اس کو آپ سمجھیں کہ زبردست ایک دھچکا لگا اور نقصان ہوا. اگر ہم اس وقت جو بات کریں سینٹر لیفٹ کی جیت کی, تو کوئی یہ بڑا کارنامہ نہیں ہے, فقط 3 مینڈیٹ سے ان نشستوں کا فرق ہے, یعنی کہ جو سینٹر لیفٹ کی گورنمنٹ ہے ان کو, یا جو پارٹیاں ہیں ان کو 176 سیٹیں ملی ہیں بمقابلہ 173 جو حالیہ حکومت تھی ان کے مقابلے میں. اگر ہم حکومت سازی کی بات کریں کہ کیا میکڈیلنا اینڈرسن اسے آسانی سے حکومت بنا لیں گی, تو دراصل 2018 کی تاریخ یاد کریں کہ 2018 میں سویڈن میں بھی اسی ہی باریک صورتحال بنی تھی کہ تقریباً 134 دن تک معاملات تھے, لیکن اب جیسے کامران نے بتایا کہ اب بہت ساری چیزیں فائنل ہو چکی ہیں, और हो सकता है कि वजीर आजम की वोटिंग का सिलसिला स्टार्ट हो जाए, लेकिन मामला आसान नहीं है। स्वीडन के रिजल्ट का जो माजरीन हमारे जो खुशफहमी में मुबतला हैं, उनका भी जो है आप समझें कि एक वक्त ऐसा आएगा कि चीजें खुल के सामने आएंगी। अब अगर हम इस नुक्ते की बात करें कि माजरीन की के उनके लिए कितना फायदेमंद हुआ, तो माजरीन के लिए ये खुशी की तो बात जरूर है कि सेंट्रल लेफ्ट पार्टी जो है वो उन्होंने हुकूमत बनानी है और उनकी मौजें हो जाएंगी, लेकिन मैं अपील करता हूं कि इस खाम ख्याली से बाहर निकलें। हुकूमत बनने के बाद भी इमिग्रेशन के हवाले से कोई खातिर ख्वा नरमी होती दिखाई नहीं दे रही। यहाँ मैं सामीन को बताता चलूं कि खुद सोशल डेमोक्रेट्स ने भी अपने दौरे इक्तदार में ऐसे कई कवानीन को मंजूर किया कि जो माजरीन के हक में नहीं थे, और अब ऐसा मुमकिन ही नहीं कि पिछली हुकूमत ने जो सख्त कवानीन बनाए हैं ये नई हुकूमत इनको खत्म कर देगी या इनमें कोई नरमी लाएगी। क्यों नहीं लाएगी, उसकी भी एक बड़ी वजह है, अगर आप इजाजत दें तो मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। स्वीडन में कानून बनाने का एक खास जो है वो आईनी और पार्लियामानी तरीकेकार है, यानी कि सबसे पहले एक बाजाबता कमेटी होती है जो बनने वाले कानून का तफसीली जायजा लेती है। उस कमेटी में अपोजिशन के सियासतदान और कानूनी माहरीन भी शामिल होते हैं। जब कमेटी इस कानून को जायज करार देती है तो उस कानून की मंजूरी के लिए वोटिंग का सिलसिला पार्लियामेंट में होता है। इस वक्त स्वीडन की जो आवाम का सबसे बड़ा है वो ये रहा है कि गैर कानूनी और बगैर काम करने वाले जो माजरीन हैं उनको मुल्क बदर किया जाए, इमिग्रेशन के कवानीन सख्त किए जाएं और जुर्म करने वालों से शहरियत तक वापस लेने के लिए कानून साजी के मुतालबात अवाम के आप समझेंगे लिस्ट में सर फहरिस्त हैं। नई बनने वाली हुकूमत कभी भी स्वीडिश अवाम के इस मुतालबे के खिलाफ जाने का रिस्क नहीं लेगी। अगर इन्होंने माजरीन के लिए नरमी की तो सोशल डेमोक्रेट्स अपनी गिरती हुई साख को बिल्कुल संभाल नहीं सकेंगे और इनका वोट या तो छोटी जमातों में बढ़ जाएगा या मुस्तकबिल में दाएं बाजू के लिए हमेशा के लिए राह अमवार हो जाएगी। जी राय साहब,
1: हमेशा के लिए राह अमवार हो जाएगी। फैसल, आप नौजवान हैं, आप मालमों में रहे, बहुत सारे इलेक्शन को आपने देखा, उससे पहले भी इलेक्शन हुए, इस इलेक्शन के मुतालिक आप क्या कहेंगे?
6: अस्सलाम वालेकुम राजा साहब और आपके जितने भी साथ दोस्त हैं, जुबैर भाई हैं, कमरान भाई हैं, नईम भाई, शाह साहब को मेरा बहुत सलाम। तो ये राजा साहब, इलेक्शन जो स्वीडन में, जैसे जुबैर भाई ने भी कहा है, कमरान भाई ने भी जो बातें की हैं, इसके बाद कोई ज्यादा तफसील तो मेरा ख्याल है जो है वो नहीं बनती, लेकिन ये बात यही समझ लें कि जो रिजल्ट आज से 3-4 महीने पहले डेनमार्क में आया था वही रिजल्ट स्वीडन के अंदर आया है। यहाँ मैड्रिड लास लुकस जो है वो मेन प्लेयर बन गया था, उधर सेंटर पार्टी मेन प्लेयर बन गई है। अब जिस तरफ उसको अच्छी डील मिलेगी, हुकूमत उस तरफ बनेगी, लेकिन उधर मेरा ख्याल है जैसे लास लुकस भी इधर सोशल के साथ चला गया था, मैटे की हुकूमत बन गई, इस तरह उधर भी जो है सोशल की हुकूमत, सोशल डेमोक्रेट की जो है हुकूमत बनने का चांस है। जैसे दूसरे नंबर पे जुबैर भाई ने ये एक बात की है कि अगर कोई इमिग्रेशन वाला ये सोच रहा है कि उसके बाद नरमी होगी, तो वो बातें इनकी जो है ना वो बिल्कुल ठीक है कि नरमी के कोई चांस नहीं है, सख्तियां ज्यादा हो सकती हैं, नरमी नहीं हो सकती। और दूसरे नंबर पे सिर्फ इधर डेनमार्क में जब इलेक्शन होते हैं तो सिर्फ पार्लियामेंट के होते हैं, लेकिन जब स्वीडन में होते हैं तो उधर तीनों इलेक्शन एक ही दिन पर होते हैं। तो इस तरह जो बल्दियाती इलेक्शन भी उधर हुए हैं तो उसमें मालमो कमून में हमारे 3-4 पाकिस्तानी थे और उनका भी रिजल्ट आया है। तो मैं तो अपने भाई कमरान को, जिसके मैं पूरी कंपेन भी कर रहा था, वो जो है वो तकरीबन कामयाब उम्मीदवारों में वो 8वें नंबर पे रहा है अपनी सोशल डेमोक्रेट में, अपनी पर्सनल वोट की वजह से 630 लोगों ने इस पर एतमाद का इजहार किया है। उसके बाद दूसरे नंबर पे इसने अपने कुछ हमारे फॉरनों के एरिए थे, जैसे रोशनगोड, जहाँ की ये सोशल डेमोक्रेट का हेड भी रहा है, हेड है बल्कि, उधर से भी इसने क्लीन स्वीप किया है अपनी पर्सनल वोटों में। तो माशाल्लाह मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ कि इनका पहला इलेक्शन था और इन्होंने जो 30-30 साल से इलेक्शन लड़ रहे हैं उनका डट कर मुकाबला किया है। तो अभी देखते हैं मालूमों में जो है वो भी हुकूमत
1: सोशल जाऊंगा। तो ये जो कोई मुश्तरका उम्मीदवार भी थे उनको कितने वोट मिले हैं?
6: मुश्तरका उम्मीदवार तो मुश्तरका तो कोई नहीं उनको आप कह सकते, बस वो ऐलानों की आता की मुश्तरका थे वो, उनका माशाल्लाह वो हमारे अंकल ही हैं, वो तीसरा इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैं उस वक्त भी उनको बोला था वो तीसरा इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उनके जो उनके लिए वो कभी इतनी ज्यादा अपनी कंपेयर नहीं करते, तो लेकिन ठीक है वो अपनी मर्जी से मैदान में थे, तो उन्होंने अपना मुकाबला, उनको भी 300 वोट मिल गए हैं जो उनके साथ जो लगे हुए थे, और उनके लिए भी कंपेन अच्छी की है ने, तो 300 वोट उन्हें। लेकिन कमरान की जो है वो 630 वोट, एक बहुत अच्छी जो हमारे लोगों का एतमाद है, पाकिस्तानियों का, अरबियों का, अफगानियों ने भी, मैं कहता हूँ कि उन्होंने भी बड़ी सपोर्ट की है कमरान भाई को। और पहले इलेक्शन में 630 और अपनी पार्टी में पर्सनल तौर पे जो है वो पर्सनल वोट 8वें नंबर पर कमरान भाई ने, ये हम बिल्कुल आखिरी 90% रिजल्ट पर हम जो है वो चौथे नंबर पे, 5वें नंबर पर थे, लेकिन वो फिर एंड पे कुछ इलाके ऐसे आए जहां से पर्सनल वोट दो तीन कैंडिडेट और के निकल आए, जिसपे कमरान भाई को जो है फिर वो 8वें नंबर पर जो है वो
1: 8वें नंबर पर आना पड़ा। शाह साहब, आपने ये सब को सुना देखा, तो आप क्या इसमें इजाफा करेंगे या क्या सवाल बिल्ड करेंगे?
3: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे से तो सब यंगस्टर्स हैं, लेकिन एक चीज इनको याद रखनी चाहिए कि सियासत बड़ी बेरहम होती है और ये बहुत वक्त मांगती है, ये कुर्बानी मांगती है। तो मैं अपने यंगस्टर्स को यही कहूंगा, जो कुछ मैंने डेनमार्क और स्कैंडिनेविया की सियासत को गहरी नजर से देखा और इसका तजिया किया, तो वो ये है कि जब इनको क्या वजूहात थी, किस वजह से हमारे कैंडिडेट्स जो हैं वो डेंचों के या यूरोपियन या स्वीडिश या स्कैंडिनेवियन किसी भी कंट्री में अपने वोट हासिल नहीं कर सकते पर्सनली, वो इसकी वजूहात ये है कि हम वो जब इलेक्शन का वक्त आता है तो हम लोग उस वक्त अपनी कैंपेन शुरू करते हैं। हालांकि एक सियासतदान जो है वो सोते जागते हुए सियासतदान होता है, उसको लिखना पढ़ना से ज्यादा जो है सेमिनार करने चाहिए, अगर ये सारे मिलकर कोशिश करें कि कोई ऐसा गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है, हमारे डेनमार्क के अंदर भी पॉलिसीज है, यहाँ पे भी गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, बकायदा आपका कल्चरल या कोई ऐसे प्रोग्राम करे तो वो सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे लोग जो है उसको वो मिस यूज करते हैं, तो लिहाजा काफी जगह कम्यूनों के अंदर पाबंदी है। लेकिन अगर हम लोग बेसिकली स्वीडिश और डेनिश और नॉर्वेजियन आइन के मुताबिक चले और लोगों को अवेयरनेस दें, और इसके अंदर सिर्फ ये नहीं कि अपने लोगों को बनाए बल्कि मुख्तलिफ अकवाम जो रह रही है वहां पे, पोलिश है, स्वीडिश है, चेक्स है, सबको आप इन्वाइट करें और उनको कहें कि ठीक है आप आए, वहां उनको एक बोतल कोको कोला या एक समोसा पे पकौड़े पे ही आप उनको रखें, लेकिन उनके साथ जब आप घुल मिल जाएंगे तो इस तरीके से आपको बहुत ज्यादा सहूलत मैसर होगी और आपके जो है वो चाहने वाले जो है वो ये देखेंगे कि ये एक बाहर से आया हुआ हमारे मुल्क में, हमारे माशरे में हमारे आइन की प्रोटेक्शन कर रहा है। सबसे बड़ी जो मेरे तजिए में ये बात आई है कि ये आपके किसी भी कॉल ऑफ ऑल को ये आपको नजरअंदाज करके सिर्फ एक चीज को पकड़ते हैं, वो है कत्लो गारत। ये कहते हैं कि भाई हमने अपने मुल्कों में अपने लोगों पे कत्लो गारत जो करते हैं उनको कड़ी सजाएं देते हैं, उनको हम जो है माशरे में इतना नाम नहीं देते।
1: लेकिन ये बात तो आप सवाल बिल्ड करते हैं, हमें शायद ने भी ज्वाइन कर लिया, शायद आपको भी खुश आमदीद कहते हैं, शायद आपको आवाज आ रही है, समझ शायद को आवाज नहीं आ रही। शाह साहब आप
0: तो चलते हैं, मैं एक मिनट आता हूँ, मुझे आवाज आ रही है, आप एक मिनट दे मुझे बस।
1: चले जब आ जाए तो आप बता दें। शाह साहब आप बात कर रहे हैं, अभी हम शायद से बात करते हैं, चूंकि ये इस प्रोग्राम में शामिल साथ साथ रेस जो इलेक्शन स्वीडन में हो रहे थे, ये अपने खामोशी से अपना काम करते रहे, और चूंकि आजकल वो दूसरी चीजों पे लगे हुए अपने काम के सिलसिला में, कार्बन स्टॉक हॉल में इस वक्त उनकी आवाज मुझे आ रही है, वो कहीं अपने साथियों के साथ गए हुए हैं, तो उनसे बात करेंगे जो ही उनके पास माइक आता है। तो मैं कमरान की तरफ चलूंगा। कमरान, अब आपको 630 के करीब पर्सनल वोट मिले हैं, तो ये वोट मिलने के बाद अब आप पार्टी पोजिशन क्या होगी आपकी?
4: जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि जैसे माशाल्लाह यहाँ पर हमारे ज़ुबैर साहब मतलब है, उनका बहुत अच्छा एक एक तजिया होता है, मैं उनको फॉलो भी करता हूँ, माशाल्लाह वो बड़े चैनल्स में भी उनकी होती हैं, एनालाइज देते हैं अपने। और फैसल साहब बहुत शुक्रिया आपका, इन्होंने बहुत साथ दिया है हमेशा, और हमेशा जो एक भाई फ्रेंड्स जैसे फ्रंट लाइन पे होता है एज ए जर्नल की तरह, वो फैसल मिर्जा साहब है, और शाहिद साहब बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने मेरे साथ कीप इन टच रहे जी। और शाह साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत एहसान हुआ है। मेरा पहली दफा था, मतलब इसमें मैंने कैंडिडेट एज ए सोशल डेमोक्रेट की तरफ से, तो जो बहुत से हमारे दोस्त और भाई थे, जो मुझे बहुत सारे मसले हुए यहाँ पर, वो ऐसे हुए कि वो जो हमारी यूरोपीय यूनियन के भाई थे, उनका फर्स्ट टाइम था वोट के लिए, तो हमने उनकी बहुत ज्यादा एक्सप्लेन की, उन्हें बताया कि वोट की अहमियत क्या है। तो फिर इंशाल्लाह वहां पर उन्होंने, मतलब है, हमने डिफरेंट जगह पे कॉर्नर मीटिंग की और एक्सप्लेन किया बहुत से लोगों के साथ, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह लोग निकले। और मैंने पहली दफा अपनी लाइफ में जो मालमो में यूनिटी के साथ और दिल के साथ लोगों ने माशाल्लाह आए और वोट डाला, मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ जी। रह
1: बहुत शुक्रिया कामरान। जुबैर भाई, आपने इन चीज़ों को देखा, आप लिखते भी हैं, चूंकि मीडिया के प्रोग्राम भी आप बनाते रहते हैं, तो और भी उम्मीदवार थे वो भी इलेक्शन में आए, दूसरी तंजीमात के लोग भी थे, तो अब ये जो कामरान को वोट मिले हैं, इनकी पार्टी पोजीशन में क्या क्या पॉसिबिलिटी हैं?
5: देखिए राजा साहब, इसके लिए सबसे पहले तो हमें स्वीडन के इलेक्ट्रो सिस्टम को जो है वो समझना पड़ेगा कि इलेक्शन यहाँ पर किस तरीके से काम करता है। अगर मैं मालमो को मद्देनजर रखकर कुछ हकायक बताना चाहूँ तो कुछ मामला यूं बनता है कि मालमो में या स्वीडन के अंदर तीनों इंतखाबात, यानी कि पार्लियामेंट जिसको रिक्सदाग कहते हैं यहाँ पर, फिर रीजन यानी कि हम अगर उसको अपनी जबान में कहें तो सूबाई निशिस्त होती है, फिर कम्यून यानी कि तमाम, यानी कि तीन के तीन इंतखाबात साथ होते हैं, ऐसा फैसल ने शुरू में भी बताया था। सामीन के लिए समझना बहुत जरूरी है कि स्वीडन में पाकिस्तान की तरह हलकों या शख्सियात की बुनियाद पर इलेक्शन नहीं लड़ा जाता, बल्कि यहाँ सियासी जमात को वोट डाला जाता है। पार्टी अपने काबिल और मंझे हुए सियासतदानों को टॉप 10 या टॉप 20 लिस्ट में रखती है, बाकी ईमानदार सफों में मौजूद उम्मीदवारों को लिस्ट में नीचे के नंबर दिए जाते हैं ताकि वो सब मिलकर पार्टी के लिए वोट जमा कर सकें। अगर तरजीही लिस्ट में पीछे मौजूद किसी उम्मीदवार ने इब्तदाई 10 उम्मीदवारों को बाईपास करना होता है तो उसके लिए जरूरी होता है कि वो जो पार्टी को वोट पड़ा उसके तकरीबन 5% उसको जाती वोट, जिसको पर्सोन रोस कहते हैं, वो हासिल करे। बड़ी पार्टियों में चूंकि ये 5% का हदफ हजारों वोटों पर मुश्तमिल होता है, जिसे हासिल करना एक इंतहाई मुश्किल काम होता है, और इन्हीं हिस्सों में मालमो के नतीजों को अगर हम देखें तो कुछ यूं है। मालमो में हमारे पास रिक्सदाग यानी कि पार्लियामेंट के लिए जो सोशल डेमोक्रेट्स की अगर हम बात करें तो उनको तकरीबन 61,724 वोट मिले हैं। अगर इन 61,724 वोटों का हम 5% निकालें तो तकरीबन एक उम्मीदवार जो के टॉप 10 लिस्ट में नहीं है उसको पार्लियामेंट के अंदर आने के लिए 3,087 जाती वोट चाहिए थे। तो हमारे दो पाकिस्तानी उम्मीदवार थे इस लिस्ट में, एक का नाम नजम मलिक है जो कि नंबर 17 पे था पार्लियामेंट की लिस्ट में, उसको तकरीबन 233 वोट मिले जो हतमी नतीजे आए हैं। फिर अगर बात करें मुनीर नियाजी की, वो सबसे लास्ट पे थे, 21 नंबर था, उनको 63 वोट मिले हैं पार्लियामेंट के लिए, जबकि एक शख्स को या एक उम्मीदवार को तकरीबन 3,087 का हदफ हासिल करना था ताकि वो पार्लियामेंट तक पहुंच सके। और यूं ये हम ये कह सकते हैं कि रिक्सदाग के लिए कोई भी उम्मीदवार पार्लियामेंट के लिए नहीं पहुंच सका और उस दौड़ से काफी दूर था। फिर अगर हम सूबाई की निशिस्त की बात करें तो सोशल डेमोक्रेट्स को तकरीबन रीजन इस कोने में 68,684 वोट मिले, यहाँ 5% के हिसाब से उम्मीदवार को तकरीबन 3,434 जाती वोट दरकार थे। और अब तक की जो मेरे पास मालूमात है उस लिस्ट के अंदर कोई पाकिस्तानी खास तौर पर मौजूद नहीं थे इन लिस्टों के अंदर सोशल डेमोक्रेट्स के। फिर बात करते हैं कम्यून की, जिसमें हमारे बहुत सारे पाकिस्तानियों के नाम थे। मालमो में म्यूनसिपलिटी में सोशल डेमोक्रेट्स को तकरीबन 64,700 वोट पड़े, यानी इब्तदाई सफों से हटकर लिस्ट में निचले नंबरों पर मौजूद उम्मीदवारों को काउंसलर बनने के लिए तकरीबन 3,235 जाती वोट की जरूरत थी। हमारे चारों पाकिस्तानी उम्मीदवारों की लिस्ट कुछ यूं है। नजम मलिक नंबर 22 पर थे, उनको 272 वोट मिले। मुनीर नियाजी जो है वो 48 नंबर पे थे, उनको 70 वोट मिले। फिर अमजद खान साहब जो के 56 नंबर पे थे, उनको 338 वोट मिले। और कामरान अनवर जो के नंबर 62 पर थे, उनको 630 वोट मिले। तो कुल अगर आप इसका जो हासिल कलाम करें वो कुछ यूं है कि कुल मिलाकर कोई भी पाकिस्तानी ना काउंसलर बन सका, ना सूबाई निशिस्त हासिल कर सका और ना ही पार्लियामेंट में जगह बना पाया। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है राजा साहब, हमारी दो बड़े अलमी है। सबसे बड़ी बात की जाए कि इसका निचोड़ यूं है कि हमारे यहाँ सिर्फ कम्युनिटी में ایک دوسرے کو ہرانے کا مقابلہ عروج پر رہا. الیکشن آتے ہی مختلف گروپس ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور سوشل میڈیا میں گروپوں میں گیما گیمی مچاتے ہیں. بس اس کے علاوہ کوئی خاص کام نہیں ہوتا, بالکل ویسے ہی جیسے پاکستان میں ہم معذرت کے ساتھ مرغے لڑاتے ہیں کہ کس کا ککڑ کتنا تگڑا ہے, اور پھر ساڑھے ککڑ دی جیت ہے کہ نعرے بجاتے ہیں, اور حالانکہ دراصل ہم نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا ہوتا. اگر ہم یہاں پر دو المیوں کی بات کریں تو سب سے بڑا ہمارا سیاسی جماعتوں کا المیہ ہے. سویڈن میں سیاسی جماعتوں کا جو سب سے بڑا المیہ وہ یہ ہے کہ کسی کی بھی تارکین وطن یا کسی بھی نمائندے کی نہ تعلیمی قابلیت دیکھی جاتی ہے, نہ اس کا کرمنل ریکارڈ یا بیک گراؤنڈ چیک کیا جاتا ہے, اور اسے لسٹ کے اندر شامل کر لیا جاتا ہے بطور امیدوار. پھر دوسرا, ہماری کمیونٹی کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے امیدوار ہمیشہ بڑی سیاسی جماعتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں, یعنی کہ سوشل ڈیموکریٹس یا ماڈریٹس کے پیچھے بھاگتے ہیں. وہاں 5% کا کوٹا اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ آپ کو ذاتی ووٹ 3,000 سے 4,000 ووٹ تک حاصل کرنا ہوتا ہے, جو کہ کوئی بھی امیدوار اس کو پورا نہیں کر پاتا. اگر ہم بات کریں کہ ہم سے 100 گنا بہتر سومالین کمیونٹی ہے, ان کے 5 نمائندے اس بار سویڈن کی پارلیمنٹ تک پہنچ گئے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے عقل کا استعمال کیا, چھوٹی سیاسی پارٹیوں کا انتخاب کیا جہاں 5% کا ذاتی ووٹ کا جو کوٹا تھا وہ کم تھا, یعنی کہ کچھ شہروں کے اندر ان کو 500 ووٹ درکار تھے, کہیں 600 پورا کر کے پارلیمنٹ تک وہ پہنچ گئے. اور ہم نورا کشتی سمجھ لیں کہ اس میں ہی لگے رہتے ہیں اور سوشل میڈیا پر اپنے نام کے آگے سویڈش سیاستدان لکھ کر پنڈ دے لوکانو پاگل بنا دے رہنے ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں, اگر میں کامران کی بات کر لوں, 630 اس کو کافی اچھا ووٹ پڑا, اور یہ ذاتی ووٹوں میں پاکستانی کمیونٹی میں تو کافی زیادہ تھا. لیکن اگر یہ کسی چھوٹی پارٹی کے اندر ہوتے, وینستر پارٹی میں ہوتے, اگر یہ ملیو پارٹی میں ہوتے, اگر یہ سینٹر پارٹی میں ہوتے, تو آج یہ کونسلر کی نشست کے لیے ایلیجیبل ہو جاتے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ سوشل ڈیموکریٹس کو کافی زیادہ ووٹ پڑا, اور اس کا 5% ووٹ حاصل کرنا ذاتی طور پر بڑا مشکل کام ہے. ہم گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں تو وہ بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. البتہ یہ ہے کہ کامران کی جو پارٹی کی جو پوزیشن ہے, جو لسٹوں میں ان کا نام ہے, وہ ضرور آگے آئے گا, اور ہو سکتا ہے کہ ان کو پارٹی جو ہے وہ ہمارے یہاں نیمدن ہوتے ہیں, مطلب کچھ گروپس ہوتے ہیں سیاسی جماعتوں کے, کمیٹیاں ہوتی ہیں, اس کے اندر ان کو کسی نہ کسی جگہ پر بٹھایا جائے گا. البتہ وہ گورنمنٹ کا عہدہ تو نہیں ہوتا, لیکن ان کے چانس یہ ہیں کہ اگلے الیکشنوں میں یہ کسی اچھی پوزیشن پر ہوں گے, یعنی کہ ان کا نام لسٹوں میں اوپر ہوگا, اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقتوں کے اندر ان کو کونسلر کی نشست کے لیے ایلیجیبل قرار دیا جائے. جی
1: جی کامران, آپ دیں جواب. جی جی,
4: میں تھوڑا سا ایک دو تین چیزیں بس, ایک ہے میرے جو میں نے زبیر صاحب کی جو کنورسیشن سنی ہے, میں تھوڑا سا ڈس ایگری بھی ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی کمیونٹی نے بہت یونٹی دکھائی ہے, اور میں ان کا تھینک فل ہوں. ووٹ انہوں نے ڈالے ہیں, وہ لوگ نکلے ہیں, اور ہمیشہ جیسے میں نے دیکھا ہے انہوں نے ساتھ دیا, دل کے ساتھ ساتھ دیا. اور پھر لوگوں کی اپنی اوپینین ہے, جس کو ووٹ ڈالے اس کی ریسپیکٹ ہونی چاہیے. نمبر ایک بات. نمبر دو بات میں یہ بتاؤں, جو انہوں نے 5% والی بات کی ہے, یہ بالکل درست بات ہے, لیکن اس 5% میں سوائے ہمارے 66 جو تھے وہ لسٹ کے اندر تھے, میں اس کی بات کر رہا ہوں بلدیاتی الیکشن کی, اس میں صرف اور صرف جو 5% عبور کیا ہے وہ ہے کترینا نے. باقی جو 65 جو پورے لسٹ میں لوگ تھے, انہوں نے کسی نے بھی وہ 5% جو 3000 سمتھنگ ہے اس کو پروف نہیں کیا. لیکن اس میں یہ دو بات ہوتی ہے کہ آپ جیسے بیس صاحب نے بھی اس کو ایکسپلین بھی کیا پہلے, کہ یہاں پارٹی کو ووٹ دیا جاتا ہے. ان کی بات سے بالکل ٹھیک ہے, یہاں پر پارٹی کو ووٹ دیا جاتا ہے. تو یہ ہوتے جب پارٹی کے اندر جو پہلے والے جو ہوتے ہیں, جو ان کے کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں لسٹ میں, وہ ان کے لیے جیسے 25 بھی ہو سکتے ہیں, 30 بھی ہو سکتے ہیں, تو وہ بالکل پریورٹی ان کی نمبر ون ہوتی ہے پارلیمنٹ میں. لیکن آپ کو وہ دیکھ بھی سکتے ہیں, اس میں بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں, ایسے طرح انہیں کہتے ہیں ریپلیس. اگر ان میں سے کوئی بندے ویسے 25 میں سے کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے یا چھوڑ دیتا ہے, تو جو اس کے نیچے والے ہوتے ہیں نا, وہ پارٹی کی سواب دی دی ہوتی ہے کو وہ اوپر اس کو لا سکتے ہیں. اور بالکل یہ بات بھی ان کی بالکل ٹھیک ہے کہ بھائی جیسے کوئی بندہ اگر ووٹ مطلب ہے لے لیتا ہے اور پھر اینڈ میں اس کا لسٹ میں نام بالکل اوپر چلا جاتا ہے. نمبر ایک. نمبر دو بات یہی ہے کہ سوشل ڈیموکریٹ واقعی اس کو تقریباً اراؤنڈ 65,000 اس کو ووٹ ملا, اور اس کو مشکل ہے یہ گول اچیو کرنے کا. لیکن میں یہاں پر تھوڑا سا, اور وہ بالکل انہوں نے ایک میتھمیٹک طریقے سے بات بتائی ہے, लेकिन जो मकसद है ना वो ये नहीं है कि हम कोई मतलब है, वो होता है कि आप किस पार्टी की आइडियोलॉजी और किस पार्टी के जो उसके मतलब है जो उसकी वो है रूल्स है ग्राउंड रूल्स उनके साथ आप एग्री हैं। सोशल डेमोक्रेट के जो मैंने मंशूर पढ़ा है जो उनके साथ मैं एग्री हूँ जो चीजें हैं वो मैं अपने दिल के साथ एग्री हूँ, और दूसरी पार्टी जो है वो भी एक एक किस्म की जो उन्होंने नाम लिया वेस्टर पार्टी हो गया या फिर उन्होंने एक ग्रीन पार्टी जिसको मिलियो पार्टी कहते हैं और सोशल डेमोक्रेट ये हैं तो बिल्कुल लेफ्ट विंग पार्टी। लेकिन मैं जो समझता हूँ सोशल डेमोक्रेट का एक बहुत एक उनका हिस्ट्री रह चुकी है स्वीडन बनाने में और वो उनके साथ है, लेकिन अब इनशाला अब जो मुझे वोट मिले हैं तो हम इनशाला देखते हैं कि पार्टी से हम बिल्कुल बात करेंगे तो अब देखते हैं वो क्या हमें कहते हैं। जी रह साहब
1: पार्टी क्या कहती है फैसल आप देखें कहीं यहाँ मालमो में चूंकि आप नौजवान हैं लोगों से बात करते रहते हैं तो ये अपना शेख साहब थे उन्होंने अपना एक मुश्तरका उम्मीदवार बनाया था वो भी सोशल डेमोक्रेट के थे तो उनको वोट जो है वो 3 से ऊपर पड़े तकरीबन बता रहे थे जुबैर भाई बता रहे थे, तो क्या इसमें भी कहीं सियासत में पीटीआई तो नहीं आ गई?
6: ये राय साहब अभी जुबैर भाई ने जो आपको बातें की हैं मैं तकरीबन उनसे ना मैं 99% जो है ना मैं उसे एग्री हूँ, लेकिन वो फिर वही बात आ जाती है जमहूरियत है, जमहूरियत जैसे कामरान ने कहा है कि हर किसी को हक है, वो पहले तो इस पे लगे रहे कि कामरान ही बैठ जाए जी कामरान इलेक्शन ही ना लड़े एक कैंडिडेट लड़े, यार सबका अपना हक है, कामरान ने भी अपनी पार्टी में मेहनत की है लोगों में भी मेहनत की है, जा रहा है उसको पहली बार चांस मिला है, उसको पिछली बार भी इस पार्लियामेंट के लिए टिकट मिल रहा था लेकिन इसने नहीं लिया क्योंकि हमारे कम्युनिटी इतनी नहीं है ना इतनी वोट है ना इतनी पहचान है, अभी इसको 6-7 साल हो गए हैं पार्टी के अंदर, तो इसलिए जो है वो हर किसी का जो है वो हक है। बाकी जो बात रह गई है जुबैर भाई ने जो बात की है वो बिल्कुल ठीक बात की है कि इधर 5% वाला जो सिस्टम है उसके पर, लेकिन किसी ने मीट भी नहीं किया, एक जो उम्मीदवार है मेयर की उसने तो इसको मीट कर लिया बाकी तो ना होने के बराबर है, तो ये तो पार्टी ने फैसला करना है अभी कोई बैठते हैं जारी बात है पार्टी भी अब देखेगी, एक बंदे ने टॉप 10 में वोट लिए हैं उसमें चले अगर सीट नहीं निकली तो उसको कोई ना कोई वो ओहदा तो देने की देंगे और कामरान भी इसके लिए मेहनत करेगा हर सियासतदान का ये हक है। तो दूसरे नंबर पे इतफाक मैं तो समझता हूँ कि वोट तो मिले हैं इस बार पहली बार पाकिस्तानी निकले हैं, पिछली बार जुबैर भाई ने खुद इलेक्शन लड़ा है जुबैर भाई को भी पता है थोड़ा सा वोट पाकिस्तानियों को निकालना मुश्किल होता है, लेकिन इस बार मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी निकले हैं उन्होंने पहली बार वोट दिए और मैं मुझे इस बात का भी पता है मैं 10-15 वोट तो मेरे अपने जानने वाले वोट जो है वो मैं समझता हूँ कि वो हमारे गिनने कामरान के गिनने नहीं हुए क्योंकि उन्होंने वोट ही गलत डाल दिए, ये कामरान इस चीज का गवाह है। हमारे पास जब मेरे पास तस्वीरें आई तो मैंने कामरान के साथ शेयर की तो कामरान
1: सवाल था कहीं यहाँ पीटीआई या कोई दूसरी जो पाकिस्तानी सियासी जमातों का रोल तो नहीं आ गया?
6: खैर साहब इस तरह बेसिकली तो नहीं था लेकिन बनाने की कोशिश की गई है हमारे कुछ भाइयों की तरफ से, लेकिन पर्सनल इस तरह ओपनली मीडिया पर तो नहीं हुआ लेकिन पर्सनल टेलीफोनों पर लोगों को ये चीजें कही गई हैं कि कामरान ये जी देखें जी ये मुस्लिम लीग नून के प्रोग्राम में जाता है इसका तल्लक है, इसके साथ फैसल है वो मुस्लिम लीग के साथ चलता है, इसके साथ नईम है वो मुस्लिम लीग के साथ चलता है, तो आप इनको जो है ना वोट ना दें ये मुस्लिम लीग के इस प्रोग्राम में था ये इस प्रोग्राम में था, इस तरह की बातें हुई हैं वोटरों ने हमें बताया है कि इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत गलत चीज है ये होनी नहीं चाहिए इससे नाप करना चाहिए, लेकिन वो जो है कुछ मैं नहीं कहता कि हमारे जो अंकल हैं अमजद खान उन्होंने खुद इस बात को शायद ना किया हो लेकिन उनके जो साथ लगे हुए थे सपोर्टर या उनके जो उनको इलेक्शन लड़ा रहे थे उन्होंने ये
1: आपके पास कोई सबूत है?
6: जी जी मेरे पास सबूत है इस चीज का और वो हमारे मेरे भी जानने वाले हैं वो आपके भी जानने वाले हैं कामरान के भी जानने वाले हैं जुबैर भाई के भी जानने वाले हैं, उनको 2-4 बंदों तो मैं अगर कहते हैं सबूत के तौर पे तो वो मैं आपको आपके जानने वाले भी हैं तो वो आपको बता भी सकते हैं, और अगर आप
1: क्या
6: कहते हैं तो मैं
1: कंफर्म भी आपको करूंगा। कुरान का भी कोई रोल था
6: अदारा मनाजिल कुरान? दरअसल राय साहब अगर सीधी बात करें तो उन्होंने एक नॉर्मल न्यूट्रल सा रोल प्ले किया है, लेकिन उनकी जो पहले दुआ हो गई थी क्योंकि सदर है जनाब मनाजुल करान इंटरनेशनल स्वीडन के हमारे भाई शेख, हमारे अंकल हैं शेख जाद, उनके बेटे हैं बाबर शेख साहब, तो उनका जो फैसला है, और ऐसे बात है कि शेख जाद साहब और अंकल अमजद ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो उनका जहरी बात है वो बनता था, तो उन्होंने वो पहले जो है मनाजुल करान की जो है सपोर्ट वो ले ली थी, तो मनाजुल करान ने जो है वो सपोर्ट उनकी की है, लेकिन वो इस तरह कोई ओपन बयानबाजी नहीं की उन्होंने,
1: बयानबाजी नहीं की। शाह साहब आपने सारा कुछ सुना के हम यहाँ रहते हुए भी जो है अपनी पाकिस्तान की सियासी जमातों को बीच में ले आते हैं, क्या ये फायदा मंद है शाह साहब?
3: मैं सबसे पहले जुबैर साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि बहुत अच्छा तजिया इन्होंने किया, और अगर यही जाकर वहां सेमिनार में लोगों को एजुकेट करे तो ये कामरान वाला प्रोफेसर साथ मिलकर लोगों को अगले जो 4-5 साल के बाद इलेक्शन है उनके लिए काफी लोगों को प्रमोट कर सकते हैं, काफी सिखला सकते हैं। ये जो बात की है ना फैसल ने अभी कि जी फलाना शेख फलाना आदमी फलाना, ये अपने पांव पे खुद कलाड़ी मारते हैं। ये डेनमार्क के भी इसी तरीके से है और उसके नेविया में भी और यूरोप में भी इसी तरह की बातें हैं। ये इन लोगों को ये सोचना चाहिए कि एक आदमी खड़ा है, एक पार्टी खड़ी है, उस पार्टी का मंशूर क्या है, क्या वो आने वाले फ्यूचर में हमारे बच्चों के लिए हमारे लिए एक बेहतर मौसम भी ला सकते हैं। तो इवन उस आदमी को आप पसंद करते हैं या नहीं करते उसको आप वोट डालें। आप ये ना कह रहे जी कि हम फलानी मस्जिद में जाते हैं, हम फलानी जगह जाके नमाजें पढ़ते हैं, हम फलानी जगह जाके नमाजें पढ़ते हैं, तो आप जो है वो हमें हम इसको पसंद करते हैं इसको नहीं पसंद करते, ये गलत चीज है। सियासत देखें जब आप इस तरह से तलक रखते हैं तो जो बड़ी पार्टीज होती हैं जैसे सोशल डेमोक्रेट और दूसरी बड़ी बड़ी पार्टियां कंजर्वेटिव द्वारा, तो इसकी बकायदा सिक्योरिटीज होती है। यहाँ पे डेनमार्क के अंदर भी सिक्योरिटी के अदारे जो है वो नजर रखते हैं बकायदा ऊपर जो है हाई लेवल पे। वो मैं वेंसर में बैठा रहा हूँ यहाँ पे हाई लेवल पे, तो मुझे पता है कि वो ऐसी रिपोर्ट्स देते हैं कि आपके कैंडिडेट जो हैं इनकी क्या क्या मसरूफियात है, कहाँ कहाँ ये वो सारे नजर रखते हैं, ये रिपोर्ट जाती है पार्टी के पास, तो उससे कैंडिडेट का पता लगता है आगे लेके। सबसे ज्यादा एक्टिव वो बंदा पार्टी में होता है, बेशक वो नया क्यों ना आए, जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को मोटिव करेंगे सियासत है क्या और मैंने सियासत को किस बेस पर लड़ना है और अवाम को किस तरह इकट्ठा करना है। सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम हमारी ये है कि हम उस इलाके से इलेक्शन लड़ने की कोशिश करते हैं जहाँ पे गेट होता है, जहाँ पे बहुत ज्यादा फॉरनर रहते हैं, वहां से हमें अपनी जात के लिए तो वोट मिल जाता है, लेकिन वहां पे आपको निशानदेही की जाती है कि इसके अंदर जो वोटर सपोर्टर्स हैं वो किस किस्म के, वो किस मेंटेलिटी से तल रखते हैं, उनके नजरियात क्या है, ये सब कुछ जो है ये होता है और ये असर करता है कैंडिडेट के ऊपर। तो लिहाजा हमें बहुत कोशिश ये करनी चाहिए कि हम पहले से ही, मैं तो कामरान को भी ये कहूंगा कि आपके साथ इतनी अच्छी टीम है, आप पहले से ही लोगों को बुलाएं, आप मसाजिद में जाएं, दूसरी जगह जाएं, उनको कहें कि मैं किसी एक मस्जिद का नहीं हूं, मैं किसी एक फिरके का नहीं हूं, मैं सबके लिए काम करना चाहता हूं, ये आए जिसको प्रॉब्लम है हमारे साथ, और लोगों के साथ सेमिनार करें, कम से कम महीने में एक दफा आप ये कोशिश करें कि आप ये नहीं कि लीडरान को बुलाएं। देखे लोग जलस होते हैं जब आप मुख्तलिफ जमातों के लीडरान को बुला लेते हैं, आम आवाम को वो कहते हैं जी क्या हम इस काबिल नहीं है, आप आवाम को बुलाएं, उस इलाके के लोगों को जाके मिले, उनमें पाकिस्तानी भी हो, दूसरे ममालिक के भी लोग हों, स्वीडिश भी हो, आप उनको वेलकम करें और अपनी अपनी जो आपकी सियासत है उन पे जो है उनको समझाएं, उनके सवालों के जवाब दें, वहां वो कितने भी क्रिटिकल सवाल क्यों ना हो, फिर जाकर आप जो है एक पार्टी के अंदर मजबूत पोजीशन रखते हैं। अब मैं ये समझ सकता हूँ कि कामरान जो है इससे बड़ी अच्छी पोजीशन ली है, लेकिन ये पार्लियामेंट के नहीं जा सकता क्योंकि स्टॉकहोल्म बहुत दूर है, तो पार्लियामेंट के अंदर अगर ये नजदीक होता तो ये वहां के अपनी पार्टी के जरिए वहां के डिफरेंट उल्वेल के अंदर कमेटियों के अंदर बैठ जाता, तो वहां पे एक तो पार्टी पोजीशन मजबूत हो जानी थी, दूसरा ये एक बहुत बड़ा सियासतदान बन के उभरता, क्योंकि जो असल में जो पार्लियामेंट की कमेटीज होती हैं वही असल में यूनिवर्सिटी होती है, स्कूल होता है, जहां से आप सारा कुछ पार्लियामेंट के अंदर जो कुछ हो रहा था, जो कानून बनते हैं वहां, उसको सही तरीके से सीखकर आप आगे आते हैं। तो मैंने अगर कुछ थोड़ा बहुत सीखा है तो मैंने भी ये 7.5 साल जो मैं कोपेनहेगन के अंदर पार्लियामेंट के कमेटियों में बैठा रहा हूँ दिन रात वहां पे, क्योंकि वहां पे तो रात को होती है सारी कमेटी की।
1: आपने बड़ी जबरदस्त नसीहत, बड़ा जबरदस्त आपने बताया। कमरान आप जवाब दें कि शाह साहब की आपको, शाह साहब ने आपको नसीहत की है, आप क्या कहेंगे?
4: जी जी शाह साहब, बिल्कुल सही आपकी बात है और ऐसा ही होना चाहिए। मैंने तो सबके मैं थैंकफुल हूँ। मैंने कभी किसी को कोई कोई वो नहीं कहा कि कोई ग्रुप बंदी मैं अगेंस्ट हूँ, और हमने सबको साथ मिला के ही हमने हमने मतलब आप जाना है आगे। और मैं बता दूं, मैं पार्लियामेंट का नहीं हूँ, मैं एक बल्दियाती के लिए कैंडिडेट हूँ, नंबर है। नंबर दो, बात थोड़ी सी मैं एक्सप्लेन कर दूं एक बात और, जो जो 5% का है ना जुबैर साहब ने, तो यहाँ पर जो एक होता है अस्त्रा और एक वेस्त्रा मालम, मतलब है दो मालम है जिसको आप मशरकी या मगरबी मालम कह सकते हैं। तो वो जो 5% है वो 2.5 उधर हो जाती है, 2.5 यानी 3000 समथिंग में, तो 1500 समथिंग, 1500 समथिंग भी अगर आप वोट ले सकते हो एक हिस्से से मालमों से, वो भी एक एलिजिबल कैंडिडेट सिटी काउंसिलर अकॉर्डिंग टू पर्सनल वोट से बन सकता है। तो नंबर एक बात, और नंबर दो बात यह है, बिल्कुल हमें एक होना चाहिए। और मैं इंशाल्लाह आपके सबके साथ बैठ के कहता भी हूँ, और मैं फिर कोशिश भी करूंगा और इंशाल्लाह करूंगा भी सही, कि सबको एक पेज पे लेना है। हमने मफाहमत की एक मैंने इंशाल्लाह पॉलिसी चलनी है, हमने कोई किसी को मतलब डिवाइड एंड रूल नहीं करना किसी पार्टी बेस पे, खुदा ना खासा रिलीजियस बेस पे, खुदा ना खासा या किसी अपनी कोई और बेस पे। हम देखें जो, और स्पेशली स्वीडिश अगर हो या और भी हमारे मुल्क के भाई हैं, फॉर एग्जाम्पल अफगानी भाई हो, अरबिक भाई हो, सोमालिया कोई और भी है, जो स्वीडिश भाई भी है, तो सबको हमें एक लेना पड़ेगा। ये एक सियासत, इसकी मफाहमत की सियासत होनी चाहिए और हम सबको एक होके आगे स्टेप लेना चाहिए। जी रस,
3: कामरान मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। देखिये बेटा, आप मेरे बच्चों के बराबर हैं, मैं तो आप 77 का हूँ। सबसे जरूरी बात यह है कि जो आपके कम्यून के अंदर, आपके इलाके के अंदर जो कानून बनना जा रहे हैं, या जो आपकी ये छोटी सी एक कम्यून की पार्लियामेंट होती है, उसके अंदर जो बजट पेश होता है या उसके अंदर जो चीजें आगे बनने वाली होती है, तो वो बहुत जरूरी है कि वो आप अपनी पार्टी के जरिए वहां बैठे और सीखें और उसको बाहर लाके पब्लिक को बताएं, आम आवाम को बताएं, वो आपसे राजी हो या ना हो, लेकिन आप उनको मीडिया पे हर जगह पे लाके बता
1: सकते हैं। आपने बड़ा अच्छा किया, इसको यादानी करा दी। अदनान ने हमें ज्वाइन कर लिया, फिर आखिर में जुबैर साहब के पास चलते हैं। जी अदनान भाई, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अदनान, आपने भी इस इलेक्शन को देखा, आप भी मालूम गए, आप रिजल्ट सामने आ गए, आपका तजिया क्या कहता है?
7: राजा साहब, ये इलेक्शन तो कहते हैं कि किस्म का हो तो गया, मगर इसमें टाइम लगेगा गवर्नमेंट बनने में, क्योंकि मसला ये है कि जो दो पार्टियां ऐसी हैं जिनके आपस में कुछ डिफरेंस हैं, तो अब ये देखते हैं कि आगे कैसे जाता है। क्योंकि जिस तरह पहले शुरू में इलेक्शन था, उस वक्त तो सोशल डेमोक्रेटोगी का कहते हैं ना, एक किस्म की काफी बड़ी लीड थी, मगर जब इलेक्शन क्लोज आता रहा तो वो 176 to 173 हो गया। उसमें ये है कि दो पार्टियां ऐसी हैं कि जिनका आपस में थोड़ा डिफरेंस है, और उसमें से एक पार्टी है जो क्या कहते हैं, चाहे तो तब्दीली भी कर सकती है, जो पहली गवर्नमेंट है उसके साथ भी मिल सकती है। तो ये करीबन मेरे ख्याल से उतना ही टाइम लगेगा इनको बनाते हुए जितना डेनमार्क में लग गया था। ये करीबन दिसंबर तक, नवंबर दिसंबर तक जाएंगे, उससे पहले ही पता चलेगा कि कौन सी गवर्नमेंट बननी है नेशनल प्लान पे। तो ये है कि तब्दीली आएगी, कुछ चीजों में चेंजेस आएंगे, और फिर देखते हैं कि क्या होता है।
1: सुबैर भाई, आपने सबकी बातें सुनी, आखिर में इसको किस तरह क्लोज करते हैं मीडिया के हवाले से?
5: देखें, अगर हम इसको समुद्र को कूजे में बंद करें तो बात वही आती है, सबने अपनी अपनी राय दी, और यकीनी तौर पर बिल्कुल जो हमारे सीनियर भी यहाँ मौजूद हैं, और उन्होंने ये कहा कि ग्रुप बंदियां पाकिस्तानी सियासत, उसको साइड पे रख के जो है हमें ऐसा लाए अमल तैयार करना चाहिए कि चलें, अगर हम, हमारे पास एक कैंडिडेट कम्यून का है तो تو اس کو کلیکٹیولی کمیون کے طور پہ سپورٹ کیا جائے. اگر دوسرے کوئی سیاستدان کھڑے ہیں تو ان کو کسی اور کیٹیگری میں, ریجن میں, تیسرے کو پارلیمنٹ میں. تو اس طریقے سے ہمارے تین مختلف جو امیدوار ہیں وہ تین مختلف کیٹیگریز کے اندر ووٹ بھی حاصل کر سکتے ہیں اور ہم ساتھ مل کے کام بھی کر سکتے ہیں. مگر ہمارا عالمیہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر کسی کو ووٹ دلانے کی تحریک سے زیادہ ووٹ نہ دینے کی تحریک جو ہے وہ سرگرم ہوتی ہے, اور مختلف گروپس مل کے جو ہے وہ کسی ایک کو ہمیشہ سے اسی طریقے سے کرتے ہیں کہ اس پہ پریشر آتا ہے کہ وہ اکیلا بندہ رہ جاتا ہے, اور سات آٹھ لوگوں کا جو ٹولہ ہوتا ہے اس کو اپنا گروپ کہتے ہیں. وہ ہماری کمیونٹی کے اندر یہ اگر چیزیں ختم ہو جائیں اور مخالفتیں اور منافقتیں ختم ہو جائیں تو یقینی طور پر اچھے رزلٹ آئیں گے. اور میں کامران کی اس بات پہ بالکل جو ہے میں آمادہ ہوں کہ ہمیں صرف پاکستانی کمیونٹی کو فوکس نہیں کرنا چاہیے, ہمارے یہاں پر دوسرے بھی دیگر مسلم کمیونٹیاں ہیں ان کو بھی فوکس کرنا چاہیے تاکہ ووٹ بینک زیادہ ہو. ہماری کمیونٹی اگر یہاں پر 6,500 پاکستانی معلوموں میں تقریباً رہ رہا ہے تو ہر کسی کے پاس شاید پارلیمنٹ کا حق نہیں, وہ کمیون میں اور ریجن میں ووٹ دے سکتے ہیں. تو ہم ان کو باور کرائیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے اپنی جو وہ پرسوں روز جس کو کہتے ہیں کینڈیڈیٹ کو ووٹ دینے کی قابلیت اس کو بڑھائیں. ہمیں گراؤنڈ لیول پہ جا کے ان کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا کہ پرسن ووٹ کیا ہوتا ہے اور کیسے ڈلتا ہے, تاکہ الیکشن والے دن جب وہ بندہ اکیلے جاتا ہے ووٹ دینے کے لیے اس کی کوئی رہنمائی نہیں کر پاتا تو ووٹ ہمارا ضائع ہو جاتا ہے. ضائع اس صورت میں ہوتا ہے جاتا پارٹی کو ہے, لیکن ہمارے جو پرسنل کینڈیڈیٹس ہیں ان کو ووٹ نہیں پڑ پاتے. تو کلیکٹیولی جو ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے, اور یہاں موجود فیصل بھی یہاں موجود ہیں جو معلوموں میں رہے ہیں, اور ہمارے ساتھ کامران بھی ہیں, تو یقینی طور پہ ان کی ٹیم جو ہے وہ آگے کام کرے گی اور لوگوں کو یکجا کر کے اور ووٹ حاصل کرنے کے لیے کوشش کرے گی. امید یہی کی جاتی ہے کہ انشاءاللہ اگلے آنے والے الیکشنوں کے اندر پاکستانیوں کی جو ہے وہ پوزیشن مضبوط ہوگی اور اسی طریقے سے سینٹر لیفٹ پارٹیاں آگے چلتی رہیں گی. جی
1: سب مہمانوں کا بہت شکریہ, آپ نے چھٹی والے دن سب نے اپنا قیمتی ٹائم دیا, آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ دوسرے پروگرام میں دوبارہ شامل ہوں گے. سبان یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام تھا جو سیاسی بھی تھا, گپ شپ کی شکل میں تھا, انفارمیشن کے مطابق تھا. لیٹسٹ انفارمیشن آپ کو ملی, کس طرح الیکشن ہوئے, کس طرح ووٹس ڈالے گئے, کس طرح آگے ہونے جا رہا ہے. زبیر صاحب کا تجزیہ بڑا زبردست تھا, شاہ صاحب نے نصیحت کی نوجوانوں کو, اسی طرح عدنان نے بھی اپنا حصہ ڈالا, فیصل نوجوان ہے انہوں نے بھی اپنا طریقہ کار بتایا, اور باقی کامران جو امیدوار تھے انہوں نے بھی اپنے حصے کی باتیں کی, اور اس میں آخر میں جو ہمیں نظر آیا سب بات اتفاق اور پیار محبت کی کرتے ہیں.
2: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے, اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے, آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے. سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں.
1: اس وقت ہمارے ساتھ سٹی کونسل کے کوپنہیگن پارلیمنٹ کے جو ہے جو ہوتی ہے یہ پارلیمنٹ ہی ہوتی ہے, چھوٹی سی پارلیمنٹ ہوتی ہے کمیون کی جو ہوتی ہے, یہ کوپنہیگن کی ہوتی ہے, شاید اس کو سٹیٹس ملا ہوا ہے. یہ نوجوان ہے, یہ ہمارے پارلیمنٹیرین ہے جو کوپنہیگن کمیون کے پارلیمنٹیرین ہیں, تو جسے سٹی کونسلر کہتے ہیں. اشم آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں.
0: جی انکل بہت شکریہ, سب کو میری طرف سے بہت بڑا سلام.
1: اشم ہم ذرا تعارف کراتے ہیں تو چھوٹے ہیں تو بڑے چھوٹے میں بات کرتے وقت تھوڑی سی جو ہے نا وہ روانگی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو کیا خبریں ہیں, بجٹ پاس ہو گیا ہے, ٹاؤن ہال میں کیا شور پڑا ہوا ہے؟
0: جی الحمدللہ انکل بہت شکریہ, جب سے ہمارا انٹرنس ہوا ہے سٹی کاؤنسل میں آپ یقین کریں لوگ شوق میں ہی رہے ہیں, کیونکہ ہم نے اپنا پوزیشن ایک کافی سٹرونگ حد تک ہم نے اپنا رکھا ہے. اینڈ پہلے تو سکندر بھائی نے کافی زور سے ہمارے کیا میں آواز بلند کرنے کی کوشش کی, اب میں آ گیا ہوں تو پھر آپ یقین کریں بہت زیادہ کیا چرچے ہو رہے ہیں سٹی کاؤنسل میں, اینڈ ہم تو لگے ہوئے ہیں کام پہ سنس ڈے ون. ابھی تو ہمارا بجٹ کا سیکنڈ فیز کیا ابھی مکمل ہو گیا ہے, الحمدللہ کافی اچھا ہویا ہے. لیکن ہم نے میک شور کیا ہے کہ جن لا بل سے ہم سخت کیا میں ڈسٹنس لیتے ہیں ان کو ہم نے ہائی لائٹ کیا اور کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے اور اس کو ہمیں چینج لے کے آنا چاہیے. تو انکل آپ دیکھیں, آپ لوگوں نے ہمیں ووٹ دیے ہیں, آپ لوگوں کے لیے اگر ہم کام نہ کریں اور ہم اپنے کیا جو پرنسپلس کے خلاف اگر ہم کام کریں تو فائدہ نہیں ہے. ایون دو کہ آپ یقین کریں جب ووٹنگ آئی ہے پارکنگ کے بارے میں, میں وہاں اکیلا ہی تھا آلموسٹ کئی کیا لا بلس میں جہاں میں نے کہا کہ نہیں कोपेनहेगन में हमने मेक श्योर करना है कि पार्किंग के हालात बेहतर हो। और ये आप लोगों ने क्या मैं संडे एंड वीकेंड का पार्किंग का आपने हटाया है, फ्री पार्किंग, इसको आपको री इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली सिर्फ हमने क्या मैं वोट किया था फ्री पार्किंग के लिए वीकेंड्स में एंड कंसर्न से उन्हें, बाकी की बाकी पार्टियों ने कहा कि ये हम री इन्फोर्स नहीं करेंगे। तो वो इस बार नहीं हुआ, लेकिन इंशाल्लाह हम अगली दफ़ा भी कोशिश करेंगे। और हमारी कोशिश यही होगा कि हम ऐसे क्या हालात बनाएं जहाँ जो लोग कोपेनहेगन के हैं वो आसानी से गाड़ी भी चला सके, पार्क भी कर सके, एंड उनके हालात थोड़ा सा हम इतना सख्त ना करवाएं।
1: देखिए अशम, बजट तो पास हो जाएगा तो उन्होंने रखे हुए हैं 77 मिलियन जो रखे हुए हैं पार्किंग के लिए या के खूबसूरती के लिए, सब्जाजात के लिए रखे हुए हैं, ये बजट क्या काम करेगा?
0: अंकल अभी बात यह है कि कोशिश तो उनकी है कि हर जगह वो क्या हम कवर करें, हमारी ऑब्वियसली कोई और फोकसेस है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि जो आपको वेव नज़र आ रहा है इस्लामोफोबिया का, सख्ती का, ये आपको लोकली भी क्या मैं नज़र आ रहा है कि इस पे यहाँ भी एक फैक्ट है। अब आप ये देखें, ऐसे 3 बिल्स थे जहाँ हमने एसएफ़ी खान कहा कि हम सख्ती से यहाँ से क्या मैं इसके मुखालफ है। एक तो ये है कि जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस जो फेनिंग है उन्होंने कहा है कि क्या हम चाहते हैं कि स्विमिंग क्लासेस हो जहाँ

0: एक तो ये बिल था, दूसरा बिल ये भी है कि उन्होंने कहा है कि जिन ऑर्गेनाइजेशंस को हम पैसे देते हैं, अब फॉर एग्जाम्पल एक मस्जिद है, उन्होंने अपनी एक फाइनिंग बनाई है जहां वो कि हम कम्यून से पैसे भी लेते हैं, कि इनको हमने सबको इन्वेस्टिगेट करना है और हमने देखना कि किस चीज के लिए अपना पैसा यूज
1: क्या ये
0: करते हैं।
1: मसाजिद को पैसे मिल रहे हैं उनकी फाइनिंग को?
0: कोई मस्जिद हैं जिनको पैसे मिल रहे हैं कम्यून से, अब उन्होंने एक मेंशन किया है एग्जांपल कि मुझे लगता है नॉर्वेस्ट में एक बॉस्नियन मस्जिद है, डेनिश बॉस्नियन मस्जिद, कि इनको पैसे मिलते हैं और वो चाहते हैं कि अब हम इन्वेस्टिगेट करें कि किस किस चीज़ पे ये पैसे लगा रहे हैं और इनको हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं या नहीं। तो ये भी बजट का ही हिस्सा था कि हमने अब पैसे लगाने हैं मसाजों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जिसमें हमने भी क्या हम इसके खिलाफ क्या हम वोट डाला है।
1: नहीं तो मसाजिद में एक्टिविटीज़ होती हैं, बच्चे खेलते हैं, बच्चे जाते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, उनके मैच हो रहे हैं। मैं भी कल एक मैच में गया हुआ था, ये मस्जिद वाले बच्चे खेल रहे थे मुख्तलिफ जगहों पर, और ये ब्रॉन्डबी में था, ब्रॉन्डबी के जो फुटबॉल ग्राउंड में मैच हुआ था।
0: और अंकल होने चाहिए, क्योंकि इसी तरीके से आप लोगों को एक्टिव कराते हैं और आप लोगों को अट्रैक्ट करते हैं क्या मैं कि वो भी मसाजिद की जो सोसाइटी जो बनी है कि उसका एक हिस्सा लें। एंड ऑब्वियसली जब आप ऐसे एक्टिविटी करते हैं तो कम्यून आपको ऑफर करता है कि हम आपको पैसे देना चाह रहे हैं तो आप और से और ऐसे एक्टिविटी
1: राइट,
0: कराएं, लेकिन
1: तो
0: अब
1: अशब
0: वो
1: आप लोगों को स्पेशली फ्री ग्रोने को क्यों तनकीद का निशाना बनाया जाता है? मीडिया इन पे लिखता है और सिटी काउंसिल में भी आपकी डिबेट होती है, बहस होती है, और ठीक है ये जमहूरियत का हिस्सा है, लेकिन किसी को टारगेट तो नहीं करना चाहिए।
0: नहीं, मेरे हिसाब से मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि हमें इतना ज़्यादा टारगेट क्यों कर रहे हैं। हाँ ये है कि हम क्या मैं हमारे पे कोई ऐसे रिस्ट्रिक्शन नहीं है जो बाकी पार्टियों के पे है अंकल। अगर हम मानते हैं कि ऑब्वियसली लोगों को अपने राइट्स मिलने चाहिए और अगर आप क्या मैं अपना इस्लाम प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो फिर आपको ऑब्वियसली अलाउड होना चाहिए। बाकी पार्टियों में वो सेम किस्म की क्या मैं फ्रीडम नहीं है, तो इसलिए वो डर गए कि यार ऐसे एक पार्टी आ गई, अगर ये पॉपुलर हो जाए तो फिर क्या से क्या हो सकता है।
1: सवाल ये पैदा होता है अशम के, ये इस्लाम इस्लाम की बात करते हैं, जिन ममालिक से ये लोग आए वहाँ इस्लाम की नाम की चीज़ नहीं है, तो डैनिशों का तो कानून ही इस्लामी मुल्क ही नहीं है, तो यहाँ इस्लाम की बात क्यों कानून नाफज की करते हैं?
0: अंकल बात ये नहीं कि इस्लाम को हो, हिंदुइज्म हो या जो भी रिलीजन हो, बात ये कि आपको वो फ्रीडम मिलना चाहिए कि जिस भी मजहब की तरफ आप आना चाह रहे हैं कि आप अलाउड हो वो प्रैक्टिस करने के लिए। लेकिन बात अंकल एक तो ये मजहब की बात, दूसरी बात ये भी है, अभी पिछले दिनों एक आर्टिकल आया है कि क्या मैं फ्री कॉन ने डेनमार्क हिस्ट्री बनाया है क्योंकि उन्होंने क्या मैं सिंगबिया के लोगों को एक्टिवेट कराया जाके पोलिंग स्टेशन में जाके अपने वोट डालने के लिए। हिस्टोरिकली सिंगबिया में 1/3 पॉपुलेशन मतलब 33% वोट डालते हैं, लेकिन पिछली कम्यून के इलेक्शन में ये क्या हम साबित आया कि वो 33% 46% पे आ गया था,
1: ये
0: और
1: अच्छी
0: ज्यादा
1: बात है।
0: ज्यादा बिल्कुल अच्छी बात है क्योंकि जितने लोग डेमोक्रेसी में अपना हिस्सा लेंगे उतना ही क्या हमें फायदा मिलेगा। क्योंकि अक्सर ये होता है कि हमारे कम्युनिटी के लोगों को वो कभी कभार ये कहते हैं कि अच्छा वोट डाल के क्या फायदा होगा, कौन सा डिफरेंस आएगा, अच्छा वेदर आज अच्छा नहीं है तो मैं अगले इलेक्शन में अपना वोट डालूंगा, और यही मसला है क्योंकि फिर आपको वो कैंडिडेट्स नहीं आएंगे जो आपको प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंट करें,
1: लेकिन
0: तो
1: अशम
0: ये
1: जो
0: ऐसे इश्यूज
1: अखबारात
0: है।
1: की खबरें चलती रहती हैं, आपकी मेरे ख्याल इस जुमरात को फिर वोटिंग हो रही है, ये वाकई एजेंडे में बात है या नहीं है?
0: बिल्कुल अंकल वोटिंग हो रही है, लेकिन ये फिजूल से ऐसे अजीब अजीब किस्म की वोटिंग हो रही है और ये एक प्रोपेगेंडा चल रहा है। अब आप ये भी देखिए कि एक पूरा केस चला है सिकंदर भाई के बारे में, उनका एड्रेस एंड जो भी है वो आप लोगों के सामने ही है कि क्या क्या हुआ है। अब जो राइट विंग पार्टीज उनमें से दो तीन लोग हैं जिन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि ये अपना अपने पैसे वापस दें। अब ऐसे तो नहीं होता ना कि अगर आपने एक साल से काम
1: कौन कौन
0: किया
1: सी
0: है,
1: पार्टियां ये डिमांड करती हैं?
0: ये मेरे ख्याल से अभी मुझे सीधे याद नहीं है वो
1: क्या
0: आपको
1: जिन्होंने फौसले दिया उनको पार्टी स्टूट भी करती है? उनकी बैकग्राउंड पे खड़ी है उनकी पार्टी?
0: जी देखें अभी जो फिलहाल जो मुझे याद आ रहा है तेंस फॉर के बच्ची कंसर्वेटिव एंड सोशल डेमोक्रेट्स काफी स्प्लिट है क्योंकि आधे से ज्यादा कह रहे कि आप बाज आ जाएं और दूसरा हाफ कह रहा है कि नहीं नहीं हमने इनसे पैसे निकालने। इवन दो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहता है कि राइटफुली अगर आपने काम किया है तो फिर आपको पैसे

0: आपको मिलेंगे। और अंकल अगर वो, मैं आपको जनरली बात बताता हूँ, अगर फॉर एग्जाम्पल उनको क्या मैं लॉ को तोड़ के वो कहते हैं ठीक है सिकंदर ने कि हम पैसे वापस देने हैं, तो वो पैसे फिर किसको मिलेंगे? वो फिर मुझे मिलेंगे क्योंकि मैं फर्स्ट सुप्लियंट हूं। और अगर पैसे मुझे मिलेंगे तो मैं वो पैसे वापस सिकंदर को दे दूंगा क्योंकि, तो अंकल ये इन्होंने एक सर्कस ही बनाया है, इसमें कोई क्या सेंस नहीं है। और मेरा यही एक क्या अजीब सी सोच है कि अगर आप ऐसे पॉलिटिशियन कोपमेकन सिटी असेंबली में आपकी सीट है तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। ये बच्चों वाले हरकतें, इसमें कोई फायदा नहीं है। आप यहाँ आके पॉलिटिक्स करें और ये फजूल से ड्रामे आप अपने पास ही छोड़ रहे हैं।
1: ये मेच्योर पुराने सियासतदान कहते हैं या नए नए आए हैं अपने कम्यून में?
0: अंकल लेक के पॉलिटिशियन है सोशल डेमोक्रेट्स के, वो उनका बैकग्राउंड है कुर्दिश लास एसलन। आप देखें वो सिंस मुझे लगता है 2015 से पॉलिटिक्स में, इवन वो पार्लियामेंटेरियन रहे हैं, सबसे ज्यादा जोर एंड शोर वही कर रहे हैं। अब अगर आप उनका फेसबुक क्या पेज देखें, पिछले जो जितने भी 45 उसकी पोस्ट रही हैं वो या तो क्या फ्री खान के बारे में रही हैं, मुसलमानों के बारे में रही हैं, या क्या रेसिज्म, मतलब उसका कोई और एजेंडा है ही नहीं इसके अलावा। तो
1: वो
0: हम
1: खुद भी
0: ऐसे ऐसे पॉलिटिक्स
1: मुसलमान
0: से
1: है।
0: फाइट करें, मुझे नहीं लगता कि वो मुसलमान है अंकल, क्योंकि जितना वो प्रोपोगंडा दार रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ, तो मैं मुझे
1: तो
0: तो
1: उनके
0: नहीं
1: अगर
0: लगता।
1: उनको
0: लेकिन हाँ
1: कानून इजाजत देता है या जमहूरियत इजाजत देती है या टाउन हॉल इजाजत देता है तो ये फिर जमहूरी हक है हर किसी को इस्तेमाल करने का।
0: हाँ ऑब्वियसली अंकल ये होता है बात कि क्या आप किस तरीके से अपना पोलिटिकल करियर क्या मैं चलाना चाह रहे हो। अब ये है कि ऐसे कोई पॉलिटिशियंस हैं जो झूठ पे क्या हम अपना करियर चला रहे हैं। एक के पॉलिटिशियन थे, उन्होंने क्या हम एक तस्वीर ली है किसी बंदे के घर पे के सामने, जहाँ उन्होंने कलमा लिखा था दरवाजे वो बैल्कनी पे, उन्होंने एक साइन लिखा था कलमे के साथ। अब इस पॉलिटिशियन ने इस तस्वीर ली है और कहा है कि ये आइसिस के सपोर्टर है, मतलब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के सपोर्ट कर रहे हैं। और उन्होंने ना सिर्फ ये क्लेम किया लेकिन उस फैमिली का एड्रेस भी लिखा है फेसबुक पे, जहां 10,000 12,000 लोगों ने लाइक भी किया ये पोस्ट। और फिर बाद में पता चला कि ये कोई आइसिस का कोई पोस्टर नहीं था, ये एक्चुअली उन्होंने अपना कलमा लिखा था। तो अंकल ऐसे ऐसे कि हम टूल्स यूज किए
1: तो
0: जा
1: आप
0: रहे हैं
1: लोगों ने
0: हमारे
1: अपना
0: खिलाफ
1: क्या, आप
0: प्रोपेगंडा
1: लोगों
0: बनाने
1: ने
0: के।
1: क्या फोसवा, आपने क्या इसकी जो है बंदोबस्त किया हुआ पार एज ए पार्टी?
0: अंकल हमारी तो कोशिश ये है कि हम हाईलाइट करें ऐसे इश्यूज की, ये कैसे हो सकता है आप ऐसा पॉलिटिशियन, आपका तो काम होना चाहिए कि सबको इकट्ठे रखने के लिए, स्प्रेड करने के लिए नहीं। और अंकल अब आप देखें हमारे खिलाफ इतने सारे क्लेम्स आए हैं, मेरे पे ये आ रहा है कि मैं एक्सट्रीमिस्ट हूँ, क्यों? क्योंकि मैंने कहा है कि अरेंज मैरिज एंड फोर्स मैरिज दो डिफरेंट चीज़ें हैं।
1: राइट
0: आपको पता है कि हमारे कल्चर में है कि को लोग करते हैं और लोग प्रेफर भी करते हैं अक्सर। और मैं तो नहीं ये कहूँगा कि मैं डिक्टेट करना चाहूँगा कि आपकी लव मैरिज होनी चाहिए अरेंज मैरिज, लेकिन मैं ये कहूँगा अगर कोई बंदा प्रेफर करेगा कि उसकी फैमिली इन्वॉल्व हो और वो अरेंज मैरिज प्रोसीजर को लेके चले, तो फिर गवर्नमेंट को बिल्कुल इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए।
1: क्या गवर्नमेंट का आइन पढ़ा जाता है वहाँ पे ये आइन में तो ये लिखा हुआ है, तो आप लोग क्यों तनकीद करते हैं या आप लोग सही जवाब नहीं देते?
0: लिखा तो है लेकिन लोग तो पता नहीं अंकल अपने अपने क्या हम बिहेवियर करते हैं।
1: चलें एक और खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दे रहे हैं, आपके पुराने साथी तकीर हसन बुखारी शाह साहब, उन्होंने वेंस्ट्रा ज्वाइन कर ली है।
0: माशाल्लाह अच्छी बात है, मेरी यही क्या मैं लोगों को यही प्रमोट करता हूँ कि आप बेशक क्या मैं जो सी भी पार्टी में हिस्सा लें आप बस पार्टिसिपेट करें पॉलिटिकली। और अंकल तुकीशा का ये है कि उनका बहुत ज़्यादा हिस्ट्री रहा है विंस्टर के साथ, तो ऑब्वियस चॉइस होगी कि अगर वो फ्री कॉन छोड़ के वो फिर अपनी पुरानी पार्टी में जाएंगे, तो मैं तो खुश हूँ। इंशाल्लाह मैं ये होप करता हूँ कि वो विंस्टर में थोड़ा सा तब्दीली लेके आए।
1: तो क्या आपको भी लोग प्रेस कर रहे हैं, मशवरे दे रहे हैं कि आप ही अपना मैंडेट लेके चले जाएं?
0: लोग कहते तो हैं और लोगों ने क्या मैं सजेस्ट भी किया है कि ये एक साल ही नहीं रुकेगा क्या मैं फ्री कॉन में इलेक्शन के बाद, तो ऐसे ऐसे बातें मैंने सुनी है। अब माशाल्लाह से एक साल हो गया है मैं यही हूँ, और मैं आपको बताऊँ मैं इस पहले से भी ज़्यादा श्योर हूँ कि मैंने फ्री कॉन में ही रहना है, क्योंकि अंकल आपके सामने है अगर हम कुछ अपने प्रिंसिपल के साथ अगर हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो फिर फायदा क्या है पॉलिटिक्स में आने के लिए। अगर मैं ये नहीं कह सकता कि पार्किंग के हालात आप थोड़ा सा बेहतर करा लें, या ये नहीं कह सकता कि जो हमारे बहनें हैं उनको क्या परमिशन मिलना चाहिए कि वो अपने सेपरेट स्विमिंग क्लासेस करें, तो फिर अंकल फिर मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं फिर पॉलिटिक्स में क्यों आया हूँ।
1: डेफिनेट आपकी पार्टी का मंशूर है, अपनी पार्टी के मंशूर पे आप अमल कर रहे हैं, ये आपका लीगल राइट है।
0: बिल्कुल अंकल, हमारे राइट्स, हमारी कोशिश ये है कि हम लोगों को ये दिखाएं कि जितना आप पार्टिसिपेट करेंगे, जितना आपके हम साथ देंगे, उतना ही आपके लिए फ्रूटफुल होगा। और अंकल आप लोग, आप सब लोगों के सामने हैं जिस तरीके से उन्होंने क्या मैं सिकंदर भाई को अटैक किया, अब रिसेंट टाइम्स में मुझे भी अटैक कर रहे हैं, तो ये सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल शो करने के लिए है कि अगर आप ऐसा मिनोरिटी आते हैं सियासत में तो फिर आपके लिए मुश्किलात डे वन से होते हैं। तो हमारी
1: तो ये
0: कोशिश ये है
1: देखिए
0: कि
1: ना,
0: हम
1: वैसे तो आप मिनतंग मिनते करते रहते हैं, आपको मीडिया जगह नहीं देता, इस तरह आपको रोज मीडिया में जगह मिल रही है।
0: अंकल, सिंस 7 सितंबर मेरा नाम 220 आर्टिकल्स में मेंशन हुआ है, मतलब दिन के 30 आर्टिकल्स ऑलमोस्ट हो रहे हैं। तो ये इतना एक्सट्रीम इन्होंने किया है, लेकिन बार हमने क्या मैं हिम्मत नहीं छोड़ना, स्ट्रांग रहना है, और इंशाल्लाह ये हम अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम पूरी कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं।
1: देखिए आप काम करेंगे, यहाँ तो काम करने की कोई पाबंदी नहीं है, तो आप अपना आज़ादी से बोल सकते हैं, आज़ादी से कह सकते हैं। आप कोपनहेगन की पार्लियामेंट में के अंदर बैठे होते हैं, आपको पूरा हक है वहाँ बोलने का।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और ये है कि अंकल हमने ना सिर्फ कि हमने कहा कि इसमें बजट में नहीं होना चाहिए, लेकिन जो चीज़ें हमें पसंद आई हैं उनको हमने सपोर्ट भी किया है अंकल। ये 2027 में हम सॉरी 2027 में हमने बहुत हाईली इन्वेस्ट किया है डिमेंशिया एरिया में, जिन लोगों को डिमेंशिया की बीमारी है, तो हम ना सिर्फ उनको हम फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उनके फैमिली मेंबर्स को भी हम सपोर्ट कर रहे हैं। तो उनको वो काम से थोड़ा सा छुट्टी ले सके, और ज़्यादा से ज़्यादा जो फैमिली मेंबर को डिमेंशिया है उनके साथ वो टाइम दें। हमने पार्किंग हमने फ्री तो नहीं करवाया, लेकिन हम ज्यादा से ज्यादा पार्किंग स्पॉट्स बनवा रहे हैं, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम डाल रहे हैं, क्या मैं एजुकेशन में हम ज्यादा से ज्यादा डाल रहे हैं। आप इंशाल्लाह देखेंगे कि कोपेनहेगन आने वाले टाइम में ज्यादा खूबसूरत होगा और ज्यादा एक्सेसिबल होगा। अभी हम मीट्रो पे भी हम काम कर रहे हैं, हमारी कोशिश ये है कि ये जो सिटी रिंग है मीट्रो का, कि एक मेट्रो स्टेशन सेल तक भी आ जाए, तो जो हमारे हेल्थ केयर सिस्टम्स है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेसिबल हो। तो हम अपनी तरह से कोशिश कर रहे हैं अंकल, अभी मैं
1: लेकिन
0: नया
1: अभी
0: नया आया हूँ
1: तो,
0: तो
1: अभी जो बूढ़ों के लिए, बीमारों के लिए जो टीका लगवाना है, जिसे जुकाम का टीका कहते हैं, जैसे कोरोना वायरस का टीका लगाते हैं, तो पहले तो अपने
0: जी
1: अपने डॉक्टर लगाते थे, अब मुख्तलिफ जगह बना दी हैं, डिस्टर्ब कर दिया हर चीज़ को।
0: जी अंकल, और इसका आपने अच्छा किया ये इश्यू रेज कर रहे हैं। ये मुझे मेरे हिसाब से ये कम्यून का क्या मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये रीजन का है, लेकिन वहाँ मुझे पता है कि जो हमारे भाई हैं इरफान गानी वो बहुत क्या मैं काम कर रहे इस चीज़ में, और वो काफ़ी वेल एजुकेटेड भी है, तो मैं श्योर हूँ कि इस इशू को मैं उनको मैं रेज करता हूँ उनके साथ, आप भी करें, और फिर हम इस पर हम इंशाल्लाह कोई बेहतरी लेके आएंगे।
1: तो आप क्या कहना चाहेंगे बजट के मुतल्लिक, ये बजट कब तक अनाउंस हो जाएगा, पास हो जाएगा?
0: अंकल मेरे हिसाब से ये पास हो गया है, जो लास्ट मीटिंग में हम थे,
1: ठीक है,
0: हमारे थोड़े से चीज़ें थे जो हम निकालना चाह रहे थे, अनफॉर्चुनेटली हमारे पास वो वोटिंग पावर
1: तो
0: नहीं
1: क्या
0: था।
1: बजट में आ गया, दांतों का इलाज मुफ्त हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट फ्री हो जाएगी?
0: ट्रांसपोर्टेशन फ्री नहीं होगा, अभी तक हम वहाँ तक हम नहीं पहुँचे, लेकिन दांतों का हमने ये करवाया कि जो एल्डरली है, मतलब जो बुढ़े हैं, उनके लिए वो हम फ्री करवा रहे हैं, तो वहाँ आपको ऑब्वियसली अप्लाई करना पड़ेगा। वो जो स्पेसिफिक्स है वो मैं इंशाल्लाह आपको लेके आ जाऊंगा, लेकिन जी दांतों का इलाज जो लोग कोपेनहेगन में रहते हैं उनके लिए फ्री होगा।
1: क्या कहा, एक बार दोबारा रिपीट करें, कहाँ रहते हैं?
0: जो कोपेनहेगन कम्यून के जो रहने वाले हैं,
1: राइट,
0: अगर आपका अब वो एज मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन जो अगर आप एल्डरली हो, मतलब आप थोड़े से आपकी उम्र ज़्यादा हो, तो आपके लिए इंशाल्लाह 2027 में दांतों का इलाज फ्री होगा
1: चलें जी, ये भी
0: जी
1: नई गाड़ी आ जाएगी, चला कर देखते हैं कैसे चलती है।
0: इंशाल्लाह।
1: تو آخر میں کچھ کہنا چاہیں اپنے سامعین کو ناظرین کو؟
0: جی میں بس یہ کہوں گا کہ شکریہ سب کا سپورٹ کا، اینڈ انشاءاللہ آپ بس سپورٹ کرتے رہیں. ابھی آپ تھوڑا سا صبر رکھیں میرے ساتھ، کیونکہ ٹائمس تھوڑا سا ٹف ہے جرنلسٹ کے ساتھ اور کام نیا نیا ہے، لیکن انشاءاللہ میں ایک دو مہینہ آپ مجھے دے دیں، میں کمفرٹیبل ہو جاؤں کام میں، تو پھر میں پوری کی کمیونٹی کے جو سربراہ ہیں ان کو میں انوائٹ کروں گا، اور پھر ہم وہاں بیٹھیں گے، بات چیت کریں گے، اور پھر میری کوشش یہ ہوگی کہ ہم جتنا ریگولر بیسس پہ میں آپ لوگوں کو ایشوز سنوں ان پہ میں پھر کام کروں گا، لیکن آپ تھوڑا سا صبر رکھیں، انشاءاللہ میں سب سے ملوں گا، سب سے بات چیت کروں گا. جی
1: اشم آپ کا بہت شکریہ. ناظرین یہ تھے نوجوان سٹی کونسلر کوپن ایگن کمیون سے اشم آغا، ان کی باتیں آپ نے سنی. یہ نوجوان ہیں، بات کرتے ہیں، ڈیفینیٹ اب یہ سیکھ بھی رہے ہیں، تجربہ بھی حاصل کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنا کام بھی کر رہے ہیں، اپنے موقعوں پر ڈٹے ہوئے ہیں، کوئی کمپرومائز نہیں ہے، جو ان کے آئین میں پارٹی کے آئین میں لکھا ہو اس پر یہ کام کر رہے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ جسے کہتے ہیں فلیکسیبل ہونا چاہیے، مل جل کر کام کرنا چاہیے. آج کے لیے اتنا ہی کافی.
2: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے، اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے. سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں.

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

उस वक्त की। ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज़ है।
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज़ है।
2: ये रेडियो आपकी आवाज़ है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज़ सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें। ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए तो बच्चियों ने दफ बजाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का इस्तकबाल किया। यूं तलअल बद्रु अलैना दफ के साथ पहली नाक ठहरी। इसी मोहब्बत और अकीदत को मद्देनजर रखते हुए दफ के साथ नजराना अकीदत बहजूर सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पेश खिदमत है।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: बस सामान, जैसा कि आप सबको मालूम है कि आजकल डेनमार्क में मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया, हर एक का अपना स्टाइल है। मजर सामाइन, एक ऐसी शख्सियत जिन्हें आप अच्छी तरह जानते हैं, तो मजर सामाइन इस वक्त वो अपने ख्यालात का इजहार मौजूदा इशू पर करना चाहते हैं। आइए मजर सामाइन सुनते हैं कि याकूब जान में तरजई क्या कहते हैं।
2: अस्सलाम वालेकुम मजर सामाइन, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने याद किया और रेडियो आपकी आवाज़ पे मेरे खैरियत और मेरी गैरहाजिरी का सबब पूछते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने भी आप लोगों को भूला नहीं। इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, इस वक्त जो दुनिया में और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो फिज़ा बनाई है इन्होंने, ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं। हालांकि देखा जाए मुसलमान एक पीसफुल मज़हब है, रवादारी का मज़हब है और मुसलमानों ने हमेशा बहुत सारी बातों को दरगुजर किया है, लेकिन गैर मुस्लिम मज़हब हमेशा की तरह मुसलमानों को मजबूर कर रहा है कि तुम लोग जोश में आकर कोई ऐसा काम करो जिससे हम दुनिया में साबित कर सके कि मुसलमान तशद्दुद पसंद मज़हब है। हालांकि मामला इसके बिल्कुल बरअक्स है, मुसलमान बिल्कुल अमन पसंद है। अब इन सारी बातों को गौर से देखा जाए तो इब्तिदा इन्होंने की है, यूलैंड पोस्ट वालों ने कार्टून छाप करके मुसलमानों की दिल आज़ारी की है। उससे भी यहाँ के मुसलमानों ने बहुत तामुल से काम लिया, सिर्फ़ और सिर्फ पीसफुल तरीके से एहतजाज करते आए। अब इन्होंने देखा कि मुसलमान तो बहुत ही अमन पसंदी से काम ले रहे हैं, कोई तशद्दुद कोई तोड़फोड़ नहीं कर रहे हैं। फिर एक और गलती जो यहाँ के वज़ीर आज़म साहब ने की, एक और ज़्यादती की कि 11 मुल्कों के एम्बेसडरों ने इनसे मिलने को कहा, लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने इनसे मिलना गवारा नहीं किया। मुआज़रत तो बहुत दूर की बात है, मिलना भी नहीं चाहा। तो इस तरह की गलतियां इससे पहले भी वज़ीर आज़म ने मुसलमानों को के जज्बात को ठेस पहुंचाने के लिए, एक दफ़ा आप लोगों को याद है हॉलैंड के उस एक्ट्रेस को डेनमार्क बुलाकर बाकायदा टीवी पर एक घंटे तक उससे इंटरव्यू लेते रहे और इस्लाम के ख़िलाफ़ उससे जहर उगलते रहे। ये वो एक्ट्रेस थी जिसने हॉलैंड में फिल्म बनाई थी और जिसम पर कुरानी आयतें लिखी थी, और उस फिल्म के डायरेक्टर को हॉलैंड में किसी ने कत्ल भी कर दिया था। तो उन्होंने यहाँ के मुसलमानों को ठेस पहुँचाने के लिए यहाँ के टीवी पर एक घंटा मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोलती रही। फिर इस वज़ीर आज़म ने VIP प्रोटोकॉल दिया था उस एक्ट्रेस को और एक मेडल दिया था। तो ये सब क्या है, ये सब एक साजिश है। हम मुसलमानों को बहुत एहतियात करनी चाहिए, इनके साजिशों से होशियार रहना चाहिए, ऐसी कोई हरकत नहीं करनी चाहिए जिसको ये लोग जवाब बना कर एक इशू बना कर घर घर तलाशी शुरू कर दें, या जिसको भी अंदर करना चाहे या जिसको भी मुल्क से बदर करना चाहे, इस जवाब के तहत ये लोग हमारा जीवन हराम कर देंगे। हालांकि हम लोगों ने या हम मुसलमानों ने इस मुल्क को तरक्की की तरफ बढ़ाया है। अभी पता चला है कि मुस्लिम ममालिक में ये लोग बिलियन एंड बिलियन करोड़ों का माल बेचते हैं। ये मार्केट इनको कहां से मिल गई, ये तो हमारे ही मुसलमानों ने अपने अपने मुल्कों में इनकी ये चीज़ें इंट्रोड्यूस कराई और इनको घर बैठे बैठे इतनी बिजनेस मिल गई कि ये लोग पागल हो गए। और पिया कियास्को कहती है कि मुसलमानों को यहाँ से निकाल दिया जाए। चलो आपकी बात मान लेते हैं, इन सब मुसलमानों को अपने अपने मुल्कों में भेज देते हैं, और अगर इन मुसलमानों के मुल्कों ने इन चीज़ों का बायकॉट कर दिया था जो मिलियन एंड मिलियन के हिसाब से आप लोग उससे पैसे कमा रहे हैं, तो पिया कियास्को से पूछे क्या ये सब चीज़ें डेंस के फोल्क पार्टी वाले खरीदेंगे। पिया कियास्को को बता दे डेनमार्क ने जो तरक्की की है वो डेंस के फोल्क पार्टी से नहीं की है, بلکہ انہی انواندرا لوگوں کے توسط سے یہ ترقی ہوئی ہے. پھر بھی یہ لوگ انواندرا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. جتنا ہم لوگ انٹیگریٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں, یہ لوگ کوئی نہ کوئی ایشو کھڑا کر کے ہم کو پھر پیچھے دھکیل دیتے ہیں. ہمیں اس ملک میں رہتے ہوئے اپنے حق جمہوری طریقے سے حاصل کرنا چاہیے اور قانون کا احترام کرنا چاہیے اور ہمیشہ ان چالوں سے ہوشیار رہنا چاہیے. پاکستان پائندہ باد.
3: سامعین کرام, ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।